मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स डीटीएच की ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 29 जून सन 2026। सुबह के 5:57 होने को है। प्रातः वंदन के साथ प्रातःकालीन सभा आरंभ करते हैं।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहाँ हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम

0: से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मानव सेवा परम धर्म है। हमें यथा योग्य सच्चे मन से सबकी सेवा करनी चाहिए और इस सेवा के बदले मन में अभिमान का भाव कभी आने ना पाए। सेवा का भाव ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। हे ईश्वर, तुझे बार बार प्रणाम।

हमें प्रतिदिन ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए कि उसने एक और नया दिन हमें दिया है। ये हमारे जीवन में किए गए अच्छे कर्मों का ही तो प्रतिफल है कि हमें उस प्रभु ने एक और दिन दिया, अपनी त्रुटियों को सुधारने का एक और मौका दिया। ईश्वर के नाम का चिंतन मनन निरंतर होता रहे, बस ऐसी कृपा हम पर करें।

हे प्रभु, हमारा मन संसार के मोह माया में सदैव उलझा रहता है। वो जाने अनजाने अन्य प्राणियों के दुखों का कारण भी बनता है। इंद्रियों के वशीभूत होकर वो जीवन भर गलतियां करता रहता है, और भगवान उसके इन सब दुर्गुणों को जानते हुए भी उसका कल्याण करते हैं। हे ईश्वर, तेरा बार बार धन्यवाद।

हमने असत्य बोलना नहीं छोड़ा, क्रोध करना नहीं छोड़ा, लोभ नहीं छोड़ा, मोह नहीं छोड़ा, लेकिन ईश्वर का नाम लेना छोड़ दिया, उस सृष्टि रचयिता की आराधना करना छोड़ दिया। हमें क्षमा करना प्रभु, हम कृतज्ञ हैं कि हमें अपनी भूल सुधार के लिए आपने एक दिन और दिया।

0: वंदना में आज आपने समूह स्वर में गुणसागर शर्मा सत्यार्थी की देशभक्तिपूर्ण रचना के बाद हरिओम शरण, प्रीति सागर, लता मंगेशकर और पुरुषोत्तम दास जलोटा के गाए भजन सुने। अब आज की वंदना संपन्न होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। अब प्रस्तुत है श्रृंखलित श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी, आशा भोसले और कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में।

सती ने महादेव से छल तो किया, किंतु उनके समाधि में चले जाने के बाद पश्चाताप की आग में स्वयं जलने लगी। शिव की समाधि का एक एक दिन सती के लिए एक एक युग के समान बीतने लगा। मन में ये सोच कि इस दारुण दुख के अथाह और अनंत सागर को कब पार कर सकेंगी। शंकर के विमुख हो जाने के बाद भी विधाता उन्हें क्यों जिला रहा है। विडंबना ये है कि आत्मग्लानि के भेद को किसी पर प्रकट भी नहीं कर सकती। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद शिव की समाधि टूटी। सती ने आकर उनके चरणों में सिर नवाया तो महादेव उन्हें आदर से पास बिठाकर हरि अवतार की कथाएं सुनाने लगे। उन्हीं दिनों सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा ने प्रजापतियों का नायक बनाया। ऐसी प्रभुता का पद पाकर अभिमान किसे नहीं होता। दक्ष को भी अभिमान हुआ और उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी, जिसमें गंधर्व, किन्नर, शेषनाग, सिद्धों सहित सभी देवताओं को निमंत्रित किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रृंखलित श्री रामचरित मानस कान की आज की ये कड़ी। आकाशवाणी भोपाल से अब सुनते हैं चिंतन। सुधा रानी तेलंग का आलेख संवाद।
1: संवाद संवाद हमारे जीवन का एक अनिवार्य अहम पहलू है। बिना संवाद के हम आपसी रिश्तों को धीरे धीरे गुम कर देते हैं। परिवार हो या पास पड़ोस या हो कार्यालय, सभी जगह संवाद के माध्यम से ही अपनी भावनाओं और समस्याओं को एक दूजे तक पहुंचाते हैं। आज के आपाधापी दौड़ भाग के युग में सब इतने व्यस्त हो गए हैं कि किसी को थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं है। हमारे जीवन में धीरे धीरे संवादहीनता बढ़ती जा रही है। ऐसे में आपसी संबंधों में शून्यता खालीपन आता जा रहा है। संवाद के बिना हम अकारण ही गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं, जिसके चलते हम अपने सुख शांति की तलाश बाहर करने लगे हैं। पुराने समय में संयुक्त परिवारों में किसी को अकेलापन महसूस नहीं होता था। रसोई घर में एक साथ भोजन करते, छत आंगन में धूप सेकते हुए या बाहर चबूतरे पाटे में बैठकर परिवार पास पड़ोस के लोग आपस में संवाद के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते थे, एक दूजे से सुख दुख बांटते थे। पर आज बदलते समय और शहरीकरण के कारण हमारा जीवन एक मशीन की तरह हो गया है। महंगाई के दौर में पति पत्नी दोनों काम करते हैं। ऐसे में आज माता पिता के पास जरा भी समय नहीं है अपने बच्चों से संवाद स्थापित करने का। बूढ़े माता पिता के लिए आज की युवा पीढ़ी के पास संवाद के लिए समय नहीं है। धीरे धीरे हमारे रिश्तों में अब वो मिठास भी नहीं रही जो पहले थी। हमारे दिन की शुरुआत भी एक मशीन की तरह होती है। चाय की चुस्की के साथ अखबार, रसोई में बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करने के संग स्कूल भेजना, फिर खुद तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने की दौड़ भाग में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि चाहकर भी एक दूसरे से संवाद नहीं कर पाते। संवादहीनता की रही सही कसर आज के दौर में मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर ने पूरी कर दी है। हमें अपने व्यस्ततम जीवन में एक दूसरे के लिए बातचीत के लिए समय निकालना होगा, तभी आत्मिक और सच्ची संतुष्टि मिल सकती है। आज कामकाजी माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए भी समय नहीं है। ऐसे में ज़रूरी है बच्चों और माता पिता के बीच संवाद स्थापित हो। बच्चों को क्रैच आया के भरोसे छोड़ ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल भेज हम अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं कर सकते। हमें अपने बच्चों के साथ नियमित रूप से समय बिताना होगा, संवाद स्थापित करना होगा। आज के बच्चे टीवी, इंटरनेट, मोबाइल के सहारे बड़े हो रहे हैं। इससे वो जो संस्कार सीख रहे हैं वे आज की पीढ़ी के लिए घातक हैं। माता पिता को बच्चों के लिए समय

0: निकालना होगा ताकि बच्चे अपने मन की बात, समस्याएं, भावनाएं उनसे बांट सके। तेज रफ्तार जिंदगी में बढ़ती संवादहीनता के चलते आज के बच्चे खुद के लिए तो जीना सीख रहे हैं, लेकिन समाज और रिश्तेदारी भूलते जा रहे हैं, समाज की धारा से जुड़ नहीं पा रहे। डिग्री लेने के बाद आज भी युवा पीढ़ी नौकरी पाकर पेट तो भर लेती है, करियर की चाह में गाड़ी, बंगला, विदेश जाने की लालसा के चलते युवा पीढ़ी के पास परिवार और रिश्तों के लिए समय नहीं बच पाता। हमें नई पीढ़ी को सही राह दिखानी होगी, संवाद स्थापित कर आपसी रिश्तों में गर्माहट लानी होगी ताकि युवा पीढ़ी गलत रास्ते में न जाए। बच्चों को सामाजिकता की सीख देनी होगी, अपने रीति रिवाज, संस्कृति से परिचित कराना होगा। इसमें माता पिता के साथ बच्चों को भी पहल करनी होगी, क्योंकि आज के बच्चे भी दोस्तों के संग पार्टीज, क्लब, पिकनिक, नेट, मोबाइल के संसार में इस कदर डूब गए हैं कि उनके पास भी माता पिता से संवाद करने का समय नहीं है। आज हम अपने पास पड़ोस की ओर दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि पास रहते हुए भी हम अपरिचित की तरह पूरा जीवन बिता देते हैं। पुराने समय को याद करें तो तीज त्योहार, शादी ब्याह, बीमारी, सुख दुख में पड़ोसी हमारे साथ रहते थे। घर के आंगन, छत, चबूतरों में घंटों महफिल जमी रहती थी। पर आज के तेज रफ्तार दौर में संवादहीनता के चलते हम पड़ोसियों को पहचान भी नहीं पाते। हमें अपने व्यस्ततम समय से कुछ पल अपने घर, परिवार, पास पड़ोस और समाज को देने होंगे, तब ही हम सही मायने में एक स्वस्थ, संस्कारित जीवन जी सकते हैं, समाज को एक नई दिशा और एक नई राह दे सकते हैं, अपने संस्कारों और संस्कृति को जीवित रख सकते हैं, साथ ही भावी पीढ़ी को अनमोल धरोहर के रूप में उसे सौंप सकते हैं।
1: चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आलेख संवाद। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृषक मित्रों के लिए अब पेश है आज की कृषि चर्चा। विषय है लघु धान्य फसलों का फसल उत्पादन में महत्व। वार्ताकार डॉक्टर आराधना कुमारी।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा का विषय है लघु धान्य फसलों का फसल उत्पादन में महत्व। आजकल जलवायु परिवर्तन एक विशेष समस्या हो गई है तथा गर्मी, जाड़ा, बरसात कभी भी हो जाता है, प्राकृतिक आपदा कभी भी आ जाती है। कृषि क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है, उस पे भी बहुत प्रभाव पड़े हैं। फसलों के उत्पादन, उत्पादकता में बहुत कमी आ गई है, बारिश समय पे होती नहीं है, तो ये सब समस्या आती है। ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है, तापमान बहुत जल्दी गर्म हो जा रहा है और बहुत दिनों तक गर्मी बन रही है, ठंड का समय बहुत कम हो गया है, जो ठंड पड़ती है बहुत ज्यादा पड़ती है, तो ऐसे में पौधों का कार्बन लाभ भी कम हो जाता है तथा खर पतवार अलग अलग टाइप के अलग अलग आने लगे हैं, कीटों तथा रोग जनकों का आक्रमण भी बढ़ गया है। तो इस स्थिति में वैज्ञानिक हमेशा ऐसा सोचते रहे हैं कि कौन कौन सी फसल है, क्योंकि मुख्य फसलों पर इनकी मार तो जरूर पड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में वो कौन से फसल उगाएं जिनके कारण हमारे किसान भाई उससे लाभान्वित हों और फसल सुरक्षा के साथ साथ खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करें। तो ऐसे में जो लघु धान्य की अनाज की फसलें हैं वो प्रमुख फसलों जैसे कि गेहूं, मक्का और धान की तुलना में उनमें ये सारे गुण होते हैं। ये लघु धान्य वातावरण में परिवर्तन के लिए सहिष्णु होते हैं, कम वृद्धि, कम अवधि वाले अनाज होते हैं और मोटे तौर पर बात करें तो ये 60 से 100 दिन के ही हैं। तो जो दो मुख्य फसल के बीच का समय होता है उसको भी ये उस लगाए जा सकते हैं और उत्पादन किए जा सकते हैं, तो कैश क्रॉप के रूप में भी ये अच्छा है। इसके अलावा शोधकर्ता ने दिखाया है कि लघु धान्य कम ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं जो कृषि खाद्य क्षेत्र के ग्लोबल वार्मिंग में योगदान को कम करने में फायदेमंद होता है। उसके अलावा ये जो लघु धान्य फसलें हैं ये दुनिया भर में आम तौर पर उगाई जाने वाली जो हैं उसमें प्रमुख हैं ज्वार, प्रोसो धान, बाजरा, रागी, कोदो और कुटकी। ये 30 से 100 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई के होते हैं और इनकी जड़ प्रणाली जो होती है बहुत मजबूत होती है। ये C4 फसलें होती हैं इसलिए कार्बन का स्थिरीकरण ज्यादा अच्छा कर पाती हैं और इसमें प्रकाश श्वसन भी कम होता है तो कार्बन की बर्बादी कम होती है, तो ये उत्पादकता भी इसकी ज्यादा होती है। उसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा तापमान भी मुख्य फसलों की तुलना में सह सकती हैं। इन्हें रेतीली, नमकीन, क्षारीय, अम्लीय किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगाया जा सकता है और इसके अलावा इनमें मजबूत रोग

0: प्रतिरोधक क्षमता होती है, ये कीट और बीमारियों से मुक्त होते हैं। तो इस प्रकार अगर हम इन्हें उगाते हैं तो बहुत सारे अच्छी फसल उत्पादकता को सुनिश्चित कर सकते हैं। गहरी जड़ प्रणाली के कारण ये मिट्टी की गहराई से ले लेते हैं पानी को और पोषक तत्वों को ले लेते हैं। इनको बाहर से कम संसाधन की जरूरत पड़ती है। सूखा प्रतिरोधी होते हैं ये। उसके अलावा बढ़ते तापमान में भी ये अच्छी उत्पादकता देने में सक्षम है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी इन्हें उगाया जा सकता है। ये जो होते हैं लघु धान्य, इनके पोषक मूल्य भी बहुत ज्यादा है और इनमें कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इससे बहुत तरह के इनसे व्यंजन बनाए जा सकते हैं, जैसे माल्ट, रोटी, लड्डू, भाप में पकाया डम्पलिंग, दलिया, उपमा, चीला इत्यादि। तो हर वर्ग के लोग जैसे बच्चे, बूढ़े सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें रेशे से युक्त पदार्थ यानी कि फाइबर भी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम रहता है, जो हमारे दिल के लिए अति आवश्यक है। मधुमेह को भी कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। लौह तत्व होने के कारण एनीमिया को दूर करता है। कैल्शियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण हड्डियों को मजबूत करता है। उसके बाद आजकल बच्चे जो फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, जंक फूड खाते हैं, उनके लिए भी नूडल, कुकीज, बिस्किट इत्यादि बना के हम खाद्य सुरक्षा को, पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। कुपोषण को दूर करने में भी ये सहायक है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छे फसल है और इनको किसान भाई अपनी खेती में लगाकर और अच्छा फायदा प्राप्त कर सकते हैं। आज की कृषि चर्चा में बस इतना ही। धन्यवाद।
1: डॉक्टर आराधना कुमारी की जानकारी, लघु धान्य फसलों का फसल उत्पादन में महत्व, अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ कृषि चर्चा अब यहीं समाप्त होती है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। समय है एक अंतराल का।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में तदुपरांत हिंदी में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयंती समारोहे मुख्य अतिथि रूपेण भागं गृहीतवान्। भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे श्री मोदी सेशल्स देशस्य नागरिकेभ्यः भारतपरं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिन्द महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायी अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन संबलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशे ह्यः मॉरिशस देशस्य समकक्षेन डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ भारतस्य मॉरिशसस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मॉरिशस वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम्। आरक्षी अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः

0: विवाण्डीनगरं गत्वा उक्त TET प्रश्नपत्रम् ₹1,50,00,000 विक्रीतवान्। आरक्षि अन्वेषकाः लीक् कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीयव्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्करसमूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानाम् आरक्षि अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्यपरिवारकल्याणमन्त्री जगत्प्रकाशनड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीयस्वास्थ्यपरिवारकल्याणपरिषदः 16 सम्मेलने समग्रशिशुबालस्वास्थ्यकार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्रीनड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्तभारत अभियानस्य परिचालनमार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनिमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनिमिया विरुद्धयुद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस् देशस्य एथेन्स् नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकम् आर्थिकसहकार्यञ्च सुदृढीकर्तुं भारतीयव्यापारप्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीयसम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इच्छक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

0: जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

लीजिए अब सुनिए हमारे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की ससमय विस्तृत जानकारी। सात बजकर बीस मिनट पर नमस्कार। भोपाल कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे, बारिश के दिनों में डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया के खतरे से कैसे बचा जाए। इस विषय पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी से चर्चा। त्रिभाषा नीति लागू होने के बाद संस्कृत पढ़ने की अनिवार्यता को लेकर संस्कृत विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रघुवीर प्रसाद गोस्वामी से बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के अवसर पर सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की भूगोल विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुसुम माथुर जी से एक मुलाकात। फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम सुरमई सवेरा प्रस्तुत किया जाएगा 8:30 पर और गीत सागर 10:05 पर। नौ बजकर 15 पर लोक संगीत कार्यक्रम में बुंदेली लोकगीत सुन सकते हैं आशा भारती की आवाज में। उर्दू कार्यक्रम आईना की पेशकश होगी 9:30 पर। 10 आप तक पहुंचाएंगे जिले की चिट्ठी और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुनिए साईं ऐश्वर्या महाशब्द का राग मिया की तोड़ी में ख्याल गायन। 11 से हमारा प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। आज होगा फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। आपकी फरमाइश दिन में 12 और 2:30 पर। 12:30 पर संग्रहालय से कार्यक्रम में रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी की 11वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। आकाशवाणी भोपाल से दिन में 1 होगा महिला कार्यक्रम। अर्चना खरे के गाए बुंदेली लोकगीत सुनेंगे। लोक संगीत कार्यक्रम में 1:30 पर। 1:45 पर सुगम संगीत में रत्नेश दुबे की गाई गजलें आपको सुनवाई जाएगी और 2 होगा फिल्म संगीत। मीडियम वेव पर सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी

पाँच बजे से 5:02 पर आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत करेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। सांधिकालीन सभा के अंतर्गत फिल्म संगीत का समय होगा 5:33, 6:30 और रात 8:15। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुने शाम 6:00। 6:40 पर आजकल प्रादेशिक समाचार दर्शन का समय होगा 6:45। सात 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगी कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: रात 8 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से पुनः जुड़कर सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से 9:30 पर अनुप्रसारित करेंगे और रात 10 बजे आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स ने दिया सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। सेशल्स यात्रा के दौरान भारत ने की 1250 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नीमच और शाजापुर में करेंगे सौर ऊर्जा पार्कों का उद्घाटन। और भारतीय महिला क्रिकेट T20 टीम विश्व कप से बाहर, और पुरुष टीम आयरलैंड से T20 सीरीज हारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन प्रदान किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी ने पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की सरकार और जनता का धन्यवाद देते हुए यह सम्मान जलवायु परिवर्तन से लड़ रहे सभी देशों को समर्पित किया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री श्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार और सियोल शांति पुरस्कार मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा के दौरान भारत और सेशल्स ने स्वास्थ्य, शिक्षा, अक्षय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री श्री मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के बीच विक्टोरिया में हुई वार्ता में भारत ने सेशल्स को 1250 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी किया जाएगा, जो प्रदेश की पहली सोलर ऊर्जा भंडारण परियोजना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी करीब 1593 करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों और विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू को बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ की लागत से कुकरू, चिखलदरा, मुक्तागिरी और मेलघाट को जोड़ते हुए एकीकृत टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कुकरू में योगाभ्यास किया और पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ भी किया।
2: पानी को लेकर मैंने कुछ निर्णय किए हैं। ग्राम पंचायत कुकरू में राशि 4 करोड़ 14 लाख की लागत

0: से तालाब का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम कसई में तालाब निर्माण का सर्वे उपरांत जो खर्चा लगेगा हम देंगे। ग्राम जामुखेड़ा में रोड निर्माण के लिए 70 लाख, ग्राम लोकल दरी में पुलिया निर्माण 40 लाख, ग्राम कसई भेड़िया कुंड में 85 लाख, ग्राम खामला में बालिका छात्रावास निर्माण 1.20 लाख, मतलब 120 लाख की ये छात्रावास की मंजूरी दी है।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांवों की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट में प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के। मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही, इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50 करोड़ लगभग लगेगा और इसका उपयोग अगर ढंग से हो गया तो गांव की जरूरत के बुनियादी जरूरतों के सारे काम हम इससे पूरा कर दें। योजना अधिसूचित हो गई, रूल्स बनाने में सहयोग मिला है और लगभग एक आध राज्य शायद अपवाद हो तो हो, नहीं तो सब राज्यों ने बजट में प्रावधान कर दिया है अपने हिस्से का।
1: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल खरगोन के झिरनिया में आयोजित सिकल सेल शिविर में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना और प्रधानमंत्री जनमन योजना जनजाति क्षेत्रों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। उन्होंने कार्यक्रम में ब्लड बैंक का शुभारंभ किया और 2 एम्बुलेंस तथा 1 शव वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब रुक करते हैं एक अच्छी खबर का। स्वच्छ भारत अभियान को नई दिशा देते हुए खरगोन नगर पालिका ने धार्मिक आस्था, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम प्रस्तुत किया है। नगर पालिका शहर के मंदिरों से प्रतिदिन फूल एकत्रित करके फूलों की अगरबत्ती बना रही है। इस खास अभियान की और जानकारी दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता आशुतोष पुरोहित।
4: शहर के मंदिरों से निकलने वाले फूल अब कचरा नहीं बन रहे बल्कि उन्हीं फूलों से सुगंधित अगरबत्तियां तैयार की जा रही। नगर पालिका ने शहर के 50 से अधिक मंदिरों से प्रतिदिन करीब 5 क्विंटल फूल एकत्रित करने की व्यवस्था की है। इसके लिए विशेष वाहन लगाए गए जो फूलों को संग्रहित कर अगरबत्ती निर्माण केंद्र तक पहुँचाते हैं। तैयार की गई अगरबत्तियों को कुंदा नाम दिया गया है और उन्हें मंदिरों में निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। नगर पालिका का यह नवाचार स्वच्छ भारत अभियान की भावना को मजबूत करते हुए कचरे के पुनः चक्रण और पर्यावरण संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। अनुकूलनीय पहल को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चित्ते।
5: शहर में लगभग 50 से 60 मंदिर हैं, जिनमें कम से कम दिन भर में 5 क्विंटल से अधिक फूल संग्रहण होता है। उनको हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन करके हम टेंशन ग्राउंड पे हमारा जो मशीन रखी हुई है वहाँ ले जाते हैं, वहाँ सेग्रीगेट करके उसकी सफाई करके पाउडर बनाया जाता है, सुगंधित अगरबत्ती तैयार की जा रही है।
4: खरगोन नगर पालिका की यह पहल अन्य शहरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित।
1: केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना में दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पेयजल से जुड़ी विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने प्रेजेंटेशन के जरिए कूनो नदी पुनर्जीवन परियोजना, समृद्धि केंद्र और कार्डियक एम्बुलेंस सेवा जैसी योजनाओं की जानकारी दी। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कल झाबुआ जिला चिकित्सालय से बच्चों को पोलियो रोधक दवा की 2 बूंद पिलाकर अभियान की शुरुआत की। झाबुआ जिले में 2,13,000 से अधिक बच्चों को दवा पिलाने के लिए 1,100 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं। इसके साथ ही इंदौर, सागर, नीमच, देवास, जबलपुर, खंडवा और मंदसौर सहित प्रदेश के सभी जिलों में भी इस अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रदेश की 4 पारंपरिक कृषि उपजों सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैंगनी अरहर और छत्री धान को GI टैग मिल गया है। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने बताया कि इससे उन उत्पादों को देश विदेश के बाजारों में नई पहचान, कानूनी संरक्षण और बेहतर कीमत मिलेगी। ये चारों उपज मुख्य रूप से डिंडौरी, मंडला, अनूपपुर, बालाघाट और शहडोल जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र महाकौशल के क्षेत्र में उगाई जाती हैं। प्रदेश में 19 मार्च से शुरू हुए जलगंगा संवर्धन अभियान का कल समापन होगा। समापन के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों की उपस्थिति रहेगी। अभियान के दौरान जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और नदी पुनर्जीवन से जुड़े 3.5 लाख से ज्यादा कार्य पूरे किए गए।

गया है। कल हर ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा जाएगा और उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों तथा संगठनों को सम्मानित किया जाएगा। अब बात करते हैं मौसम की। उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुना, मंडला और बालाघाट में आज भारी बारिश का अलर्ट है। यहाँ 24 घंटे में 4 इंच या उससे ज़्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई ज़िलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अब रुख करते हैं खेल का। ICC महिला 20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने लॉर्ड्स में ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर 172 रन बना लिए। वहीं आयरलैंड ने इतिहास रचते हुए पहली बार मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारत को कल T20 सीरीज में हरा दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा की 7 शासकीय ITI संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 30 जून है। मंदसौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पिपलिया मंडी में 1,77,00,000 की लागत से 32 कैश काउंटर दुकानों और ग्राम गुड़भेली छोटी में सड़क का भूमि पूजन किया। डिंडौरी जिले को HPV टीकाकरण अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। इंदौर में 45 दिवसीय शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 का आवासीय प्रशिक्षण शिविर का कल समापन किया गया और धार वन मंडल के अंतर्गत वन मंडल स्तरीय रूट शूट वृक्षारोपण तकनीक प्रशिक्षण का कल आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार भोपाल सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को सुबह की राम राम, आदाब, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी रेडियो मित्र रुचि सचान। विश्वास ने आकर थाम लिया जब छूट गई हर आस, मिल जाता तुझको ईश्वर भी, हो जाता जो विश्वास। मित्रों, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में अंधविश्वास और विश्वास पर बहुत ही अच्छी बात कही थी। क्या आप जानते हैं दोनों के बीच में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अंधविश्वास नकारात्मकता को जन्म देता है तो विश्वास सकारात्मकता को। अंधविश्वास हमारे भीतर डर पैदा करता है जबकि विश्वास साहस पैदा करता है। और अंधविश्वास के इसी डर के चलते असम के लोग उस हरगिला पक्षी को अशुभ मानकर मार देते थे, जो पक्षी पर्यावरण को स्वच्छ रखने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। हम लोग ऐसे ही न जाने कितने ही जीव जंतुओं को अपशकुन मानकर उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते। उल्लू, काली बिल्ली, छिपकली, कौआ, चमगादड़ और न जाने कितने ही ऐसे जीव जो इकोसिस्टम को बचाने और बनाए रखने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन्हीं को हम मनुष्य हे दृष्टि से देखते हैं। हम इस प्रकृति के लिए, इसके इकोसिस्टम के लिए क्या कर रहे हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। वैसे प्रधानमंत्री जी ने इस पर्यावरण को बचाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका देने वाले हमारे पड़ोसी जिले राजगढ़ की महिलाओं की भी प्रशंसा की है मन की बात में, जिन्होंने प्लास्टिक के कचरे से इको ब्रिक्स तैयार किए हैं। तो क्यों ना हम भी पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देते हुए अपने शहर, अपने देश को स्वच्छ बनाएं, सुंदर बनाएं।

आप सुन रहे हैं 188.32 मीटर डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर अपना मनपसंद प्रोग्राम नमस्कार भोपाल। कार्यक्रम के इस पड़ाव पर हम आपको पढ़कर सुनाते हैं समाचार पत्रों के वो चुनिंदा समाचार जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला समाचार ई साक्ष को लेकर। मध्य प्रदेश की न्यायिक प्रणाली में डिजिटल क्रांति होने जा रही है। प्रदेश सरकार ने अदालतों को आधुनिक और तेज बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य की अदालतों में फोटो, ऑडियो और वीडियो जैसे डिजिटल साक्ष्य बिना किसी सर्टिफिकेट के सीधे कानूनी सबूत के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। अगला समाचार मौसम को लेकर। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 3 दिन के लिए भोपाल समेत 48 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बिजली गिरने, कई दौर की बारिश तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। अगली खबर, मध्य प्रदेश के रतलाम रेल मंडल में दाहोद रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप देश की नई पावर फैक्ट्री बन गई है। साल में यह वर्कशॉप 1200 हाई स्पीड इलेक्ट्रिक रेल इंजन तैयार करेगी। खास बात यह है कि 90% टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कर्मचारी स्थानीय हैं। और अब समाचार खेल जगत का। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप स्टेज के 72 मुकाबले खत्म हो गए हैं। अफ्रीका का दबदबा जारी है। अंतिम 32 में अफ्रीका के रिकॉर्ड 9 देश पहुंचे हैं, जबकि एशिया के मात्र 2 देशों ने अपनी जगह बनाई है। दोस्तों, आज के समाचारों में बस इतना ही। और अब 90 के दशक का यह लोकप्रिय गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, आइए सुनते हैं।

0: अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। मैं हूँ रुचि सचान और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। मित्रों, बरसात का मौसम जहाँ एक ओर हरियाली और खुशियाँ लेकर आता है, तो वहीं दूसरी ओर बीमारियों का खतरा भी लेकर आता है, और सबसे ज्यादा खतरा होता है मच्छरों से। हर वर्ष हजारों लोग मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के शिकार होते हैं। इन बीमारियों से कैसे बचा जाए और इस विषय में हमें अधिक जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी। आइए सुनते हैं। प्रभाकर जी, भोपाल में इस वर्ष डेंगू के मामले पिछले वर्ष की अपेक्षा दोगुने हो गए हैं, तो क्या कारण हो सकते हैं इसके?
1: देखिए, जैसा आपको मालूम है कि जो डेंगू या दूसरे वेक्टर बॉर्न डिजीजेज होते हैं, वो मानसून के सीजन में सबसे अधिक होते हैं। पिछले कुछ समय से प्री मानसून की बारिश का आनंद ले रहे हैं। जहां बारिश से गर्मी कम हुई है, वहीं टेम्परेचर कम होने से जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं, उनको बढ़ने का खतरा भी मिल गया है। जून के माह में आमतौर पर हम इस माह को मलेरिया माह के तौर पर मनाते हैं, और इसमें जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं, उनको रोकने के लिए तैयारी भी करते हैं।
0: अक्सर लोगों में ये आम धारणा होती है कि मच्छर जो है वो गंदे पानी की गंदगी में ही पनपते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, मच्छर जो है गंदे पानी और साफ पानी दोनों में रहते हैं। और एक बात है कि जो डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छर हैं, उनका भी शहरीकरण हो गया है। शहरों में वो कुछ ज्यादा संख्या में देखने को मिलते हैं, और आम तौर पर ये साफ पानी में मिलते हैं। और इसके साथ ही साथ इनकी जो फ्लाई रेंज रहती है, वो बहुत ज्यादा नहीं रहती, इसलिए आमतौर पर अगर हम देखें तो ये घर पर या हमारे जो वर्क प्लेस हैं, ऑफिस हैं, स्कूल हैं, वहाँ पर अगर रहते हैं तो वहीं पर लोगों को काटते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के लिए कि हम जितने भी अपने ऐसे सोर्सेज हैं, जैसे कि हम कूलर का उपयोग करते हैं गर्मी में और उसके बाद उसमें पानी भरा छोड़ देते हैं, या फिर हम गर्मी में बहुत ज़्यादा पानी बचाने के लिए गमलों के नीचे प्लेट्स रखते हैं और उसके बाद उन प्लेट्स में पानी भरा हुआ छोड़ देते हैं, दैनिक उपयोग के लिए हम जो बाथरूम में पानी की टंकियाँ रखते हैं और उसके बाद उनको रोज़ साफ़ नहीं करते, तो जो भी हम पानी इकट्ठा करें या कहीं दुर्घटनावश

0: इकट्ठा हो जाए तो उसको अगर आवश्यकता नहीं है तो उस पानी को खाली कर दें, और हम अपने निस्तार के लिए अगर पानी भर रहे हैं तो उसको बदलते रहें, एक ही पानी को सिर्फ टॉप अप न करते जाएं, जिससे कि वहाँ पर मच्छरों को अंडा देने का मौका मिले। आम तौर पर जो धारणा थी कि मच्छर गंदे पानी में पनपते, पर मच्छर साफ पानी में, जो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर नहीं है, उनमें भी पनप सकते हैं।
1: डेंगू और मलेरिया के रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या विशेष कर रहा है या क्या विशेष उसकी कार्य योजना बनी हुई है?
0: देखिए, अगर आप देखें तो जो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जिसे अब लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग हम मध्य प्रदेश में कहते हैं, वो लगातार वाहक जनित रोगों से निपटने की तैयारी करता रहा है। इसके लिए एक बहुत पहले से राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसको हम पहले मलेरिया निवारण या मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कहते थे, जो अब वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में परिवर्तित हो गया है। उसके तहत हम चाहे वो डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे मलेरिया हो, उसको रोकने का और अगर कोई उससे बीमार होता है तो उसको ट्रीट करने का पूरा इंतजाम करते रहे। इन उपायों के कारण मलेरिया अब लगभग अंत की ओर है। हमारे जो कुछ वनाच्छादित क्षेत्र हैं, ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी वन अच्छी मात्रा में है, वहां पर कुछ केसेस देखने को मिलते हैं। अब बाकी क्षेत्रों से मलेरिया अब बहुत ही छुटपुट केसेस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें भोपाल में, तो भोपाल में साल भर में 10 केसेस भी अब देखने में नहीं आते। पर दूसरी तरफ जो डेंगू और चिकनगुनिया है, उसके केसेस शहरों में विशेषकर लगातार बढ़ते रहे हैं। पर अगर व्यापक रूप से देखें तो सरकार हर घर में जाके ये नहीं देख सकती कि आपके यहाँ पर मच्छर तो प्रजनन नहीं कर रहे हैं। आगे ये हमारी खुद की जिम्मेवारी है कि हम अपने घर के अंदर ऐसे सोर्सेज जहाँ पर मच्छर ब्रीड कर सकते हैं, उनको पहचानें और उनको ख़त्म करें। पर इसके बावजूद भी आपको ऐसे लक्षण प्रतीत होते हैं कि आपको बुखार आ रहा है, ठंड भी लग रही है, साथ में बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है, तो बिना देर करे आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र आ सकते हैं। हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सिविल अस्पताल हैं, जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, वहाँ सभी जगह पर इनके जांच व उपचार की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। एक बात और मैं लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जैसे ही कोई बुखार आता है, लोग स्वयं ही प्लेटलेट काउंट करवाने लगते हैं और उसके बाद डॉक्टरों से पूछने लगते हैं कि हमें प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं है। आमतौर पर बहुत ही सीवियर केसेस को, डेंगू शॉक सिंड्रोम को या हिमोरेजिक फीवर को हम छोड़ दें, तो आमतौर पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ रूटीन मेडिसिन और हाइड्रेशन, इसमें हाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, उससे मरीज ठीक हो सकता है। तो साथ ही लोगों से मेरा ये भी अनुरोध रहेगा कि अगर बुखार आता है तो घबराएं नहीं, अपने निकटस्थ जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, आपका जो भी फैमिली फिजिशियन है, उससे संपर्क करें, वो जो भी सलाह देता है वो जांच करवाएं। अपने आप स्वयं ना तो जांच करवाएं और ना ही उपचार करने की कोशिश करें, क्योंकि स्वयं उपचार घातक भी सिद्ध हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, वास्तव में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तीनों ही मच्छर से होते हैं, ये तो सभी को पता है, लेकिन इनमें अंतर क्या है, अगर आसान भाषा में समझा सके तो?
0: जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम सीरीज के जो प्रोटोजोआ होते हैं उनके माध्यम से होता है, पैरासाइट होते हैं उनके माध्यम से होता है, जबकि डेंगू और चिकनगुनिया दोनों ही वायरल डिजीजेज होती हैं। तो आम तौर पर जो वायरल एग्जम्पटम होता है, यानी कि जो वायरल डिजीजेज हैं, उनके शुरुआत के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं, जैसे कि बुखार आना, कमजोरी होना, कभी कभी हल्की खांसी सर्दी जैसी भी महसूस हो सकती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, इस तरह का होता है। तो बेसिकली मच्छर जो है वो सिर्फ वाहक है, जो उनका रोग का कारण है, वो जहाँ मलेरिया में प्लाज्मोडियम सीरीज के वो रहते हैं पैरासाइट, वहीं पर डेंगू और चिकनगुनिया में ये वायरसेस रहते हैं।
1: मित्रों, अभी आपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी को सुना, जिन्होंने मच्छरों से फैलने वाली विभिन्न बीमारियों और उनसे बचाव के बारे में विस्तार से बताया। और अब सुनते हैं ये बेहतरीन गीत खास आपके लिए।

0: मित्रों, एनईपी 2020 के अंतर्गत त्रिभाषा नीति को सीबीएसई स्कूलों में इसी सत्र से लागू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अब कोई भी दो भारतीय भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा। ऐसे में अधिकांश विद्यालयों में संस्कृत पढ़ना अनिवार्य हो गया है। वैसे तो संस्कृत विश्व की सबसे पुरातन भाषाओं में से एक है, लेकिन इसे लेकर आज भी लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो चलिए आपका भ्रम दूर करते हैं और बात करते हैं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित संस्कृत विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रघुवीर प्रसाद गोस्वामी जी से।
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विभिन्न शिक्षा बोर्ड त्रिभाषा नीति लागू करने जा रहे हैं, तो रघुवीर जी, वास्तव में ये त्रिभाषा सूत्र है क्या?
2: देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में त्रिभाषा सूत्र का फार्मूला इस तरह से है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझे, मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है, तो पहली भाषा हमारे विद्यार्थी हिंदी पढ़ेंगे, दूसरी भाषा हमारे विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ेंगे और तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत का अध्ययन करेंगे। तो ये शिक्षा नीति के अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र फार्मूला है।
1: विद्यालयों में संस्कृत को अनिवार्य बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? असल में
2: हमारी जो नई पीढ़ी है, संस्कृत के माध्यम से इनमें सकारात्मकता आएगी, धैर्यशाली बनेंगे, संस्कार और संस्कृति से परिचित होंगे, भारतीय परंपराओं का ज्ञान होगा, भारतीय संस्कृति में रचेंगे बसेंगे, उनके जीवन मूल्यों का संवर्धन होगा, उनमें नैतिक मूल्य आएंगे। ये प्रमुख उद्देश्य संस्कृत को लागू करने का है।
1: इस बार संस्कृत के पाठ्यक्रम में क्या विशेष रहेगा?
2: भारतीय जो संस्कृति के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, साहित्य है, इसके बारे में तो बतलाएंगे ही, साथ ही साथ में भारतीय जो वैज्ञानिक हैं, जैसे चरक, सुश्रुत इत्यादि अन्य जो वैज्ञानिक हुए हैं भारत के, और प्राचीन भारतीय ऋषियों का जो वैज्ञानिक चिंतन है, इसको समावेश करने का तो प्रयास किया ही गया है। साथ ही मनोरंजन की दृष्टि से कुछ हास्य श्लोक भी हैं, नीति के श्लोक भी हैं, जो पहेलिकाएं हैं, पहेलियां, और विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी संस्कृत के माध्यम से देते हुए, विभिन्न महापुरुषों की जानकारी संस्कृत के माध्यम से देने का प्रयास किया जाएगा।
1: संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा और करियर की क्या संभावनाएं आप देखते हैं?
2: संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा और उनके कैरियर में अपार संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। अभी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने BAMS का जो आयुर्वेद के माध्यम से एक

0: पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी, जिसका संस्कृत विषय है 10वीं में और 12वीं में, तो ये BA MS कर सकेंगे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से। सारी की सारी जो भारत सरकार की और प्रदेश सरकारों की सेवाएं हैं, UPSC और PSC जितनी हैं, सारी सेवाओं में जाने के लिए पात्र हैं, क्योंकि इनकी उपाधियां समकक्ष होती हैं। जैसे शास्त्री उपाधिधारी बच्चे BA समकक्ष हैं, आचार्य उपाधिधारी बच्चे MA समकक्ष हैं, विद्यावारिधि PhD के समकक्ष है। तो जो स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए जो सारी की सारी नौकरियां हैं, वो सारी की सारी संस्कृत वालों को भी मिलेंगी। और विशेष करके संस्कृत माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों के लिए भारतीय सेना में एक धर्म शिक्षक का पद होता है, जो केवल उन्हीं के लिए आरक्षित होता है। बड़ा सम्मानजनक पद होता है, जिसमें भारतीय सेना का उच्च से उच्च अधिकारी भी उस धर्म शिक्षक का सम्मान करता है। बैंक सेवाओं में जा सकता है, बैंक में एक हिंदी अधिकारी होता है, उसमें संस्कृत वाले को प्राथमिकता दी जाती है। देश के अंतर्गत जितनी भी नौकरियां हैं, उनमें सब में वो भाग ले सकता है, और बड़ा ही उज्जवल भविष्य है संस्कृत वालों का।
1: आज बहुत से विद्यार्थी जो हैं संस्कृत विषय से घबराते हैं, तकनीकी युग में उन्हें संस्कृत महत्वहीन लगती है, तो ऐसे में आप संस्कृत की प्रासंगिकता को कैसे परिभाषित करते हैं?
0: देखिए, संस्कृत की प्रासंगिकता तो अक्षुण्य है, ये कभी नष्ट होगी नहीं, ये सदा प्रासंगिक रही है और प्रासंगिक बनी रहेगी। तीर्थ क्षेत्रों में, बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों में, जो रेलवे के माध्यम से भी जो उद्घोषणाएं होती ना गाड़ियों की या वायुयान की, ये भी संस्कृत में होती हैं। आकाशवाणी दूरदर्शन में भी संस्कृत के समाचार आते हैं। आज देखिए, जो विश्व की सबसे बड़ी संस्थाएं मानी जाती हैं, इसरो और नासा, इन्होंने भी ये सिद्ध कर दिया है कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। तो प्राचीन ग्रंथ होने के कारण प्राचीन ज्ञान विज्ञान भी वेदों में नहीं था। वेद किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत भाषा ज्ञान विज्ञान की जननी है, और साथ ही साथ में दूसरे से जोड़ती है, एक भौगोलिक स्थिति को समझने की, प्राचीन चिकित्सा शास्त्र को समझने की, और भी तमाम सारी गतिविधियां संस्कृत के माध्यम से संचालित तो होती हैं। उदाहरण के लिए वैदिक गणित, एक वैदिक गणित का कोई सवाल है तो वो बहुत जल्दी हो जाता है सामान्य गणित की अपेक्षा। तो ऐसे खगोल विज्ञान के बारे में सारा का सारा वर्णन है संस्कृत के माध्यम से। हमारी नई पीढ़ी भारतीय ज्ञान परंपरा पर और स्वयं पर गौरव करेगी, वो आत्मबोध उनको होगा और हीनता की भावना से मुक्त होंगे। हमारे ऋषियों का क्या चिंतन रहा है वैज्ञानिक, उस सबसे जोड़ने के लिए निरंतर प्रासंगिक है संस्कृत और रहेगी।
1: संस्कृत के शिक्षण को और भी अधिक रोचक और व्यावहारिक बनाने के लिए शिक्षण पद्धति में क्या-क्या परिवर्तन आवश्यक है?
0: हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। संस्कृत शिक्षण अत्यंत रोचक बने, इसके लिए हमने संस्कृत के गीत, बड़े ही गेय गीत हैं, सामूहिक गायन होगा उनका, क्रीड़ा के माध्यम से बच्चे संस्कृत सीखेंगे। उनके साथ में अंत्याक्षरी का प्रयोग किया जाएगा, श्लोक अंत्याक्षरी, और परस्पर की अनेक कथा कथन कहेंगे, छोटे छोटे अभिनय के माध्यम से, अंग संचालन के माध्यम से संस्कृत को गेय बनाते हुए और संस्कृत को रुचि पूर्वक अनुगायन करेंगे। संस्कृत को रोचक बनाने का, संस्कृत शिक्षण को रुचिकर बनाने का प्रयास किया जाएगा। और मैं तो केवल एक ही नारा देता हूँ, सबसे आह्वान करता हूँ कि आओ हम लौटें संस्कृत की ओर, आओ हम लौटें संस्कृत की ओर।
1: मित्रों, हमें विश्वास है कि संस्कृत के बारे में इतनी अच्छी जानकारी पाकर संस्कृत के प्रति आपके कुछ भ्रम अवश्य दूर हो गए होंगे, और संस्कृत भाषा उसके शिक्षण के विषय में हमें ये जानकारी दे रहे थे संस्कृत विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रघुवीर प्रसाद गोस्वामी जी। और अब मनोरंजन की बारी, अब सुनिए ये सदाबहार गीत।

0: मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को प्रकृति का अनमोल खजाना कहा जाता है। भारत का एक बड़ा भूभाग यह क्षेत्र है, लेकिन आज इन क्षेत्रों का संरक्षण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये क्षेत्र क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं और क्या है इनके संरक्षण की चुनौतियाँ, इन सभी विषयों पर आइए बात करते हैं सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की भूगोल विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर कुसुम माथुर जी से। कुसुम जी, उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल क्षेत्र वास्तव में होता क्या है और भारत के संदर्भ में इसका क्या महत्व है?
1: 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि मकर रेखा, इन दोनों के बीच का जो पृथ्वी का क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल क्षेत्र कहलाता है। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए ऐसा क्षेत्र है जहाँ सूर्य की किरणें वर्ष पर्यंत सीधी चमकती है। जो कर्क रेखा है वो अगर हम देखें तो जब हम सांची जाते हैं तो रास्ते में कर्क रेखा को क्रॉस करते हुए जाते हैं, तो उसके नीचे का पूरा भारत का क्षेत्र ट्रॉपिकल क्षेत्र पड़ता है।
0: इन क्षेत्रों को जैव विविधता का खजाना कहा जाता है, तो ऐसा क्यों? भारत के कौन कौन से क्षेत्र इसकी श्रेणी में आते हैं?
1: ये जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यह वर्ष पर्यंत ऊंचा तापमान रहता है, वर्षा अधिक होती है, विकास का अवधि काल लंबा होता है, विकास की उन्नत दशाएं पाई जाती हैं और इसी कारण यहाँ पर जैव विविधता मिलती है। भारत में जैव विविधता के प्रमुख क्षेत्र है हिमालय, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत का हिस्सा है जिसमें सुंदरबन भी आता है, और सुंडालैंड जो अंडमान निकोबार का क्षेत्र है। ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है और वर्तमान में ये हॉटस्पॉट की श्रेणी में भी आते हैं। जैव विविधता का हॉटस्पॉट हम कहते हैं जहाँ 1500 से अधिक एंडेमिक स्पीशीज हो, जो स्थानिक हो, उसका 70% से अधिक मूल निवास स्थान नष्ट हो गया हो, तो ऐसे उसमें पादप और जीव जंतु दोनों आते हैं। हिमालय क्षेत्र जो नॉर्थ वेस्ट में कश्मीर और लद्दाख से लेकर उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, वहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स और कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं और उनमें से बहुत सारे धीरे धीरे खतरनाक स्टेज में पहुंच गए हैं और उनके संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। इसी तरह पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी है। जो इंडो बर्मा रीजन है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ये क्षेत्र आता है, ये भी बहुत सघन वनों का उष्णकटिबंधीय

0: और घास के मैदान का क्षेत्र है, और चौथा क्षेत्र है अंडमान और निकोबार का, जहाँ जलीय जीव, पादप जीव और जीव जंतु पाए जाते हैं।
1: जलवायु परिवर्तन और बढ़ता तापमान इन क्षेत्रों को के इकोसिस्टम को कैसे प्रभावित कर रहा है?
0: एक्चुअली ये जो जैव विविधता है, इसका सीधा संबंध जलवायु से है। ऊंचा तापमान, अधिक वर्षा और लंबा वर्धन पीरियड ही जैव विविधता का प्रमुख कारण है। और तापमान परिवर्तन के साथ अगर तापमान बढ़ता है तो बहुत सारे स्पीशीज हैं जिनका हैबिटेट नष्ट हो जाता है, और अधिक वर्षा का पैटर्न भी चेंज हो रहा है। अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे कि वर्षा कम समय में अधिक सघन हो रही है, तो ऐसी वर्षा लैंडस्लाइड, फ्लडिंग का काम ज्यादा करती है। तो ये वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन जो रन ऑफ को बढ़ावा दे रहा है, जंगलों के विनाश के कारण भी ऐसा हो रहा है और विनाश का कारण भी बन रहा है। तो जलवायु परिवर्तन, अगर तापमान और वर्षा के पैटर्न में कोई परिवर्तन आता है तो जैव विविधता पर बुरा असर पड़ता है इसका।
1: उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के ऐसे कौन कौन से पहलू हैं जो शोध का विषय हो सकते हैं?
0: उष्णकटिबंधीय जो जैव विविधता है वो अभी बहुत ज्यादा खतरे में है। इसमें बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिनको हम, जिन पर रिसर्च कर सकते हैं, जिसके आधार पर हम उन कारणों को जान सकते हैं, उनके संरक्षण के उपाय ढूंढ सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन का जैव विविधता पर प्रभाव, रिफॉरेस्टेशन, वनाग्नि की बढ़ती हुई संख्या, और किसी भी क्षेत्र में आप जैव विविधता को जब तक नहीं बचा सकते जब तक आप उसमें कम्युनिटी सपोर्ट नहीं लेते हैं, तो जो स्थानीय समुदाय है उन पर, उनके योगदान पर, उनका संरक्षण में कितना योगदान है, इस पर भी काफी रिसर्च किया जा सकता है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि तभी हम वास्तविक स्थिति से रूबरू हो पाएंगे और कितनी खतरनाक स्थिति में हम पहुंच गए हैं हम जनमानस को बता पाएंगे।
1: यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और वन तेजी से नष्ट हो रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे विकास और इन क्षेत्रों के इकोसिस्टम के बीच में एक संतुलन बना के रखा जा सके?
0: अभी भी समय है, अगर हम सचेत हो जाते हैं हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको बचा कर रख सकते हैं। संसाधनों का प्रयोग भी करें लेकिन इतने जुडिशियस तरीके से करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसको बचा कर रखा जा सके। भारत ने इसमें पहल करते हुए मिशन लाइफ को शुरू किया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसमें हर आम नागरिक के लिए कैसे हम पानी बचा सकते हैं, बिजली बचा सकते हैं, ई वेस्ट को कम जनरेट कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल चीजों का प्रयोग ज्यादा कर सकते हैं। ये जो मिशन लाइफ है ये एक ऐसा पैकेज है जो ये बताता है कि हर इंडिविजुअल का इसमें योगदान है। हर व्यक्ति, कोई ये ना समझे कि मेरे करने से क्या होगा, हर एक व्यक्ति अगर वो एनवायरमेंट के प्रति सचेत होगा तभी पूरा चेंज हो सकता है। क्योंकि ये जो समस्या है ये किसी एक व्यक्ति की, एक क्षेत्र की, एक देश की, एक समाज की नहीं है, ये पूरी पृथ्वी की समस्या है और पृथ्वी पर रहने वाले हर एक प्राणी को इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा।
2: मित्रों, अभी आपने सरोजिनी नायडू गर्ल्स पीजी कॉलेज की भूगोल विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुसुम माथुर जी को सुना, जिन्होंने हमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महत्व और संरक्षण के विषय में विस्तार से जानकारी दी। और अब कार्यक्रम का ये अंतिम नगमा फिल्म माया से।

मित्रों, इसी गीत के साथ नमस्कार भोपाल का ये अंक यहीं संपन्न होता है। लेकिन जाने से पहले एक वादा कि कल फिर नए रंगों, नए गीतों और नई जानकारियों के साथ नमस्कार भोपाल आप तक वापस पहुंचेगा। आज के लिए अनुमति दीजिए अपनी रेडियो मित्र रुचि को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। समाचार प्रभात थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
2: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
3: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल हैं। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।

0: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
2: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
3: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉ. वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
4: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के

0: कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
1: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112371 7 0112371 7 0 6 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अलनीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स DTH के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमई सवेरा। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका।

श्रोताओं, बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, समर हॉलीडे खत्म हो गया है और इसके साथ ही समर हॉलीडे के होमवर्क और प्रोजेक्ट्स को स्कूल में रिप्रेजेंट करने का समय आ गया है। हर सुबह स्कूल बस के किसी न किसी स्टॉप पर कोई न कोई पेरेंट्स बच्चों का समर हॉलीडे वर्क हाथ में लिए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बच्चे खुद से अपना काम पूरा कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि हेल्प करते करते पेरेंट्स ही उनका पूरा वर्क कर देते हैं। कितना सही, कितना गलत और इसका क्या हल या समाधान हो सकता है, इस पर बात करेंगे इस गीत के बाद।

जी हाँ श्रोताओं, बच्चे नन्हे फूल हैं, कोमल कली के समान होते हैं, लेकिन उन पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ। अक्सर उनकी जो विकास की प्रवृत्ति होती है उसमें बाधा उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन अगर ये बोझ उन्हें न दिया जाए तो एक समय होता है कि वे संघर्ष करना नहीं सीख पाते हैं। आजकल गर्मी की छुट्टियां बच्चों के लिए छुट्टियां जैसी नहीं रही। साथ ही साथ अभिभावक भी अपनी छुट्टियों की योजना बनाने से पहले इस बात का आकलन करने लगते हैं कि कब, कहाँ, कितने दिनों की छुट्टियां बिताएं ताकि लौट कर आने पर बच्चों का हॉलीडे होमवर्क समय पर पूरा हो सके। क्योंकि छुट्टियों में बच्चे व्यस्त रहे, कुछ रचनात्मक करें और स्कूल की छुट्टियों के समय का सदुपयोग भी हो सके, इसलिए स्कूल से उन्हें विविध विषय से संबंधित कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। इससे बच्चों की प्रतिभा निखरती है, रचनात्मकता विकसित होती है और साथ ही उनकी रुचि भी हम जान पाते हैं।

बच्चों के लिए आजकल गर्मी की छुट्टियां छुट्टियों की तरह नहीं होती है, एक तनाव भरा समय होता है और वजह उसका परिणाम ये होता है कि बच्चे अपना पेशेंस यानी अपना धैर्य खो देते हैं, लूज टेम्पर हो जाते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं। लेकिन हमें ये समझाना होगा कि ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है। लेकिन देखा जाता है कि छोटे बच्चों को पेरेंट्स की हेल्प की ज़रूरत होती है जब उन्हें समर हॉलिडे होमवर्क्स दिया जाता है और पेरेंट्स वर्किंग होने के कारण धैर्य से बच्चों से करवाने की बजाय खुद करके दे देते हैं। और यदि कुछ बड़ी क्लास के बच्चों की बात करें तो वे खुद सोच विचार करने की बजाय उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम से अपना काम पूरा करके प्रस्तुत कर देते हैं। वहाँ तो अभिभावकों से मदद तो दूर, सलाह मशवरे की भी ज़रूरत उन्हें महसूस नहीं होती है। ज़रा सोचिए, ये रवैया बच्चों को क्या दिशा देगा।

0: कार्यक्रम सुरमई सवेरा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं, आपकी अपनी रेडियो संगिनी प्रियंका। और हम बात कर रहे हैं बच्चों को आज दी जाने वाली सुविधाओं, बच्चों के हॉलीडे होमवर्क में अभिभावकों की भूमिका, उसके सामने आने वाली समस्या और उनके समाधान के लिए बच्चों को कैसे तैयार किया जाए, इस विषय पर मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन।
3: बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: एक बार पुनः श्रोताओं स्वागत है आपका कार्यक्रम गीत सुरमई सवेरा के अंतर्गत। श्रोताओं पढ़ाई तो ठीक है, रोज़मर्रा की कई ऐसी या यूं कहें कि हर बात के लिए आजकल हम बच्चों की जीवन शैली को बहुत आसान और आरामदायक बना रहे हैं। उनके मुंह से कोई बात निकली और हम वो चीज़ उनके लिए हाजिर कर देते हैं। साधारण से साधारण बात के लिए भी हम बच्चों के लिए विकल्प तैयार रखते हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि जिन अभावों में हमने अपना जीवन यापन किया है वो बच्चे फेस न करें। जिस तरह कोई शौक या कोई काम अभाव और घर के अन्य सदस्यों की नापसंदगी के कारण हम नहीं कर पाए, तो हम सोचते हैं आज बच्चा अपनी हर इच्छा पूरी करे, हर वो काम करे जो उन्हें पसंद हो। लेकिन आपका ये प्यार बच्चों को आवश्यकता से अधिक सुविधाजनक माहौल दे रहा है, जिसके कारण आज बच्चे हर छोटी से छोटी खुद की समस्या के लिए भी आप पर निर्भर होने लगे हैं। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं।

Смайл, смайл, смайл, смайл, смайл, смайл, смайл, смайл.

run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run.

आज बच्चों के लिए हम हर सुविधा जुटाते हैं, उन्हें कोई काम करने नहीं देते हैं, उनकी हर मुश्किल घड़ी में हम अभिभावक पहले खड़े हो जाते हैं। ये हमारा लाड़ प्यार है, लेकिन प्यार की ऐसी किलेबंदी के क्या परिणाम होते हैं? बच्चे आत्मनिर्भर नहीं हो पाते हैं, हर छोटी बात में वे अपनी बात मनवाते हैं, लेकिन क्या इससे उनका व्यक्तित्व विकास होता है, उनका व्यक्तिगत

विश्वास होता है? शायद नहीं। तो अभिभावकों भी ये बात सोच समझकर बच्चों के लिए किस तरह का माहौल और किस तरह के संस्कार ज़रूरी है, उसके बीज उनके अंदर बचपन से ही डालने चाहिए।

0: सुरमई सवेरा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, और आज हम बात कर रहे हैं कि हमारा लाड़ प्यार कहीं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधा तो नहीं बन रहा है। इस विषय पर हम आपसे और बातचीत करेंगे, इस विषय पर और हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा अंतराल लेंगे 2 मिनट के खबरों के लिए। आकाशवाणी भोपाल से आपके लिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन प्रदान किया गया। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हारमाइनी ने पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांवों की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना में दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पेयजल से जुड़ी विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल खरगोन के झिरनिया में आयोजित सिकल सेल शिविर कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम में ब्लड बैंक का शुभारंभ किया और 2 एम्बुलेंस तथा 1 शव वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल बैतूल जिले के कुकरू को बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कुकरू में योगाभ्यास किया और पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ भी किया। मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुना, मंडला और बालाघाट में आज भारी बारिश का अलर्ट है। यहां 24 घंटे में 4 इंच या इससे ज्यादा बारिश हो सकती है। और ICC महिला 2020 विश्व कप में कल ऑस्ट्रेलिया ने लॉर्ड्स में ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

इस घंटे की खास खबरों के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम सुरमई सवेरा के अंतर्गत। श्रोताओं, आज अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को अधिकतम सुख सुविधाएं देना चाहते हैं, बेहतर स्कूल, हर जिद की तुरंत पूर्ति और हाथ में सजी सजाई जिंदगी। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हर इच्छा पूरी करने के चक्कर में हमारा बच्चा कैसा इंसान बन रहा है? वास्तविकता यह है कि जब हम अपने बच्चे के काम खुद करने लगते हैं तो हम उनकी मदद नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें पूरी तरह से हम पर या दूसरों पर निर्भर बना रहे होते हैं। और ऐसे बच्चे भविष्य में हर फैसले खुद अकेले लेने से फिर डरने लगता है। ये समस्या विकट हो सकती है, इसलिए इस परिस्थिति को बदलने के बारे में आज माता पिता को सोचना चाहिए।

आज कई माता पिता बच्चों की पूरी ज़िंदगी को संभालने में लग जाते हैं, जैसे उन्हें कब पढ़ना है, कब खेलना है, किससे दोस्ती करना है। जब हर निर्णय आप अगर लेने लगेंगे तो बच्चा खुद पर यकीन करना कैसे सीखेगा, और जब वह खुद कभी कुछ नहीं कर पाएगा तो वह जीवन के मोड़ पर स्वयं को सबसे कमज़ोर और असहाय समझेगा, और वो आपकी कोशिशों की और उसका कभी ध्यान नहीं जाएगा, और वो यह नहीं देख पाएगा कि आपने उनके लिए क्या किया है, और संभव है उस समय वह आपकी इस मदद पर सवाल भी उठाए कि आपने मुझे कुछ कभी करने ही नहीं दिया है। इसलिए बच्चों को उनकी वास्तविकता से रूबरू करवाइए और उन्हें मानसिक रूप से हर परिस्थिति के लिए तैयार कीजिए।

बेशक श्रोताओं बच्चों को लाड़ प्यार कीजिए, लेकिन उनकी मनमानियों पर कभी प्रश्न भी अवश्य कीजिए। यदि बच्चा प्रोजेक्ट घर भूल गया है,

तो उसे स्कूल पहुंचाने की भागदौड़ बंद कीजिए, उसे स्कूल में जवाब खुद देने दीजिए, शिक्षक की फटकार का सामना खुद करने दीजिए। आज जब माता पिता बच्चों को हर छोटी मुश्किल से बचाने लगे हैं तो जीवन की वे वास्तविकताओं से कटते चले जा रहे हैं। जब आप बच्चों के संकट मोचन बनकर हर बार उनकी जिम्मेदारी अपने सिर ले लेते हैं तो वह दूसरों के या आपके भी समय, मेहनत और प्रयासों का सम्मान करना कभी नहीं सीख पाते हैं।

श्रोताओं, बच्चों को आत्मनिर्भर बनना सिखाएं, उन्हें सुविधाएं तो दें लेकिन साथ ही समस्याओं से जूझना भी सिखाएं। अपना काम खुद करने के लिए प्रेरित करें, जैसे अपना बिस्तर खुद ठीक करना है, अपना स्कूल बैग खुद तैयार करना है, अपने स्कूल की यूनिफॉर्म और सुबह के लिए ज़रूरी अपनी सारी ज़रूरतों को या आवश्यक सामान को रात में ही तैयार करके रखना है, पानी की बोतल, टिफ़िन खुद बैग में रखना है, स्कूल से आने के बाद उन्हें साफ़ करने के लिए रखना है। यदि ये छोटी छोटी आदतें हम बचपन से ही उनमें डालेंगे तो बड़े होकर

पर वे बड़े काम या अपने अन्य और काम खुद करना सीख जाएंगे और इससे आप भी भविष्य में उनके प्रति निश्चिंत रह सकेंगे। अब अनुमति दीजिए आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका को आज का सुरमई सवेरा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।

आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम सुरमई सवेरा। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आशा भारती के गाए बुंदेली लोकगीत। सबसे पहले सुनते हैं गणेश वंदना।

0: आकाशवाणी भोपाल की जानिब से हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम आईना को लेकर हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त जावेद। इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। सामईन, आज की हमारी बातचीत का मौजू है अदब और इंसानी हकूक़ के ताल्लुक से। अज़ीज़ दोस्तों, अदब और इंसानी हकूक़ के दरमियान गहरा और तारीख़ी ताल्लुक़ है। अदब न सिर्फ माशरे की अक्कासी करता है बल्कि बुनियादी इंसानी हकूक़, आज़ादी और मसावात का सबसे बड़ा अलमबरदार भी रहा है। आज़ादी इजहार और शऊर की बेदारी पैदा करने के लिए अदब इंसानों को अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होने की तहरीक देता है। मज़लूमीन की तर्जुमानी के लिए अदीब और शायर अपनी तहरीकों के ज़रिए मुआशरे के पसमानदा तबकों, अक़लियतों और मजबूर अफराद के मसाइल को दुनिया के सामने उजागर करने का बेहतरीन हुनर रखते हैं। इंसानी इकदार का तहफ़ुज़ और हकूक़ के लिए बेहतरीन अदब हमेशा इंसान दोस्ती, रवादारी और बाहमी एहतराम का दर्स देता आया है, जो किसी भी माशरे में अमन के क़याम के लिए नागुज़ेर है। अगर हम तारीख़ी जद्दोजहद का मुताला करें तो दुनिया भर की अदबी तहरीकों जैसे तहरीक आज़ादी या तहरीक निस्वा से इंसानी हकूक़ की वकालत में कलीदी किरदार अदा किया है। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और फ़लसफ़ों ने भी अदब और इंसानी हकूक़ की कदरों पर ख़ास ज़ोर दिया है, जहाँ एक दूसरे के हकूक़ की अदायगी और एहतराम को इंसानियत की मेराज करार दिया गया है। दोस्तों, उर्दू ज़बान व अदब में बहुत ज़्यादा वसअत है कि वो किसी भी दूसरी ज़बान के अल्फाज को न सिर्फ अपने अंदर समो लेती है बल्कि इसमें इस कदर लचक है कि हर हाल में इलाके में ख़ुद को ढाल लेती है। इसी ज़बान व अदब ने हिंदुस्तान को मुत्तहिद करने और अमन कायम रखने में भी बेहद अहम किरदार अदा किया है। उर्दू अदब का दायरा बहुत वसी और जामे है। इसमें ज़िंदगी के मसाइल के अलावा इंसानी हकूक़ का बेशबहा सरमाया मौजूद है। इसने हमेशा इंसानी आला कदरों को सराहा है और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया है। दोस्तों, इंसानी हकूक़ के तफसीली फ़लसफ़े और बुनियादी हकूक़ की नौइयत के बारे में मज़ीद जानने के लिए आइए हम सुनते हैं एक तकरीर, जिसमें मुकर्रर हैं मोहम्मद आरिफ जुनैद खान। समाअत फरमाइए।
1: अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, उसे अक्ल सलीम की दौलत से मालामाल किया है, उसे कुव्वत गोयाई, ज़राए अक्ल खिर्द यानी कुव्वत समात, कुव्वत बसारत, कुव्वत फिक्र तदब्बुर, हुर्रियत पसंद, फितरतन आज़ादी ख्याल का खूगर पैदा किया है। ख़ानदान, गिरोह और माशरे में रहना उसकी फितरी ज़रूरत है। माशरे में रहने के लिए उसे बेशुमार सहारों, मदद और खिदमात की हर आन ज़रूरत रहती है। अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात की फराहमी में दीगर अफराद की तवज्जो, तआवुन, ताल्लुकात और रवाबित लाजमी हैं। उसे अपनी फितरी सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए इज्तिमाई और समाजी ताल्लुकात को बरकरार लाकर अपनी ज़िंदगी के दायरों को वसी करके ज़िंदगी के तमाम शोबों को तरक्की देना और अपने हकूक़ व फ़राइज़ का तायुन करना ज़रूरी होता है, ताकि ज़िंदगी के मफादात बहुसन खूबी हासिल हो सकें। बकौल जनाब मोहम्मद सलाउद्दीन साहब, ताल्लुकात के ये छोटे बड़े दायरे उसके हकूक़ व फ़राइज़ का तायुन करते हैं। माँ बाप, औलाद, शागिर्द, उस्ताद, मालिक, मुलाजिम, ताजिर, खरीदार, शहरी और हुक्मरान की बेशुमार मुख्तलिफ हैसियतों से इस पर कुछ फ़राइज़ आयद होते हैं और उन फ़राइज़ के मुकाबले में वो कुछ मुतय्यन हकूक़ का मुस्तहिक़ करार पाता है। हकूक़ इनफरादी भी होते हैं और इज्तिमाई भी। इन हकूक़ में बाज़ अखलाकी, कानूनी और दस्तूरी भी, और रियासत हुकूमत के ज़रिए जो इंसान को हकूक़ दिए जाते हैं उन्हें हम बुनियादी हकूक़ या फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। इन हकूक़ की ज़मानत मुल्क का दस्तूर देता है, ताकि रियासत का कोई भी शोबा, ख्वाह वो इंतज़ामी हो या कानून साज, उनकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। ये हकूक़ फ़र्द को किसी रियासत का शहरी होने की हैसियत से नहीं, बल्कि आलमगीर इंसानी बरादरी का रुकन होने की हैसियत से हासिल होते हैं। ये रंग, नस्ल, इलाके, ज़बान, मजहब, कल्चर, तमद्दुन और दूसरे तमाम इम्तियाज

आशा भारती के गाए बुंदेली लोकगीत अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। पेशे खिदमत है उर्दू प्रोग्राम आईना।

0: दोस्तों, अभी आप गुलूकार शंकर दास गुप्ता की आवाज़ में गज़ल समात फरमा रहे थे, जिसमें कलाम था जिगर मुरादाबादी का। सामईन, शायरी अपने दौर के हालात, मसाइल और तहजीबी इकदार का मुशाहिदा करने के साथ साथ इंसान की दबी हुई ख्वाहिशात, उदासी, खुशी और मोहब्बत को अल्फाज का रूप देती है। शायरी बीमार रूह की दवा है, क्योंकि ये दिल का बोझ हल्का करती है। दोस्तों, इसी शायरी के ताल्लुक से हमने आपके लिए एक कलाम का एहतिमाम किया है, जिसमें शायर हैं जलाल मयकश। तो आइए सुनते हैं उनका कलाम उन्हीं की ज़ुबानी। समात फरमाइए।
1: दुश्मन

दुश्मनों से कह दीजिए। हजरत एक दो तीन चार शेर और एक गजल के मुलाहिज़ा फरमाए। मतलब पढ़ता हूँ कि तरकश में जितने तीर थे सब आजमा लिए, तरकश में जितने तीर थे सब

पत्थर उठा लिए। और शेर पढ़ता हूँ के जब मांगने से अपना हमें हक नहीं मिला।

सब आजम और हजरत ये शेर भी मुलाजा फरमाए था, मुलाजा करें के बच्चे मेरी गरीबी का रखते हैं यूं भरम, बच्चे

रात के बासी थे खालिए, दुनिया की आखरत में दुनिया की आ

0: ये तरकशु में जितने तीर थे सब आजमा लिए।
1: सामईन, अभी आप शायर जलाल मैकश से उनका कलाम सुन रहे थे। इसी के साथ हमारा आज का ये प्रोग्राम आईना यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा अपने खतूत के ज़रिए हमें ज़रूर मुत्तला करें। तो चलिए अब आप हमारा पता नोट कीजिए। उर्दू प्रोग्राम आईना, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। अब आपके रेडियो दोस्त जावेद को दीजिए इजाज़त। आदाब।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम आईना, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए अशोकनगर जिले की चिट्ठी, आलेख नीरज कुमार शुक्ल का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अशोकनगर जिले की चिट्ठी, आलेख नीरज कुमार शुक्ल का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। अशोकनगर जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात प्रशासन

और सहकारिता की। जिले में बीते दिनों राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के नवनियुक्त प्रशासक महेंद्र सिंह यादव ने मुंगावली तहसील का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सहकारिता, ऊर्जा संरक्षण, सदस्यता महाअभियान और हरित सहकार अभियान की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और तय समय पर लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को बेहतर बिजली सेवाएं देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने विभिन्न स्थानों पर बिजली समाधान शिविर लगाए। इन शिविरों में उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन को लेकर भी जिले में लगातार गतिविधियां चल रही हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कलेक्टर साकेत मालवीय ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ तुलसी सरोवर तालाब में श्रमदान कर साफ सफाई की। वहीं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने नवांकुर संस्थाओं के माध्यम से बावड़ी उत्सव का आयोजन किया। अब बात करते हैं जिले की ऐतिहासिक धरोहरों की। अशोकनगर की ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत को पर्यटन से जोड़ने के लिए जिला पुरातत्व और पर्यटन तथा संस्कृति परिषद की ओर से पर्यटन मित्र तैयार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पर्यटन मित्रों के लिए 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। विश्वख्यात चंदेरी साड़ी की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अब प्रत्येक चंदेरी साड़ी पर GI टैग लगाया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि चंदेरी साड़ियों के संरक्षण और बेहतर विपणन के लिए हैंडलूम पार्क के नाम से एक समर्पित वेबसाइट तैयार की जाएगी और MPIDC को इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। अब बात करते हैं खेती किसानी की। जिले में खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। कृषि उपसंचालक अमित भदौरिया ने बताया कि इस वर्ष 3,08,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल बोने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सबसे अधिक 1,78,000 हेक्टेयर में मक्का, 65,000 हेक्टेयर में सोयाबीन और 9,000 हेक्टेयर में मूंग तथा 2,500 हेक्टेयर में उड़द की बुआई की जाएगी। समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में भी जिले में विशेष अभियान चलाया गया। बीते दिनों नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया गया। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी उत्साह के साथ मनाया गया। अशोकनगर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुंगावली विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिले में संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बात करें तो इस योजना के तहत जिले के हजारों हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभान्वित किया गया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिले के हितग्राहियों के खातों में कुल 1,49,22,000 रुपए की पेंशन राशि अंतरित की। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था से जुड़ी खबर की। श्रद्धेय जैन मुनि सुधा सागर जी महाराज के संबंध में व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक टिप्पणी प्रसारित किए जाने के मामले में जैन समाज ने ज्ञापन सौंपा था। समाज की सूचना पर थाना कोतवाली अशोकनगर में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। युवाओं के लिए भी एक अच्छी खबर है। खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से जिले में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर योजना के तहत एथलेटिक्स कोच की नियुक्ति की गई है। ये कोच एथलेटिक्स में रुचि रखने वाले युवाओं के साथ साथ आर्मी और MP पुलिस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की शारीरिक तैयारी करने वाले युवक युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे। सुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा की गई है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों की जमीन के सीमांकन और बंटवारे के लंबित मामलों का समय पर निराकरण करने, CM हेल्पलाइन की शिकायतों का समाधान देने और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं रेल यात्रियों के लिए भी राहत की खबर है। अशोकनगर जिले से होकर गुजरने वाली बीना गुना रुठियाई पैसेंजर ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। बीते दिनों क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर बीना के लिए रवाना किया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित 6 बच्चों का उपचार कराया जाएगा। इन बच्चों को सर्जरी के लिए मुंबई के प्रसिद्ध नारायणा हॉस्पिटल के हेल्थ SRCC भेजा गया है। यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में इन बच्चों का इलाज किया जाएगा। और अंत में बात जागरूकता अभियान की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्याय सबके लिए अभियान के तहत ग्राम सीहोर में बीते दिनों आदिवासी समुदाय के बीच विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में वन अधिकार अधिनियम 2006, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति योजना, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई। अशोकनगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

श्रोताओं, विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम गीत सागर। आज 29 जून है। आज दो खास दिवस मनाए जा रहे हैं, एक है उष्णकटिबंधीय दिवस और दूसरा है सांख्यिकी दिवस। ये दिन क्या होते हैं इसके बारे में एक साधारण सी जानकारी हम आपको देंगे। हर साल 29 जून को मनाया जाता है उष्णकटिबंधीय दिवस, और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की असाधारण जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता को मनाना है और इन क्षेत्रों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों पर ध्यान देना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 जून 2016 को एक संकल्प पारित किया और उसे 29 जून को मनाने की घोषणा की गई। पृथ्वी पर दो रेखाएं गुजरती है, एक कर्क रेखा और एक मकर रेखा, और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और भारत का मध्य और दक्षिणी हिस्सा भी इसी क्षेत्र में आता है। और आज इन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, शहरीकरण और तेजी से बढ़ती जनसंख्या जैसी गंभीर चुनौतियां हमारे सामने हैं।

श्रोताओं, जैसा कि हमने आपसे बात की थी कि आज उष्ण कटिबंधीय दिवस के साथ साथ सांख्यिकी दिवस भी मनाया जा रहा है। क्या है ये सांख्यिकी दिवस? भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को मनाते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक योजनाओं और नीतियों के निर्माण में आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जन जागरूकता फैलाना है। यह दिवस भारतीय सांख्यिकी के जनक कहे जाने वाले महान वैज्ञानिक प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सांख्यिकी में उनके द्वारा विकसित फार्मूलों का उपयोग बहुभिन्न विश्लेषण और वर्गीकरण में व्यापक रूप से किया जाता है। जानकारी देते हैं कि भारत में जब दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू की गई तो उसका मसौदा तैयार करने में प्रोफेसर महालनोबिस का महत्वपूर्ण योगदान था, जो देश के औद्योगिकीकरण पर केंद्रित था। किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए सटीक आंकड़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य और कृषि से जुड़ी नीतियां तैयार की जाती है और इसी संबंध में युवाओं और आम जनता को यह समझाने के लिए कि कैसे सही डेटा हमारे जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करता है, इस पर प्रकाश डालने के लिए विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है।

श्रोताओं, गीत सागर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, और आज मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। श्रोताओं, आज सुबह प्रादेशिक समाचार में कुछ देर पहले इस घंटे की खास खबरों में हमने बारिश के अलर्ट का समाचार सुना, खबर सुनी। बारिश का मौसम, जिस तरह हम अपने रहन सहन और खान पान के बदलाव पर ध्यान देते हैं, उतना ही ध्यान हमें अपने आसपास स्वच्छता पर भी रखना है।

श्रोताओं, बरसात का मौसम आते ही घर की बालकनी हो या फिर घर की छत हो या हमारे आसपास का छोटा कोई आंगन हो, हम उसे हरा भरा बनाने की कोशिशों में जुट जाते हैं। बरसात का मौसम केवल राहत की फुहारें ही नहीं होती है, बल्कि घर की बालकनी, छत या आंगन में हरे भरे पौधे लगाने का भी एक सुनहरा अवसर होता है। वर्षा की नमी, अपेक्षाकृत जो कम तापमान और प्राकृतिक आर्द्रता पौधों की वृद्धि के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करती है। यदि थोड़ी सी समझदारी से पौधों का चयन किया जाए और मिट्टी को की तैयारी पर ध्यान दिया जाए तो सीमित संसाधनों और सीमित स्थान में भी हम बहुत अच्छा हरा भरा वातावरण बना सकते हैं। बरसात का मौसम यानी हरी भरी धरती, बरसात का मौसम यानी हरी भरी प्रकृति, बरसात का मौसम यानी गर्मी से राहत।

दोस्तों, जब आप पौधे लगाते हैं और उनकी वृद्धि में उनकी वृद्धि जब धीमी गति से होती है, फूल कम आते हैं, तो उनमें कई ऐसे प्राकृतिक टॉनिक हम खुद घर पर बना सकते हैं और उनकी वृद्धि को बढ़ा सकते हैं। आज के समय में अधिकांश लोग पौधों की तेज वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर हो जाते हैं। ये उर्वरक उन्हें तुरंत पोषण तो उपलब्ध कराते हैं, लेकिन इनके लगातार

दोस्तों, जब आप पौधे लगाते हैं और उनकी वृद्धि जब धीमी गति से होती है, फूल कम आते हैं, तो उनमें कई ऐसे प्राकृतिक टॉनिक हम खुद घर पर बना सकते हैं और उनकी वृद्धि को बढ़ा सकते हैं। आज के समय में अधिकांश लोग पौधों की तेज वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर हो जाते हैं। ये उर्वरक उन्हें तुरंत पोषण तो उपलब्ध कराते हैं, लेकिन इनके लगातार उपयोग से मिट्टी की जैविक गुणवत्ता जो होती है वो खराब हो जाती है। इसलिए ज़रूरत ऐसे जैविक स्रोतों को तैयार करने की है और पोषक घोलों की होती है, जो केवल पौधों को न सिर्फ पोषण दे बल्कि मिट्टी को भी जीवंत बनाए रखें। और इसके लिए आप कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे बहुत ही सुंदर और हरे भरे लगेंगे। अंकुरित पौधे जो होते हैं, अक्सर तेज बारिश की बूंदों से उन्हें हमें बचाना ज़रूरी होता है। इसलिए जब बारिश तेज हो तो गमलों को शेड वाले क्षेत्र में रखें। सुबह के समय पौधों का निरीक्षण करने की अपनी आदत बनाएं और उनकी समस्याओं को प्रारंभिक अवस्था में पहचानने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ बरसात के मौसम में प्रकृति हरी भरी हो जाती है, वहीं खान पान की इच्छाएं भी बदल जाती है। कुछ विशेष व्यंजन जैसे पकौड़े, भुट्टे जैसी चीज़ें मन को ललचाती है, और जब ऐसी चीज़ें मन को ललचाती हैं तो बाहर जाकर इनका आनंद लेना कुछ और ही बात होती है।

बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और नेक गतिविधियों में व्यस्त रहिए। अब आज का गीत सागर कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आपकी अपनी रेडियो संगिनी प्रियंका को नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे राग मियां की तोड़ी में साईं ऐश्वर्या महाशक्ति का ख्याल गायन।

0: राग मियाँ की तोड़ी में अभी आप सुन रहे थे ख्याल गायन। कलाकार थे साईं ऐश्वर्या महाशब्दी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला अभी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। पेश की जा रही है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स यात्रा के दौरान भारत और सेशेल्स ने स्वास्थ्य, शिक्षा, अक्षय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी किया जाएगा। प्रदेश में 19 मार्च से शुरू हुए जलगंगा संवर्धन अभियान का कल समापन होगा। इस अभियान के दौरान जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और नदी पुनर्जीवन से जुड़े 3.5 लाख से ज्यादा कार्य पूरे किए गए हैं। ग्वालियर जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत बनाए गए 2356 बूथों पर कल जन्म से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पल्स पोलियो की 2 बूंद पिलाकर पोलियो रक्षा कवच पहनाया गया। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में शलाका जनजातीय चित्र प्रदर्शनी चल रही है। गोंड चित्रकार मनीषा ध्रुवे के चित्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ये प्रदर्शनी 30 जून तक चलेगी। और प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और कई अन्य जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है। हमारे अगले प्रसारण की कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने।
1: सभी सुनने वालों को शिवम का नमस्कार। उम्मीद, जी हाँ मित्रों, हमारी ज़िंदगी की समूची बुनियाद इसी एक शब्द पर टिकी हुई है, उम्मीद। जैसे रिश्तों की डोर हो, संबंधों की गहराई हो, प्रकृति का संतुलन हो, सब कुछ किसी न किसी रूप में इसी पर निर्भर है।

0: और ऐसा ही एक शब्द है इंतज़ार। उम्मीद और इंतज़ार का दामन थामे हम एक बार फिर मनोहार लगा रहे हैं बादलों से कि वो भी बरसें। क्यों हमें इतना तरसा रहे हैं? हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में अभी बारिश ने दस्तक नहीं दी है। इस इंतज़ार को और कितने दिन, इस इंतज़ार की घड़ियाँ और कितनी लंबी होगी? हम उम्मीद का दामन थाम कर ये तो सोच ही सकते हैं कि ये इंतज़ार जल्द से जल्द ख़त्म होगा और हम बहुत जल्द उस बारिश में भीगते नज़र आएंगे जिसका हम सभी को बड़ी उम्मीदों के साथ बेसब्री से इंतज़ार है। फ़िलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे आज के पहले श्रोता के कॉल का।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी।
1: ये सर मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा।
0: अशोक जी।
1: जी
0: जबलपुर से बोल रहे हैं
1: सर आप।
0: हम तो बहुत बढ़िया हैं और आपसे बातें करते हुए हमको बहुत अच्छा लग रहा है।
1: मैं भी अच्छा हो गया सर, आपसे बात हो रही, पहली बार आपसे बात हो रही, अच्छा लग रहा।
0: जी हाँ जी हाँ। बताइए अशोक जी, आपके शहर का मौसम कैसा है अभी?
1: मौसम तो धूप ही है सर, बहोरा लड़की चल रहा है, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं आते, बादल बस।
0: अच्छा, सिर्फ बादल आ रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है?
1: हाँ ऐसे कहीं कहीं जो बस जाता है छोटा मोटा।
0: अपने देश का लगभग अधिकांश हिस्सों में लगभग यही स्थिति बनी हुई है।
1: जी सर, आए झमाझम बारिश तो इसका इंतजार है।
0: हम सभी को उस खूबसूरत बारिश का इंतज़ार है जिसके ज़रिए हम अपनी इस गर्मी से निजात पाएंगे। जी बताइए, कौन सा गीत आज आपके लिए हम निकालें?
1: अब आ जाए तो पर्वत से काली घटा टकराई, चांदनी मूवी का है।
0: अच्छा जी।
1: आशा भोसले, बिक्री कृष्ण देवा की आवाज़।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आकाशवाणी भोपाल।
0: जी हाँ, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं।
1: जी जी जी जी मैं रमेश नायक, ग्राम खेरोकला, जनपद महोबा, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: रमेश नायक जी।
1: जी जी हाँ,
0: कैसे हैं नायक साहब?
1: मैं बढ़िया हैं जी। सर आप कौन बोल रहे?
0: आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हुआ हूँ मैं, शिवम।
1: शिवम, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जी
0: जी
1: अच्छा। और सुनाए, और क्या है समाचार?
0: हम तो बढ़िया हैं, आप बताएं आपके यहाँ क्या है, इन दिनों हालात कैसे हैं, मौसम?
1: सर आप तो गर्मियों के ही चल रहे सर, जो है
0: अच्छा
1: अभी तो
0: अच्छा
1: यहाँ
0: अच्छा
1: बारिश नहीं हुई है, जो है बहुत गर्मी पड़ रही।
0: तो अभी वहाँ पर बारिश की दस्तक नहीं हुई है?
1: नहीं अभी यहाँ एमपी में तो सुन रहे कि वहाँ हो चुकी है, इंदौर भोपाल तरफ कहीं।
0: नहीं, बारिश तो हमारे यहाँ पे भी आई है, मौसम में ठंडक आ चुकी है, उतनी गर्मी तो
1: हाँ
0: नहीं है,
1: हाँ
0: लेकिन
1: यहाँ यूपी में नहीं बारिश हुई अभी, उत्तर प्रदेश में।
0: अच्छा जी। चलिए,
1: और
0: हम
1: सुना से शिवम भाई, क्या है समाचार? बताओ यार दोस्त यार।
0: बहुत बढ़िया हैं। हम चाहते हैं कि हम ये प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्द आपके यहाँ पे भी उम्मीदों की
1: अरे
0: बरसात
1: बहुत
0: हो।
1: बहुत शुक्रिया दोस्त यार।
0: जी जी
1: और फार्मेसी प्रोग्राम चल रहा ना?
0: हाँ जी, आज हम आपके फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, फ़ोन करें गीत सुने कार्यक्रम के लिए।
1: वेरी गुड वेरी गुड यार। तो एक
0: जी
1: गाना सुना देना दोस्त यार शिवम भाई।
0: हाँ जी, बताइए।
1: एक यार एक अनमोल मोती फिल्म है जो है, बहुत पुरानी
0: हाँ
1: पिक्चर है ये। हाँ
0: जी
1: उसमें ऐसा भोसले ने एक गीत गाया कि मोतियों की सेज बिछाई हुई है, सेज
0: ये मोतियों की सेज बिछाई हुई।
1: बिछाई हुई है,
0: अच्छा जी।
1: दिल की दुनिया सजाई हुई है, आजा आजा लेके बारात आजा। अभी शादियों का दौर चल रहा है, 11-12 जुलाई तक शादियां हैं अभी।
0: हाँ, इस फरमाइशी गीत को हम ज़रूर पेश करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल दोस्त यार, बड़ा अच्छा लगा से हम भाई यार तुमसे बात करके।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्ते
1: सर नमस्ते। सिवनी
0: जी।
1: से बात कर रहा हूँ, राहुल धुर्वे,
0: कौन सी वाली सिवनी?
1: जिला सिवनी है मध्य प्रदेश।
0: अच्छा जी, ये छिंदवाड़ा के नज़दीक जो पड़ता है वो।
1: हाँ, छिंदवाड़ा के
0: अच्छा
1: नज़दीक
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: 20 किलोमीटर दूर है मेरा गांव यहाँ से, जहाँ पे मैं रहता हूँ।
0: अच्छा क्या करते हैं आप?
1: सर मैं वीडियो कॉन DTH के ऊपर जॉब करता हूँ।
0: अच्छा जी। और घर परिवार में कौन कौन है?
1: हाँ सभी है, मम्मी पापा।
0: तो रेडियो का शौक आपको कहाँ से लगा, ये बता सकते
1: सर
0: हैं?
1: मैं अभी तक भोपाल को 1 साल से सुन रहा हूँ सर। मैं तो ज़्यादा, मैं बालाघाट से जुड़ा हुआ हूँ।
0: हाँ
1: अभी भोपाल में मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रिय है मेरा, जो दिल
0: जी
1: करेगी इसके लिए, ये मुझे लगता है सबसे फेवरेट है। और

0: आप पूरे सातों दिन चलाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर।
1: हाँ।
0: ये मेरे को सबसे जिससे आकाशवाणी में लगभग मैं सुनता हूँ
1: जी,
0: तो ये जो भोपाल है इसमें सातों दिन जो चलाते हैं ये बहुत जबरदस्त लगता है मुझे। जो कॉलर्स हमारे जुड़ते हैं अलग अलग गाँव से शहर से, ये बहुत अच्छा लगता है
1: जी। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अलग अलग शहरों के, अलग अलग हिस्सों के, देश के हिस्सों से जब फ़ोन आते हैं तो हमारे नए नए श्रोता या पुराने श्रोता तरह तरह की बातें करते हैं। गीत तो आप किसी भी कार्यक्रम में सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि हमारे श्रोताओं की जो बातें हैं वो इस कार्यक्रम में चार चांद लगाती है।
0: जबरदस्त।
1: बताइए, कोई गीत जो आज आप सुनना चाहते हो वो हम आपको ज़रूर सुनवाएं।
0: दीवाना, दीवाना मूवी का रहेगा सर, तेरी
1: अच्छा जी, दीवाना फिल्म का कौन सा गीत?
0: अदा से।
1: बहुत बढ़िया गीत आपने सुनना चाहा है। और इस गीत को
0: सर आप किससे बात हो रही है आज?
1: आज आप बात कर रहे हैं शिवम से।
0: हाँ शिवम, हाँ सर,
1: चलिए,
0: धन्यवाद सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्ते
1: जी नमस्कार
0: जी, किनसे हमारी बात हो रही है ये सबसे पहले जान लें।
1: जी। शिवम जी, मैं ग्राम गौर झामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर।
0: जी विपिन भाई, कैसे हैं?
1: अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। और आज लगभग 2 ढाई महीने के बाद याद आई भोपाल की, तो हमने कहा चलो आज कॉल करते हैं और
0: बहुत
1: देखते
0: बढ़िया,
1: हैं
0: आपने
1: किससे बात होती है।
0: हमारे अनुरोध को स्वीकार किया कि हमारे वो श्रोता जो फ़ोन कॉल लगाना चाहते हैं लेकिन किन्हीं ही वजहों से उनका फ़ोन नहीं लग पाता है, उनके लिए आपने थोड़ा सा इंतज़ार किया
1: हाँ जी
0: उनके लिए।
1: बिल्कुल। और मई में तो कॉल नहीं किया मैंने, अप्रैल में बात हुई थी मेरी
0: जी,
1: जी, तो जून भी खत्म होने वाला है। आप बताइए क्या हाल चाल है आपके।
0: हम बढ़िया हैं। हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार के सभी श्रोता बहुत अच्छे से होंगे ये हम उम्मीद करते हैं।
1: जी बिल्कुल, ठीक ठाक ही हैं और बढ़िया रहेंगे भी।
0: हाँ,
1: और आपसे बात हो जाएगी, हमने सोचा ही नहीं था, लेकिन आप आ गए तो और भी अच्छा लग रहा है
0: कहते हैं ना कि जो मन में दबी हुई इच्छाएं रहती हैं
1: जी।
0: वो कभी कभी अगर बहुत शिद्दत से चाहो ना तो वो उम्मीद, वो इच्छा पूरी होती
1: जी बिल्कुल। और आपने
0: है।
1: जैसे ही हेलो बोला तो हम समझ गए कि आज तो
0: जी
1: शिवम जी
0: जी
1: आए हैं।
0: जी जी जी बताइए क्या हाल है इन दिनों आपके शहर?
1: हाल चाल बिल्कुल ठीक ठाक ही हैं। और अभी तो बहुत धूप हो रही है, गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ पे, क्योंकि बारिश तो पहले हो चुकी है एक दो बार 3 4 दिन पहले,
0: जी
1: लेकिन अभी वैसी बारिश तो नहीं हुई है, तो धूप बहुत ज्यादा है। और फिर ग्रामीण क्षेत्र है तो उस हिसाब से खेती किसानी की तैयारियां चल रही हैं अभी तो खरीफ की, और यही बुआई की लोग तैयारियों में हैं और मानसून का इंतजार कर रहे हैं। जी
0: वैसे देखा
1: बिल्कुल
0: गया है कि मध्य प्रदेश में मानसून जो है वो लगभग 25-30 तारीख के आसपास, जून की जो तारीख है उसके आसपास ही सक्रिय होता है।
1: हाँ जी बिल्कुल। और कल ही प्रादेशिक समाचार में सुन रहे थे कि 30 तारीख तक मानसून आ जाएगा, मतलब ऐसा बताया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि हाँ अगले 2 से 3 दिन में बारिश जरूर होनी चाहिए।
0: चलिए, तो उम्मीदों की बारिश बहुत जल्द आपके यहाँ बरसे, हम ऐसी कामना करते हैं।
1: बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: जी बताइए, आज कौन सा गीत आपको सुनवाएं हम?
1: मोहम्मद रफ़ी और लता जी ने गाया है तुम तो प्यार हो सजना,
0: अच्छा जी।
1: शायद दिल एक मंदिर फिल्म का गीत है।
0: बहुत
1: मुझे
0: खूबसूरत
1: तुमसे
0: गीत आपने
1: प्यारा
0: सुनना
1: जी
0: चाहा है,
1: कैसा।
0: बहुत खूबसूरत गीत है ये।
1: हाँ बिल्कुल, बहुत खूबसूरत गीत है और अच्छा लगता है मुझे, और अच्छा सदाबहार गाना है, मुझे तुमसे प्यारा और ना कोई, तुम तो प्यार हो सजना
0: वाह कितने
1: जी।
0: कितने खूबसूरत बोल हैं और उतनी खूबसूरत उसकी धुन है, और उससे भी बढ़कर फिर क्या कहें, आवाज़ें जिसमें रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की हो, वो गीत सोने पे सुहागा होना ही होना है।
1: बिल्कुल। और इस गाने के अंतरे भी मुझे काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि पहले उस अंतरे को बोल के बताते हैं वो लोग सिंगर जो गा रहे हैं रफी जी और लता जी, और फिर पहले बोल के बताएंगे फिर उसी को गा के बताते हैं
0: बताइए, चलिए तो कुछ
1: जी।
0: आप भी गुनगुना सकते हैं क्या?
1: मुझे तो मुखड़ा ही याद है, अंतरा तो मुझे याद नहीं आ रहा
0: चलिए
1: है
0: मुखड़ा ही।
1: जी। मुखड़ा की गाने की मैं कोशिश करता हूँ। तुम्हें तो प्यारे हो सजना, तुम्हें तो प्यारे हो मुझे तुम्हें से, हाँ मुझे तुम्हें से प्यारा और ना कोई, तुम्हें तो प्यारे हो सजना।

0: नमस्कार
1: सर,
0: जी।
1: मैं ग्राम बापू तीतरा खलीलपुर तहसील कोंच जिला जालौन से अंजलि जाटा बोल रही हूँ। जी सर,
0: जी कैसे हैं जी?
1: अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं।
1: फिर बॉर्डर हिंदुस्तान का सुनवा देना, याद आती है कलेजा चीर जाती है।
0: बॉर्डर हिंदुस्तान
1: हाँ, इसी में याद आती है कलेजा चीर जाती है।
0: याद आती है, कलेजा चीर जाती है।
1: शिवम सर बोल रहे हैं ना?
0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ।
1: पहचान लिया, आपको सुनते रहते हैं, आपकी प्रस्तुति अच्छी लगती है सर।
0: अरे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब हम आप जैसे श्रोताओं के लिए ही हम अपनी मेहनत करते हैं, और इस मेहनत को अगर आप सराहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
1: जी सर, रोज कार्यक्रम सुनती रहती हूँ, आपके सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, बजता रहता, और लखनऊ भी सुन लेते हैं।
0: तो रेडियो से ऐसी कौन सी चीज़ आपने सीखी है, जान सकते हैं?
1: रेडियो से तो सर बहुत कुछ सीखा है हमने, तो 2000 के सुनते आ रहे हैं, बहुत कुछ सीखा है, बात करना
0: हाँ
1: और सभी गायक कलाकारों को पहचानना, आप लोगों की आवाज़ पहचानना, बहुत कुछ सीखा है।
0: चलिए, ये एक अच्छी बात आपने बताई कि रेडियो से बोलने की कला आ जाती है।
1: जी
0: रेडियो जो है वो सुनने का माध्यम है, लेकिन उससे बोलने की कला आ जाती है। ये देखिए कितनी बड़ी बात निकल के सामने आई है।
1: जी
0: चलिए, तो ये गीत हम आपकी नज़र करते हैं, आपने फ़ोन किया इसके लिए देते हैं आप।

0: हाँ जी नमस्कार
1: हेलो। हाँ जी नमस्कार। कम आकाशवाणी भोपाल फोन करेगी सुने।
0: जी।
1: जी हाँ सर, कैसे हैं आप?
0: हम बढ़िया हैं और आपका परिचय एक बार फिर से जान लें।
1: जी सर, मैं ग्राम बिजोरा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता गोलू कुमार अहिरवार।
0: गोलू भाई कैसे हैं?
1: बस सर, मैं तो बढ़िया हूँ। और आप बताइए, शिवम सर जी कैसे हैं आप?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं।
1: जी
0: और क्या चल रहा है इन दिनों?
1: बस सर जी, अभी तो मतलब बोनी की बुआई चल रही है, मतलब बोनी स्टार्ट हो गई सर जी हमारा होना।
0: अच्छा, तो आपने क्या किस फसल की बोनी कर रहे हैं इस बार?
1: सर हमारे यहाँ तो सागर जिले में सर जी मक्का की बुआई ज़्यादा होती है, मक्का और उड़दा की।
0: अच्छा, तो मतलब ये बारिश के दौरान आप मक्के की खेती करते हैं?
1: हाँ, क्योंकि सर अभी कुछ दिन पहले बारिश हमारे यहाँ हो चुकी है, तो थोड़ा सा बतर आ चुका था सर जी खेत में, तो बोनी मतलब स्टार्ट होने लगे हमारे यहाँ पे।
0: इतना समय निकाल लेते हैं बोनी के बीच में कि रेडियो के लिए वक्त निकल जाए?
1: हाँ सर, समय तो निकाल लेते, क्योंकि रेडियो से सर जी खेती किसानी से जुड़ी हुई बातें बताते हैं विशेषज्ञ लोग, तो उनके लिए सुनना पाता है सर जी जरूरी।
0: चलिए, तो वो उन जो बातों पे आप अमल भी करते होंगे उनसे कुछ आपको सुविधाएं भी मिल जाती होगी, लाभ
1: जी
0: भी
1: सर,
0: मिलता होगा।
1: जी सर सुनते हैं, और बाकी उनकी बात को अनसुनी नहीं करते, अमल में भी लाते हैं सर जी। जो बातें जितनी बताते हैं वो सुन के हम लोग ट्राई करते हैं उन बातों के लिए, और जैसा जैसा वो बताते हैं वैसे ही करते हैं हम लोग।
0: बताइए गोलू
1: सर
0: भैया, कौन सा गीत आपके लिए निकालें?
1: सर वो एक गाना ही है, बरस ओ रे मेघा मेघा, बरस ओ रे मेघा मेघा,
0: अच्छा,
1: किस फिल्म का गाना है
0: ये
1: आपको याद
0: मनुहार
1: है?
0: है, गुरु फिल्म की।
1: अच्छा, गुरु फिल्म का है।

0: हेलो
1: हाँ जी नमस्कार
0: जी, नमस्कार सर।
1: जी, बताइए।
0: खुदा ने खुश होकर के पूछा कि क्या चाहिए। मैंने कहा खुशी, कामयाबी और लंबी उम्र। अंदर से फिर आवाज आई कि किसके लिए, तो मैंने कहा कि इस वक्त जिनसे मेरी बात हो रही है उनके लिए।
1: बहुत बहुत बहुत बढ़िया, आपका ये तारुफ का जो अंदाज़ है हमें बहुत पसंद आया। अब हम ये भी जान लें कि किन से हमारी बात हो रही है।
0: मैं आपका नियमित श्रोता बोल रहा हूँ, पालदा नाका इंदौर से, मोहम्मद रफी मंसूरी। जी,
1: मोहम्मद रफ़ी मंसूरी।
0: कैसे हैं सर आप?
1: हम भी बहुत बढ़िया हैं जी।
0: बहुत बढ़िया हाल चाल सर, और मौसम भी बहुत सुहाना हो गया। थोड़ी बरसात शाम के टाइम होने लग गई शुरू यहाँ पर।
1: अच्छा जी, बताइए कौन सा गीत हम आपके लिए निकालें।
0: फिल्म का नाम है दो खिलाड़ी, और गायक कलाकार है मोहम्मद रफी, और गाने को बोले झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया।

0: देखो परखा ने प्यार।
1: हेलो।
2: हाँ जी नमस्कार।
1: हाँ नमस्ते सर जी, मैं ग्राम अजान बोल रहा हूँ, गेंदालाल परिहार। हाँ सीहोर के पास गांव है उलझावन।
2: कितनी दूर पड़ता है सीहोर से?
1: जी वो जो अपने नीलबड़ आतीपड़ से भदभद रोड गया नहीं, उसी पड़ता है जी।
2: अच्छा
1: सर जी, वो तो अपनी पसंद के पर रहता है, जो जो नए भी सुनते हैं पुराने सुनते हैं सभी।
2: कहते हैं ना कि जो अच्छा होता है वो नया भी नहीं होता पुराना भी नहीं होता, वो सदाबहार होता है।
1: जी वो तो परिवर्तन क्या परिवर्तन होता रहता, अच्छा लगता परिवर्तन भी।
2: एक रास्ता से ऊब जाता है इंसान तो परिवर्तन एक नई ताजगी के साथ में हमारे सामने आता है।
1: जी हाँ सर
2: जी, बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाएं हम?
1: पुराने फिल्म है आँखें, तो गाना मिलती है जिंदगी में कभी कभी।

0: कभी कभी।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति शिवम कश्यप की थी। प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया गया।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 11:58 हुए हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाली केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 16वीं बैठक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के परिचालन और दिशा निर्देश जारी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी किया जाएगा। प्रदेश में कल से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के अंतर्गत आज और कल घर घर पोलियो की दवा पिलाने के लिए टीम घर घर पहुंचेंगी। श्री अमरनाथ जी की यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। श्री अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में शलाका जनजाति चित्र प्रदर्शनी के तहत गोंड चित्रकार मनीषा ध्रुवे के चित्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ये प्रदर्शनी 30 जून तक संचालित की जाएगी। प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और कई अन्य जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है और दीप्ति शर्मा महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने अपना 356वां विकेट लेकर दिग्गज झूलन गोस्वामी के 355 विकेटों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम श्रोताओं की फरमाइश पत्रों के द्वारा जो हमें मिलती है उन्हें हम सुनवाते हैं, उनकी पसंद के गीत हम सुनवाते हैं। कार्यक्रम का आरंभ करने जा रहे हैं पुकार फिल्म के इस गीत से, जिसकी धुन बनाई है A.R. रहमान ने, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, आवाज़ें कविता कृष्णमूर्ति और शंकर महादेवन की है। इस गीत को सुनना चाहा है कागज पुनर्ज से महेश हजारे, मिंताशु हजारे, आदित्य हजारे, इचलकरंजी महाराष्ट्र से वसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे इसी गीत को पसंद किया है। बस स्टैंड के पास बंडा बेलई जिला सागर से लक्ष्मण रेखवार, श्रीमती विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली वैष्णवी, अनरथ रेखवार, हल्ले लल्लू, ऋषि रेखवार और खंडा। और साथ ही साथ ये पत्र हमें मिला है शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल तथा चेतन मनवर का। और इसी पत्र में दो नाम और हमें दिखाई दे रहे हैं और वो है रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी। इन सभी की पसंद पर सुनते हैं पुकार फिल्म का ये गीत।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं तेजाब फिल्म से। अनुराधा पौडवाल, अमित कुमार और साथियों की आवाज़ें हैं। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। इस गीत को सुनना चाहा है सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान ने। राजावत कॉम्प्लेक्स शाजापुर से ये पत्र है मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रित, ऋषभ राजावत और पूरा राजावत परिवार। और साथ ही साथ ये पत्र छत्रपति संभाजी नगर से मिला है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश और मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाकड़, राही सरिता गवाड़कर, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश और विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली गवाड़कर, श्वेता, सुमित और कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी ने साथ ही साथ इस गीत को सुनना पसंद किया है।

अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा, महादेवघाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर ने, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से ये पत्र हमें मिला है। राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये का जयराज प्लॉट राजकोट से इस गीत को पसंद किया है। मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, आरती पूजा जास्मिन और प्रयागराज भट्ट ने। खलनायक फिल्म का गीत हमारे इन श्रोताओं ने पसंद किया है। आवाज़ मनहर उदास और अलका याग्निक की है। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत धुन पर अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा ये गीत अलका याग्निक और मनोहर उदास की आवाज़ों में खलनायक फिल्म से। इसी के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी की 11वीं कड़ी।

विजय श्रवा से करना चाहते थे। विजय श्रवा चंद्रहासिनी के प्रति आकर्षित तो था, परंतु प्रेम भुवन मोहिनी से ही करता था। इसी बीच संपूर्ण खंड राज्यों के सेनापति के रूप में विजय श्रवा का चयन हुआ। धारा के दरबार में विजय श्रवा ने हूण सेनापति के अपमानजनक पत्र को पढ़ा और आमात्य ऋषभदेव ने युद्ध के स्थान पर अपमानजनक संधि करने की वकालत की। भुवन मोहिनी ये न सुन सकी और उसने आमात्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। हूणों के खिलाफ युद्ध में भुवन मोहिनी विजय श्रवा के साथ छाया की तरह रही और विजय श्रवा को जीत हासिल हुई। विजय श्रवा ने भुवन मोहिनी और राजमाता को दिए गए वचन के अनुसार चंद्रहासिनी से विवाह किया, सम्राट बना। भुवन मोहिनी उन दोनों के सुखमय जीवन के लिए समाज सेवा में जुट गई। जब वो वापस लौटी तो चंद्रहासिनी ने भुवन मोहिनी का अपमान किया। इससे दुखी होकर विजय श्रवा भुवन मोहिनी को अपने पास बुलाकर अलग रहने लगा। चंद्रहासिनी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सम्राट विजय श्रवा ने उसको निष्कासित करने का आदेश दे दिया। भुवन मोहिनी के मनाने पर सम्राट विजय श्रवा ने अपना आदेश वापस तो ले लिया, परंतु स्वयं मुख्य महल से अलग रहने लगा। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 11वीं कड़ी में।

0: अरे मैं पूछता हूं, इस तरह अंधेरे में कौन खड़ी है वहां?
1: अरे भुवन मोहिनी, आप कब आई देवी?
2: मेरे आगमन को गोपनीय रखिएगा अरण्यक।
1: तो क्या सम्राट को भी ना बताऊं?
2: नहीं अरण्यक, सम्राट कुशल तो है ना?
1: उनकी कुशलता के कहने ही क्या। राजप्रासाद से दूर निर्जन क्षेत्र में पर्णकुटी बनवाकर रह रहे हैं। राजकीय अधिकारी और मंत्रीगण शासन संबंधी आदेशों को प्राप्त करने वहीं पर्णकुटी पहुंचते हैं। और हां, राज परिवार के लोगों का प्रवेश निषिद्ध है।
2: क्या?
1: कभी कभी सम्राट राजमहल जाकर राजमाता से मिल लेते हैं, और वो भी बाह्य कक्ष में। राजकुमार को लेकर संरक्षक अवश्य पर्णकुटी में आ सकता है।
2: और साम्राज्ञी?
1: अरे उनका तो प्रवेश एकदम से निषिद्ध है। कई बार साम्राज्ञी ने पत्रों द्वारा उनसे मिलने की प्रार्थना की, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। ऊपर से सम्राट ने पत्रवाहक को कड़े निर्देश दे दिए कि भविष्य में वो कभी भी उनके पत्र लेकर ना आए। और इतना ही नहीं देवी, द्वारपाल को निर्देश हैं कि साम्राज्ञी कभी बलपूर्वक प्रवेश करने का प्रयत्न करें तो उन्हें भी रोक दे।
2: ये कैसा दुर्दैव!
1: देवी, ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध होगा यदि मैंने आपके आगमन की सूचना सम्राट को अविलंब न दी तो।
2: परंतु अरण्यक,
1: ये सम्राट के हित में होगा।
3: अरण्यक,
1: हाँ,
3: राजप्रसाद की राजनीति में बड़ी शांति से दिखती है।
1: क्यों सारथी, तुम्हें शांति से कोई कष्ट है क्या?
3: भला मुझे क्यों कष्ट होगा, मुझे तो प्रसन्नता है।
1: नियति को देखो सारथी, जिस देवी भुवन मोहिनी को साम्राज्ञी चंद्रहासिनी क्षण भर को भी सहन नहीं कर पाती थी, वही भुवन मोहिनी अब आराम से सम्राट द्वारा प्रदत्त एक महल में निवास करने लगी है, सम्राट की आज्ञा से।
3: यही नहीं, सम्राट को जब इच्छा होती है भुवन मोहिनी को बुलवा लेते हैं और वो दिन दिन भर पर्णकुटी में रहती है, संगीत से सम्राट का मनोरंजन करती है, उनके साथ ही भोजन करती है। अरण्यक, क्या इसका पता साम्राज्ञी और राजमाता को नहीं होगा?
1: क्यों नहीं होगा सारथी, अवश्य होगा, पर वो कर ही क्या सकते हैं। हमें तो बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे मित्र प्रसन्न है। सच पूछो तो सारथी, देवी भुवन मोहिनी का सम्राट के प्रति प्रेम बहुत ही पवित्र है और बहुत ही उदात।
3: तुम ठीक कहते हो अरण्यक।
1: मुझे तो अनुभव हो रहा है कि उनके इस पवित्र प्रेम की सुगंध पूरे वातावरण को और भी सुगंधित बना रही है।
3: परंतु अरण्यक, बहुत दिनों से देवी भुवन मोहिनी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है।
1: मुझे ज्ञात है सारथी,

0: कई वैद्य चिकित्सक भुवन मोहिनी को देख चुके हैं, परंतु वो समझ नहीं पाए कि उन्हें रोग कौन सा है। और वर्तमान में मित्र की एकमात्र चिंता का विषय भी यही है। चलता हूं सारथी, मित्र के पास पहुंचने का समय हो गया है।
1: अवश्य रण्यक।
0: कक्ष के अंदर आ सकता हूं मित्र?
2: अरण्यक, क्या तुम भुवन मोहिनी के आवास गए थे?
0: अब आपके आदेश को न मानूं ऐसा कभी हुआ है?
2: कैसी है वो?
0: मित्र, उनकी स्थिति बहुत ही बुरी है। वो लगातार औषधियों की अवहेलना कर रही है। वैद्य के बहुत बाध्य करने पर ही वो कोई औषधि लेती है, परंतु वास्तविक समस्या ये है कि...
2: क्या समस्या है?
0: भुवन मोहिनी किसी से कुछ बोलती ही नहीं, ना तो किसी से बातें करती हैं, ना यही बताती हैं कि उन्होंने औषधि ली या नहीं। मित्र, ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु शैया में पड़ी भुवन मोहिनी मानो मृत्यु को स्वयं आमंत्रित कर रही हो।
2: नहीं अरण्यक, वो ऐसा नहीं कर सकती। क्या उसे ज्ञात नहीं कि मेरे जीवन में उसके ना रहने का क्या अर्थ होगा? माना कि भुवन मोहिनी के बिना मैंने दिन महीने और वर्ष बिताए हैं, परंतु इस आशा में कि एक दिन वो आएगी। परंतु यदि वो...
0: मित्र, देवी भुवन मोहिनी की अस्वस्थता सर्वसाधारण की चर्चा का विषय बन चुकी है। नर्तकी के गृह में जन्म लेने के बाद भी वो अपनी सेवाओं के लिए इतनी राष्ट्रव्यापी ख्याति अर्जित कर चुकी हैं कि अधिकांश जनता उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना कर रही है। जनता की शुभकामनाएं अपना प्रभाव अवश्य दिखलाएंगी। मित्र,
2: हम भी उसे मरने नहीं देंगे। अरण्यक, अरण्यक, मैंने आदेश दिया था कि कोई ना कोई सुयोग्य चिकित्सक सदैव उसके पास रहे। आदेश का पालन हो रहा है ना?
0: अक्षरशः पालन हो रहा है मित्र, चिकित्सक सदैव उनके पास रहते हैं। मित्र, एक रहस्यमयी नारी भी उनके आसपास दिखाई देती है।
2: रहस्यमयी नारी? कौन है वो? क्या कोई चिकित्सक है, या परिचारिका, या वो दासी है?
0: इनमें से कोई नहीं है मित्र।
2: कोई नहीं है? तो ये बात हमें आज तक बताई क्यों नहीं गई? ना ही किसी चिकित्सक ने, और ना ही किसी गुप्तचर ने, और ना ही दास दासी ने।
0: क्योंकि साम्राज्ञी का ऐसा ही आदेश था।
2: साम्राज्ञी का आदेश? क्या सरोकार था साम्राज्ञी को भुवन मोहिनी की अस्वस्थता से?
0: मित्र, गुप्तचरों से ज्ञात हुआ है कि साम्राज्ञी भुवन मोहिनी के प्रति कृतज्ञता को प्रकट कर आपको प्रसन्न करना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने इंद्रप्रस्थ से एक कुशल महिला चिकित्सक को बुलाया है।
2: तो राज्य कार्यालय से पता करो कि क्या इंद्रप्रस्थ से किसी महिला चिकित्सक को बुलाया गया है।
0: मैंने पता लगा लिया है, ऐसी किसी महिला चिकित्सक को इंद्रप्रस्थ से नहीं बुलाया गया है।
2: तो वो कौन है?
0: साम्राज्ञी के शैशव काल की सखी और संबंध में ममेरी बहन।
2: प्रमुख चिकित्सक को अविलंब उपस्थित कराओ।
0: जो आज्ञा मित्र।
2: भुवन मोहिनी की सेवा में लगे प्रमुख चिकित्सक आप हैं?
3: जी हाँ सम्राट।
2: प्रमुख चिकित्सक का क्या दायित्व होता है?
3: रोगी की चिकित्सा और पूरी देखरेख स्वामी।
2: क्या मैं जान सकता हूं कि भुवन मोहिनी ठीक क्यों नहीं हो रही?
3: यही तो समझ में नहीं आ रहा सम्राट। एक से बढ़कर एक औषधियां हम उन्हें दे रहे हैं, परंतु किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
2: आप अपने सामने उन्हें औषधियां खिलाते हैं?
3: जी नहीं।
2: क्यों?
3: इसलिए कि रोगिणी औषधियां लेने में अनिच्छुक दिखती हैं, तो इंद्रप्रस्थ से आई चिकित्सक को, जो सदैव उसके पास ही रहती है, आवश्यक निर्देश दे दिया करता हूं।
2: उसका क्या नाम है?
3: नाम तो उसका नहीं मालूम देव।
2: नाम नहीं मालूम? उसे आपने नियुक्त किया है?
3: नहीं देव।
2: तो फिर किसने नियुक्त किया है उसे? उत्तर दो मुझे।
3: साम्राज्ञी ने।
2: साम्राज्ञी ने?

0: उसके चिकित्सक होने का प्रमाण पत्र देखा आपने?
1: नहीं देव।
0: तो फिर वो चिकित्सक नहीं है?
1: नहीं है।
0: उसकी चिकित्सा नहीं, उसे विष दिया जा रहा है।
1: विष?
0: हाँ विष। एक बात ध्यान रखो चिकित्सक, यदि भुवन मोहिनी के जीवन के साथ कोई अप्रिय घटना हो गई तो तुम भी जीवित नहीं बचोगे। अब तुम्हें क्या करना होगा तुम निर्णय करो, जाओ यहां से।
2: अरण्यक।
3: बोलिए मित्र।
2: ध्यान से सुनो, अपरिचित महिला चिकित्सक का भुवन मोहिनी के पास रहना भय से रिक्त नहीं। तुम स्त्री वेश में भुवन मोहिनी के समीप रहो, प्रत्येक क्षण देखते रहो कि वो रहस्यमय स्त्री क्या क्या करती है। यदि वो अपनी ओर से कुछ।
3: मैं सब समझ गया मित्र, आगे और बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे आज्ञा दें।

0: मैं स्त्री वेश धारण करके देवी भुवन मोहिनी के आवास में आ गया हूं। कहां है भुवन मोहिनी? ओ, वो वहां एक पलंग पर लेटी हूं। उनके पास लगता है वही अपरिचित महिला चिकित्सक है। क्या करूं, चलता हूं वहीं, देखता हूं क्या होता है।
1: नमस्ते।
2: नमस्ते, तुम कौन हो?
1: कमला।
2: कमला, तुम नई आई हो क्या?
1: लो और सुनो, स्वयं नई हो तुम, हमें नई कहती हो? हम तो जब इतने छोटे थे तब से हैं इस महल में। तुम अपना नाम बताओ।
2: मेरा नाम? मेरा नाम कुमारी विमला है।
1: तुम भी कुमारी? मैं भी कुमारा। मतलब ये कि मैं भी कुमारी। मेरा नाम कमला, तुम्हारा नाम विमला। अच्छा है ना, लगता है जैसे जुड़वा बहने हो।
2: अच्छा अच्छा ठीक है। देखो कमला, मैं कई दिनों से साम्राज्ञी से नहीं मिल पाई हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। तुम यहीं रहना और कोई भी वैद्य चिकित्सक आए
1: जो दवाएं कहेंगे मैं दे दूंगी।
2: वो नहीं देनी है।
1: वो नहीं देनी है?
2: अरे तुम कहाँ से आ गई? देखो, यहाँ के सभी दासियों को अच्छी तरह ज्ञात है कि जो दवा मैं चाहूंगी वही भुवन मोहिनी को दी जाएगी, यहाँ के वैद्य चिकित्सकों की नहीं।
1: अच्छा, तो क्या तुम भी चिकित्सक हो?
2: हाँ, इसीलिए तो।
1: तो फिर ठीक है, जो तुम कहोगी वही दवा देंगे। लेकिन ये
3: ठीक क्यों नहीं हो रही है तुम्हारी दवा से?
2: हाँ,
1: लेकिन ये ठीक क्यों नहीं हो रही है तुम्हारी दवा से?
2: असाध्य रोग है, फिर भी ठीक हो जाएगी, समय लगेगा। अच्छा सुनो, संध्या को आऊंगी और रात में भी रहूंगी, तब तुम चली जाना।
1: ठीक है।
2: तो समझ गई ना?
3: हाँ।
2: ये यहाँ मेरी दवाई रखी है, हर घंटे तुम्हें खिलाना है, पर ध्यान रहे किसी वैद्य के सामने मत खिलाना और उसे ये बताना भी नहीं, वरना समझती हो ना क्या होगा?
1: क्या होगा?
2: तेरी खाल उतर जाएगी।
1: उतर जाएगी? कौन उतारेगा?
2: साम्राज्ञी।
1: क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे खाल नहीं उतरवानी, मैं मात्र तुम्हारी ही औषधियां उनको दूंगी, वैद्य चिकित्सकों की नहीं, तुम निश्चिंत रहो।
2: मैं जाती हूँ।
3: जाओ कहीं।

0: देवी आंखें खोलिए, देवी भुवन मोहिनी, भुवन मोहिनी, देवी।
1: कौन?
0: मैं अरण्यक हूँ। मैं
1: अरण्यक?
0: हाँ, अरण्यक, अरण्यक ही हूँ मैं। आपको षड्यंत्र से बचाने के लिए आया हूँ, सम्राट ने भेजा है, आप निश्चिंत रहिएगा। और सुनिए, इस वेश में मेरा नाम कमला है, कमला। जब आप पुकारें कमला कहकर ही पुकारें।
1: ठीक है अरण्यक, सम्राट कैसे हैं?
0: बहुत चिंतित हैं देवी, परंतु अब उनकी भी चिंता समाप्त हो जाएगी। मैं आ गया हूं ना, लीजिए वैद्यों की दी गई दवा खा लीजिए।
1: हाँ, दो।
0: वास्तविक औषधियों के सेवन से आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। और हाँ, वो चुड़ैल कोई भी दवा दे तो बिल्कुल मत खाइएगा।
1: उसका नाम विमला है अरण्यक।
0: आप जानती हैं उसको?
1: हाँ, राजकुमारी की ममेरी बहन है। परंतु यहाँ क्यों बुलाया गया उसे, नहीं जानती।
0: आपको मारने के लिए, इससे अधिक मत पूछिएगा, ठीक है ना?
1: हाँ ठीक है अरण्यक, देव से कहिएगा हमारी चिंता ना करें।
0: अरे अब किस बात की चिंता, अब सब ठीक हो जाएगा। तनिक ठहरिएगा देवी, मैं बाहर बैठी मोटी मोटी दासियों को रवाना तो कराऊं।
1: अरण्यक किस षड्यंत्र की बात कर रहे थे? कौन मारना चाहता है मुझे? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? हे प्रभु, यदि अनजाने ही किसी का कुछ बुरा हुआ हो मेरे हाथों, तो क्षमा करना प्रभु।
0: सब कहने लगी कि तुम कौन हो, कहां से आई? मैंने कहा कि साम्राज्ञी की ननिहाल से, साहब की सब भाग गई।
1: अरण्यक, इस विमला के हाथों मैंने मात्र एक बार औषधि ग्रहण की थी।
0: अच्छा,
1: और परिणाम ये हुआ कि 3 दिनों तक अचेत रही। इसीलिए मैं कोई भी औषधि ले ही नहीं रही थी अरण्यक। इन दासियों को बड़े बड़े उपहार देकर उसने सबको अपने वश में कर लिया था। अरण्यक, आप ना आते तो जीवन का अंत ही दिख रहा था मुझे। अरण्यक, एक काम करेंगे?
0: बोलिए देवी।
1: वो दवाएं जो विमला मुझे देती थी उस संदूक में रखी हैं, आप उन दवाओं को आज ही सम्राट के पास भिजवाकर उनकी जांच करवाइए।
0: ये आदेश तो पहले ही सम्राट मुझे दे चुके हैं, मैं अभी लेके जाता हूं।
2: सम्राट की जय हो।
3: आइए चिकित्सक महोदय, आपने उस रहस्यमय महिला द्वारा दी गई औषधियों की जांच पूरी की?
2: हाँ सम्राट, और ये प्रमाणित हो चुका है कि वो औषधियां नहीं वरन
3: वरन
2: बहुत ही तीक्ष्ण विष थे सम्राट।
3: वो चिकित्सिका इस समय कहाँ होगी?
0: साम्राज्ञी से भेंट करने उनके महल गई हैं।
3: हमें तुरंत महल जाना है, रथ तैयार करूंगा।

0: अब मैं भुवन मोहिनी को बता दूं कि वास्तव में मैं हूं कौन।
1: ओह, कितनी सूख गई देवी,

0: अरण्यक इस महल में हमारे प्रवेश को गुप्त रखा जाए।
1: जो आज्ञा मित्र।
2: प्रणाम सम्राट।
1: चुप रहो, कोई अभिवादन नहीं।
0: ये कौन थी?
1: ये संरक्षिका थी इस महल की।
0: अरे सुनो, तुम सभी दासियां यहाँ क्या कर रही हो?
2: साम्राज्ञी की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं सम्राट।
0: और साम्राज्ञी कहाँ है?
2: विश्राम निकेतन में।
0: उनके साथ और कौन है?
2: उनकी ममेरी बहन कुमारी विमला।
0: ओह, वो दोनों वहाँ क्या कर रही होंगी?
2: हम लोगों को ज्ञात नहीं है देव,

0: सुनने में आया है कि सुयोग्य चिकित्सिका होने के कारण सम्राज्ञी ने उन्हें इंद्रप्रस्थ से बुलाया है भुवन मोहिनी की चिकित्सा के लिए।
1: आवर्णक जी,
0: आज सम्राज्ञी के अपशकुनों की भयानक घड़ी उपस्थित है।
1: ठहरो आरण्यक, कुछ ध्वनियां सुनाई दे रही हैं।
2: हाँ हाँ,
3: मैं केवल एक बार ही अपनी दवा दे सकी, इसके पश्चात उसने कोई दवा ग्रहण ही नहीं की। इन दिनों में वो केवल एक ही बार मुझसे बोली भी।
0: अच्छा, क्या कहा उसने?
3: और क्या कहती, दवा देते समय बोली, मैं कोई दवा ग्रहण नहीं करूंगी, मैं अब जीना नहीं चाहती।
0: वो अब जीना नहीं चाहती? तो ये लो।
3: ये क्या है?
0: जिस पात्र में वो दवाओं का सेवन करती हो उसमें इस औषधि को मात्र स्पर्श करा देना।
3: अच्छा,
0: ध्यान रहे, मात्र स्पर्श हो, इतना ही पर्याप्त होगा उसके मरने के लिए।
3: इतना शक्तिशाली विष? लाओ, इसे मैं अपने वक्षस्थल में छिपा लेती हूँ।
0: विमला बहन, जब भुवन मोहिनी हमारे पितृग्रह में रहती थी तब वो मुझसे अधिक तुमको चाहती थी और तुम पर पूर्ण विश्वास करती थी। यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया था।
3: यहाँ भी उसी विश्वास के साथ मिली थी, किंतु पहली दवाई के बाद संभवतः या तो वो मुझ पर संदेह करने लगी या सचमुच दवा सेवन नहीं करना चाहती, या हो सकता है सचमुच ही उसमें जीने की लालसा न बची हो। हाँ, ये जो कमला नाम की नई सेविका आई है इसे भुवन मोहिनी की दास दासियां तक नहीं जानती, परंतु भुवन मोहिनी का उस पर विश्वास कुछ अधिक ही है।
0: अच्छा, लो ये मूल्यवान हार उसे पहना देना, वो भी तुम्हारे वश में हो जाएगी।
3: ये तो बड़ा मूल्यवान लगता है, पहनकर दर्पण में देखूं तो। आहा, इसे मैं ही क्यों ना धारण करूं बहन।
0: छी, लोभिनी, अरे तुझे मैं ऐसे न जाने कितने हार दूंगी, पहले काम करके तो दिखा। ये हार उसी कमला को देना, संभवतः सम्राट ने उसे विशेष रूप से बुलवाया हो भुवन मोहिनी की देखरेख के लिए।
3: अच्छा ठीक है,
0: ये दूसरा ले, इसे तू अपने लिए रख।
3: ओ मेरी प्यारी बहन,
0: ये उससे अधिक हीरे माणिक वाला है।
3: अच्छा अब मैं जाती हूँ, मेरे पास अधिक समय नहीं है, न जाने पल में क्या हो जाए।
0: ठहर तनिक, मैं किसी दासी के साथ तुझे भिजवाती हूँ। कोई है यहाँ? कहाँ गई सबकी सब?
1: सबकी सब एक स्थान पर इकट्ठी कर दी गई हैं सम्राज्ञी।
0: सम्राट,

0: साम्राज्ञी को अधिक कष्ट न उठाना पड़ेगा। मैं स्वयं कुमारी विमला को पहुंचाने के लिए उपस्थित हूँ। नीच स्त्री, कहाँ गई वो चिकित्सिका?
1: वो उधर छुप रही है स्वामी।

0: ठहर चांडालनी, निकाल वो विष की शीशी, कहाँ छुपा रखी है, निकाल कुलटा।
1: निकालती हूँ, ये रही सम्राट।
0: अरे नक, इससे दोनों हार भी छीन लो, चल निकाल। दोनों हार कहाँ है?
1: ये है सम्राट।
0: अब इन दोनों की गत मैं बनाता हूँ, चलो दोनों।

अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से, इस कार्यक्रम में भुवन मोहिनी की 11वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस साल के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाली केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 16वीं बैठक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान परिचालन के दिशा निर्देश जारी करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना जिले के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रवास के अंतिम दिन आज केंद्रीय मंत्री विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकहित कार्यक्रमों में सहभागिता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज नीमच में 500 मेगावाट और शाहपुर में 450 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी होगा। प्रदेश में कल से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के अंतर्गत आज और कल घर घर पोलियो की दवा पिलाने के लिए टीम पहुंचेगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। श्री अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और भोपाल स्थित मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में शलाका जनजातीय चित्र प्रदर्शनी चल रही है। गौंड चित्रकार मनीषा ध्रुवे के चित्र प्रदर्शित हैं। ये प्रदर्शनी 30 जून तक चलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान है।

स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नेहा जैन। आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। श्रोताओं, मौसम, उम्र और जगह के हिसाब से हम सबकी अपनी प्राथमिकताएं और आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, लेकिन एक बात जो हम सबके लिए हमेशा एक जैसी रहती है वो है हमारा और हमारे परिवार का स्वस्थ रहना, और इसके लिए हम हर संभव प्रयास भी करते हैं, लेकिन बीमारी कभी भी दरवाजे पर दस्तक देकर नहीं आती है। श्रोता, अचानक जब कोई बीमारी आ जाती है तब इलाज का खर्च कई परिवारों के लिए चिंता का कारण बन जाता है। ऐसे में जरूरत होती है एक ऐसे सहारे की जो स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा भी दे। श्रोताओं, इसी सोच के साथ भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य आम लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी परिवार आर्थिक कठिनाई के कारण इलाज से वंचित ना रहे। इस योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्हें सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के उपचार की सुविधा मिलती है। इस योजना का लाभ

कार द्वारा निर्धारित पात्र परिवारों को मिलता है। साथ ही 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी इस योजना का लाभ मिलता है। श्रोताओ, आपका नाम पात्रता सूची में है या नहीं, ये आप आयुष्मान भारत की आधिकारिक वेबसाइट, कॉमन सर्विस सेंटर या सूचीबद्ध अस्पतालों में आयुष्मान मित्र से जान सकते हैं। श्रोताओ, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है, इसीलिए सही जानकारी रखें, अपनी पात्रता की जांच करें और पात्र बनकर इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं, क्योंकि स्वस्थ रहकर ही हम खुश रह सकते हैं और अपने आप से कह सकते हैं लव यू जिंदगी।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण और अब कार्यक्रम में वक्त है आज की भेंट वार्ता का। योग और मोटापा, इस विषय पर हम आपको सुनवा रहे हैं आज की भेंट वार्ता, जिसमें विशेषज्ञ हैं डाइटिशियन और योगाचार्य ममता गुरु और इनसे बातचीत कर रही हैं अर्चना सक्सेना।
1: श्रोताओं, माता पिता हमेशा अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाना चाहते हैं, फिर चाहे वो शिक्षा हो, संस्कार हो या सेहत ही क्यों ना हो। उनका हमेशा यही स्वप्न होता है कि उनके बच्चे हर हाल में स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत करें। लेकिन आज के दौर में बच्चों को मोटापे जैसी कई स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डाइटिशियन और योगाचार्य ममता गुरु को। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल ओबेसिटी यानी कि

0: मोटापा एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। तो क्या कारण है, या ये कहें कि ये किन किन कारणों से हो सकता है?
1: देखिए, कारण तो बहुत सारे होते हैं और सबसे पहले तो हमारे घर से ही शुरू होते हैं वो कारण, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल, और इसमें सबसे बड़ा रोल माँ का होता है, क्योंकि जैसे हम हैबिट डाल देते हैं घर में जिस तरीके से लाइफ स्टाइल की, तो वैसा ही वो परिवार में परिवेश बनता जाता है, और कहीं ना कहीं वो एक ड्रॉबैक हो जाता है, जैसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करना और सारी चीजें, तो वो भी कहीं ना कहीं इसका एक रीजन बन जाता है। फिर मेडिकल पॉइंट्स भी रहते हैं मोटापे के।
0: अगर हम कंपेयर करें हमारे बचपन के समय की, या ये कहें कि आज के बच्चों से हम पुराने समय के बच्चों की कंपैरिजन करें, तो आज हमें, चाहे वो टीनेज वाले बच्चे हों या बढ़ती उम्र के बच्चे हों या फिर छोटे बच्चे हों, सभी में ओबेसिटी का रेशियो कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों में ये ओबेसिटी का क्या कारण है?
1: देखिए, रीजन बेसिक ये है कि न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स हमको रेगुलर रूटीन में चाहिए बॉडी के डेवलपमेंट्स के लिए, वो हमको नहीं मिल रहे हैं। कारण क्या है कि टेस्ट पर बच्चे ज्यादा जाते हैं, फास्ट फूड्स ले लिए तो कैलोरीज तो मिल गई, भूख भी दब गई, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए एक्चुअली वो चीजें नहीं मिली। तो जब क्या होता है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी बॉडी में होने लगती है, तो भी कहीं ना कहीं मोटापा बढ़ने लगता है। दूसरा रीजन क्या है कि फिजिकल उतना नहीं, क्योंकि आप देखिए, एक छोटा सा बच्चा भी मोबाइल लेकर के बैठ जाता है, वो घंटों बैठा रहेगा, आवाज तक मुंह से नहीं करेगा। और जबकि पहले के, जब कंपेयर स्टडी अगर हम करें, तो पहले ऐसा नहीं होता था। हम ही लोगों ने पिट्ठू और पता नहीं कौन कौन से गेम, पोशम पावर, बहुत सारी चीजें हमने खेली है, लेकिन आज के हमारे बच्चे ये नाम को भी जानते हैं, तो उनको तो नाम भी नहीं पता ये। तो एक रीजन ये भी है मोटापे का, जो हर एज ग्रुप में हमको देखने के लिए मिल रहा है।
0: अभी आपने को जो कारण बताए बच्चों में ओबेसिटी के, तो एज एन एडवाइस टू पेरेंट्स क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए जिससे इस प्रॉब्लम को कम किया जा सके?
1: आप समझाइए बच्चों को कि वो एटलीस्ट थोड़ा सा फिजिकल करें। फिजिकल का मतलब ये कि स्पोर्ट्स में कुछ इंक्लूड हो जाए, कुछ नहीं तो स्टेडियम ज्वाइन करा दीजिए, कुछ भी एक्टिविटी जिसमें उनका फिजिकल हो सके। आजकल क्या होता है, पेरेंट्स ही बोलते थे, अरे उसके पास तो टाइम कहाँ है, वो पढ़ेगा कि क्या करेगा। तो लेकिन मेरा कहना ये है कि एक डिसिप्लिन और एक टाइम टेबल हर एक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, चाहे किसी भी एज ग्रुप का। छोटे से बच्चे की अगर हम आदत डाल देंगे, तो वो आप देखिए खुद अपना एक टाइम टेबल मैनेज करेगा, मुझे इतने बजे उठना है। और देखिए, सबके पास 24 घंटे हैं, बहानों का मुझे लगता है अंत नहीं है, लेकिन उसी टाइम में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो हम वाकई में कर सकते हैं। तो हमें ये बच्चों में आदत डालना चाहिए।
0: आपने आहार, पोषण, खान पान की बात की, तो निश्चित ही खान पान एक बहुत अहम पार्ट होता है हमारी लाइफ स्टाइल का। तो हमें बच्चों को क्या बैलेंस डाइट या क्या संतुलित आहार देना चाहिए जिससे कि उन्हें फिट और हेल्दी रखा जा सके?
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हमारे सराउंडिंग में ही है इसका आंसर, कि जितने भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं उनका भरपूर इंटेक करना चाहिए, और जितना भी हो सके आप पेट भर के अच्छे से खाना खाइए, ताकि ये नहीं रहे कि थोड़ी देर में फिर और कुछ खा लिया, थोड़ी देर में फिर और कुछ खा लिया। तो यदि हम एक बार पूरी बैलेंस डाइट लेते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी दही सलाद, ये सारी चीजें अगर हम एक बार में ले लेते हैं, तो हमको फिर ऐसी भूख नहीं लगेगी। जैसे लगता है ना, टेम्पटेशन हो रहा है, अब कुछ खा लो फिर कुछ खा लो, तो कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है वजन को बढ़ाने का। और इससे क्या होता है, जब हमारा वजन बढ़ता है तो मेंटली शिथिलनेस हमारी बॉडी में आती है, तो दिमाग भी उतना सोच नहीं पाता, उतना क्रिएटिव नहीं रह पाता। तो अगर क्रिएटिव रहना है तो बॉडी को भी हमें क्रिएटिव और एक्टिव रखना पड़ेगा।
0: ममता जी, जैसे कि बात चल रही है ओबेसिटी यानी कि मोटापे की, तो मोटापे का बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या योग इस समस्या को कम करने में मदद कर सकता है?
1: बिल्कुल करता है, और यदि अपन सही यौगिक क्रियाएं करेंगे तो आपको मेंटल फिजिकल दोनों रिजल्ट्स मिलेंगे, और ब्रेन भी आपका इतना बढ़िया वर्क करेगा, और बॉडी हमेशा एनर्जेटिक और रिफ्रेश रहेगी, और मोटापा कभी भी बढ़ेगा नहीं, और बल्कि धीरे धीरे बॉडी शेप में आएगी, फेस पे ग्रेस आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, साथ ही इम्यून स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये सब चीजें वहीं पर दब जाती हैं जब हमारा वेट बढ़ जाता है, माइंड भी डल हो जाता है। लेकिन जब हम इस पर विजय प्राप्त करते हैं, तो ये जो हमारे अंदर की क्वालिटीज है वो सारी निखर के बाहर आती है, और मन भी सुंदर हो जाता है, हमारा मस्तिष्क भी बहुत अच्छा वर्क करता है।
0: तो योग से इस समस्या को कम करने में हमें कैसे मदद होगी? कुछ ऐसे आसन हमें आप बता सकते हैं जो कि बच्चों में बढ़ती हुई ओबेसिटी को कम करने के लिए कुछ फायदेमंद हो?
1: बहुत अच्छा हमारा एक आसन का कॉम्बिनेशन है जिसको कहते हैं सूर्य नमस्कार। 12 आसन है, सारे स्ट्रेचिंग पोजेज हैं, जो कि मेंटल फिजिकल दोनों रिजल्ट देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए इससे बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल हाइट भी बहुत शॉर्ट होती जा रही है, तो ये हमें उसमें भी इम्प्रूवमेंट देता है, साथ ही हमारी मेंटल स्ट्रेंथ में भी हेल्पफुल है। बॉडी की पूरी स्ट्रेचिंग करने के संग क्या होता है, बॉडी का एक फिगर बहुत सुंदर शेप आ जाता है और सुंदरता बढ़ती है। जब सुंदरता, हमको अपने आप में हम बहुत सुंदर दिखेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग डेवलप होता है, तो बैक बेंचर भी नहीं बनेंगे, फ्रंट में आ जाएंगे। तो वो चीजें सब बच्चों को बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। संगी कुछ थोड़े से प्राणायाम कर लें तो हमारी मेमोरी को भी और कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल भ्रामरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, किसी गुरु के मार्गदर्शन में सीख लें। एक

0: दो सिटिंग में आपको करेक्शन हो जाता है। सूर्य नमस्कार सीख लो और उसको रेगुलर करते रहें।
1: योग और संतुलित आहार का पालन करने से बच्चे भविष्य में भी क्या ओबेसिटी या मोटापे की तकलीफ से या कहें कि उससे जुड़ी बीमारियों से बचे रह सकते हैं?
0: बिल्कुल, डेफिनेटली। अब हम देखें, आजकल मुझे ऐसा लगने लगा है कि क्योंकि डेली रूटीन में हमारे पास बहुत लोग आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है यंगस्टर्स की संख्या रेगुलर बढ़ रही है हमारे पास में। और उसमें मैं बोलूंगी उम्र भी कुछ नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चा भी आ रहा है और बड़ा भी आ रहा है, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फेस कर रहे हैं बच्चे वो भी आ रहे हैं। स्ट्रेस तो सबके ऊपर है, छोटे बच्चे पे भी है। तो कहीं ना कहीं योग हमको इन सब चीजों से बचा लेता है। मेडिकली भी कोई अगर प्रॉब्लम मान लीजिए आ गई है बॉडी में, हेरिडिटी से भी आ जाती है कई बार हमारी गलत आदतों से भी आ जाती है, तो अगर ऐसा कुछ आ भी गया तो वो भी हम योग से इजिली करेक्शन कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं और नॉर्मल बेटर फिट लाइफ को हम जी सकते हैं।
1: जैसे कि आजकल यंग गर्ल्स में हम देखते हैं पीसीओडी या पीसीओएस, बहुत ज्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, तो क्या योग से इन हार्मोनल इम्बेलेंसिंग को ठीक किया जा सकता है? ऐसे कुछ आसन हमें बताएं जो इनके लिए फायदेमंद हो, क्योंकि ये समस्या आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ममता जी,
0: जैसा मैंने बताया कि सूर्य नमस्कार वो तो करना ही है, वो कर लीजिए, कंप्लीट स्ट्रेचिंग पोजेज हैं, और जैसे पीसीओडी पीसीओएस या फिर स्ट्रेस एंजाइटी, ये बहुत सारी चीजें जो यंगस्टर्स में हम अभी देख रहे हैं, उसको रिलीफ करने के लिए ध्यान, मुद्राएं, कुछ आसन, वज्रासन, सुप्त वज्रासन, जैसे आपने बोला कि जो हार्मोनल डिसबैलेंसेस को मेंटेन करने के लिए, तो सुप्त वज्रासन है, मत्स्य आसन है, अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये कुछ आसन ऐसे हैं, थोड़े से ट्विस्टिंग पोजेस हैं, थोड़े से डिफिकल्ट हैं, पर इनका अभ्यास यदि करते हैं तो ये रिजल्ट्स जबरदस्त देते हैं। मतलब आपको कभी भी वो प्रॉब्लम रिवाइज ही नहीं होगी और बल्कि क्योर हो जाएगी और नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। लेकिन फिर यही बोलूंगी कि एक बार कि हमको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हमको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, फिर आप देखिए इतने जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपकी सारी परेशानियां ही खत्म हो जाएंगी।
1: जैसे कि अभी हमने बात की यंग गर्ल्स की, वैसे ही आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है जो यंगस्टर्स हैं, कहीं भी बैठे हुए हार्ट अटैक आ गया, चलते हुए हार्ट अटैक आ गया, डांस करते हुए आ गया, और उम्र की कोई सीमा नहीं है, तो क्या कारण है और उनके लिए योग कैसे फायदेमंद हो सकता है?
0: मेरे ख्याल से प्रश्न तो सबके दिमागों में कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, चाहे अपन उस व्यक्ति को जानते हो ना जानते हो, लेकिन एक झटका सबको लगता है। फिर एक बेसिक रीजन यहीं पर है, हमारी लाइफस्टाइल और हेरिडिटी। अगर आपको लगता है कि आपके हेरिडिटी में ये इस टाइप के केसेस कंटिन्यू हर पीढ़ी में हो रहे हैं, तो फिर आप उसके लिए अवेयर हो जाइए, कुछ करिए। कुछ करिए का मतलब ये कि आप योगिक क्रियाएं करिए, जिससे किसी भी चीज को देखिए पोस्टपोन कर सकते, वो हमारे हाथ में है। जैसे ऊपर वाले ने जीवन तो आपको दिया, लेकिन जो जीवन हम जी रहे हैं वो तो हमारे हाथ में है। हम कैसा जी रहे हैं, हम अंतिम समय पर 10-15 लोगों की सेवा लेके जा रहे हैं, 10-15 लोगों की सेवा करते हुए जा रहे हैं, निर्धारित हमारे ऊपर है। तो वही बस चीज को फॉलो करें कि हमारा बैकग्राउंड में क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है, या मान लीजिए अगर आपको किसी को भी बीपी थोड़ा भी हो गया, उम्र की बात नहीं कर रही हूं मैं, किसी भी उम्र में, तो हम उसके लिए अवेयर हो जाएं, डॉक्टर का गाइडेंस बराबर लें, जो उनकी गाइडेंस है उसको प्रॉपर करें, हम फिजिकल प्रॉपर करें, यौगिक क्रियाएं गुरु के मार्गदर्शन में करें। ये नहीं कि हम कई बार क्या होता है घर में ही बैठ करके करें, पता चला बीपी इतना शूट अप हो गया, वही ऑफेंट हो गए, तो कोई भी ऐसा रिस्क ना लें फिर, और अपनी मॉनिटरिंग पूरी करते रहें, अपना एनालिसिस पूरा, थक गए हैं तो रेस्ट करें, ऐसा नहीं कि फिर भी करे जा रहे हैं, तो एक्सेस भी नुकसान करता है और कुछ भी न करना भी नुकसान देता है, तो दोनों चीजों में हमको बहुत अवेयर रहने की जरूरत है।
1: यदि बच्चों को हमें योगाभ्यास प्रारंभ कराना है ममता जी, तो उसकी सही उम्र क्या है और उसे कैसे प्रारंभ कराया जा सकता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं तो बोलती 5 साल के बच्चे से ही शुरू कर दें योग, तो कहीं पर कोई हमें दिक्कत आएगी ही नहीं, हमारा बच्चा भी स्वस्थ, हम भी हैप्पी, फैमिली भी खुश, और कहीं कोई दिक्कत नहीं। और बच्चों को क्या होता है, वो बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है, क्योंकि ग्रोइंग एज है, तो उनको क्या होता है कि मूवमेंट्स बहुत, मतलब इतने बढ़िया सुंदर आसन करेंगे, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आसन, पर अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी अगर एक बार आ गई बॉडी में, तो जीवन भर आनंद देगी वो तो। लेकिन एक चीज और बोलना चाहूंगी, जब जागे जब सवेरा, मान लीजिए इतनी उम्र में नहीं शुरू करा, लेकिन हमें जब समझ में आया हम तभी शुरू कर लें।
1: बिल्कुल। अब एक और प्रश्न ये जानना चाहूंगी कि कुछ ऐसे कॉमन आसन योग के जो हर व्यक्ति कर सकता हो और फायदेमंद भी हो।
0: देखिये, सबसे मुख्य है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है प्राण प्लस आयाम, एडिशन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड प्राणायाम। तो प्राणायाम से हम शुरू करें, कोई भी उम्र हो, और कुछ पर्टिकुलर आसन जैसे वज्रासन है, मत्स्य आसन है, मार्जरी आसन है। एक्चुअली योग में सिर्फ आसन और प्राणायाम ही नहीं है, बंध मुद्राएं भी हैं, तो हम इनके संग थोड़ा सा अभ्यास उसका भी अगर कर लें, तो जो हमारे इंटरनल रिएक्शंस और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का जो रिएक्शन फंक्शनिंग है प्रॉपर अगर हो गया, तो फिर बहुत बेस्ट रहता है। तो कुछ आसन है थोड़े बहुत कर लें, सूर्य नमस्कार है, पवन मुक्तासन कर लें, पवन मुक्तासन सीरीज नंबर 1, 2, 3 ऐसे 2-3 सीरीज है, उत्तान पादासन की सीरीज है, और जैसा मैंने पहले भी बोला सूर्य नमस्कार उसमें कंप्लीट 12 आसन का जो एक स्ट्रेचिंग

0: पोजेज हैं वो बहुत जबरदस्त लाभदायक हैं। कुछ थोड़ा सा एक पैकेज टाइप का 10-15 मिनट का भी बना लेंगे ना, तो वो हमको कंप्लीट बेनिफिट देगा।
1: ममता जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
0: मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि 24 घंटे में से सिर्फ 45 मिनट ऐसे निकाल लीजिए कि आप योगिक क्रियाएं कर लें, कुछ फिजिकल कर लें, सारी बीमारियां दूर, फिट और फाइन। जैसे आप अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, ऐसे वो 45 मिनट में आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, तो मेंटल फिजिकल दोनों शानदार हो जाएगा। जीवन शैली को सुधार लें, जीवन शैली सुधर गई, खाना पीना सुधर गया, तो मतलब मुझे लगता है उससे अच्छा फिटनेस तो कुछ और होगी ही नहीं।
1: इतनी अच्छी और सार्थक जानकारी देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे योग और मोटापा विषय पर भेंटवार्ता। श्रोताओं, आज की भेंटवार्ता का संदेश यही है कि मोटापे से घबराने की नहीं, सही दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाने की जरूरत है। तो योग को अपनी जीवन शैली में अपना शामिल करें और यूं ही आगे चलते रहें।

श्रोता, हम बात कर रहे हैं हमारे हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट की, जहां हम बात करते हैं स्वास्थ्य और विज्ञान की उन नई तकनीकों की जो हमारे जीवन को सुरक्षित, आसान और बेहतर बना रही हैं। आज की दुनिया में तकनीक सिर्फ हमारे मोबाइल या कंप्यूटर तक सीमित नहीं है, बल्कि अस्पतालों और हमारे घर में प्रयोग होने वाली मेडिकल उपकरणों का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। स्मार्ट हेल्थ डिवाइसेस ने इलाज को तेज, सटीक और सुविधाजनक बनाया है, और जब तकनीक आगे बढ़ती है तो उसकी सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी होती है। इसीलिए इन डिवाइसेस की साइबर सिक्योरिटी की जाती है। श्रोताओं, आज अस्पतालों में हार्ट मॉनिटर, इंसुलिन पंप, पेसमेकर, MRI मशीन और कई अन्य उपकरण डिजिटल तकनीक से संचालित होते हैं। इनमें मरीजों की महत्वपूर्ण जानकारी भी जुड़ी रहती है। श्रोताओं, ये उपकरण जब कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़े होते हैं तो उनकी सुरक्षा करने के लिए जो तकनीक उपाय किए जाते हैं उसे साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। या यूँ कहें कि जैसे हम अपने घर की सुरक्षा के लिए ताला लगाते हैं, वैसे ही मेडिकल डिवाइसेस और उनसे मरीजों की जो जानकारी है उसे सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल सुरक्षा उपाय अपनाए जाते हैं। डिवाइस के सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपडेट कर सुरक्षित पासवर्ड, विशेषज्ञों द्वारा समय समय पर सुरक्षा परीक्षण से इन डिवाइसेस की सिक्योरिटी की जाती है। श्रोता, अगर आप भी घर में किसी ऐसे स्मार्ट हेल्थ डिवाइस का उपयोग करते हैं तो डिवाइस को समय समय पर अपडेट करते रहें, आधिकारिक ऐप और लिंक का ही प्रयोग करें, क्योंकि जब तकनीक का सही और सुरक्षित उपयोग हो तो उम्मीदें भी नई उड़ान भरती हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, बारिश का मौसम दस्तक दे रहा है। ये मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं स्वास्थ्य के लिए नई चुनौतियां भी लेकर आता है। श्रोताओं, कुछ आदतों को बदलकर हम बारिश में होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। साफ पानी, ताजा भोजन, हाथों की स्वच्छता और मच्छरों से बचाव ही इस मौसम में सुरक्षा कवच का काम करता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और स्वस्थ और सुरक्षित रहें। और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए आपकी रेडियो दोस्त नेहा जैन को। नमस्कार।

इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनिए लोक संगीत के कार्यक्रम में अर्चना खरे से बुंदेली लोकगीत।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे रत्नेश दुबे से ये गजल।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: OTT app now and watch for free.
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
2: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं फिल्म संगीत।

दूसरा आदमी, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार थे मजरू और संगीत था राजेश रोशन का।

0: फिर वही दिल लाया हूँ। उस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज़ में, गीतकार है मजरू और संगीत है ओपी नैयर का।
1: जाल रंग डाले दिल पे किसी का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद श्री मोदी अपना दौरा संपन्न कर दिल्ली के लिए रवाना हुए। कल प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर परियोजनाओं 440 मेगावाट की सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना, पावर परचेज एग्रीमेंट और 1,553.98 करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों और विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया जाएगा। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश के नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा मंत्री शुक्ला की उपस्थिति में भोपाल में 440 मेगावाट के मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट होगा। उन्होंने बताया कि मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज प्रदेश की पहली सोलर ऊर्जा भंडारण परियोजना है। इस परियोजना में 2.70 रुपए प्रति यूनिट की दर निविदा पर प्राप्त हुई है, जो देश में न्यूनतम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस साल के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले 9 सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश के आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। अभी तक केवल 15 जिलों तक मॉनसून पहुंच पाया है, जबकि 40 जिलों में अभी इसकी आमद नहीं हुई है। इस बीच मौसम

विभाग ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और कई अन्य जिलों में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, मंडला और बालाघाट में अगले 24 घंटों के दौरान 4 इंच या उससे अधिक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले रविवार को मंदसौर और रतलाम में तेज बारिश हुई, जबकि रतलाम में आधा इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा गुना, श्योपुर, बड़वानी, शाजापुर, सीहोर, उज्जैन और छतरपुर सहित कई जिलों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कल से हो चुकी है। अभियान के अंतर्गत आज और कल घर घर पोलियो की दवा पिलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के दल पहुंच रहे हैं। खंडवा जिले में आमा खुजरी जंगल में वन भूमि पर दोबारा हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए आज सुबह प्रशासन ने बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया। वन, राजस्व और पुलिस विभाग के करीब 600 अधिकारी कर्मचारी सुबह 7 बजे से 30 जेसीबी मशीनों के साथ कार्रवाई में जुटे हैं। पन्ना पुलिस ने तत्परता निभाते हुए पवई थाना क्षेत्र से अपहृत एक कपड़ा व्यापारी के 20 वर्षीय बेटे को रातभर चले सर्च ऑपरेशन के बाद सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों की पहचान कर ली है, जो फिलहाल फरार हैं। खरगोन जिले की बड़वाह के पास चोरल नदी में अचानक जल स्तर बढ़ने से बीच धारा में फंसे इंदौर के 3 युवकों को स्थानीय पुलिस ने अस्थायी रस्सी के सहारे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के 2रे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनयगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न

0: पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजंस से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशेल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के

0: 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं और सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
3: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देव स्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन

0: फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्वकप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहला गीत सुनना चाहते हैं हमारे ये साथी बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूणत, लाबरिया भेरू, इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक कुणाल, केतन, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेंग बिरक, मीका बिरक, इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है त्रिशूल फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की, गीतकार हैं साहिर और संगीत है खयाम का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए ये अगला गीत सुनना चाहते हैं हमारी ये साथी कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य आदित्य, शिवानी श्रीमाली, मीनूराज श्रीमाली, और खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमंद्र, सन्मति पंचोलिया, और धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, काफिर, स्वाति माखीजा, इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है। और ये प्यारा सा गीत है ये फिल्म आसपास से, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, गीतकार हैं आनंद बख्शे, और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए ये अगला गीत है फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर की और गीत लिखा है मजरों ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और सुनना चाहते हैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना प्राची नेमा, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जास्मीन प्रयागराज भट्ट, अमलेश्वर छत्तीसगढ़ से डूमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर।
1: चलो

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आपकी कसम से, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत आर डी बर्मन का। और सुनना चाहते हैं बलिया उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, और ये साथी हैं बड़खेरा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, सुनील सिंह, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, शेख जमील मंसूरी और प्रभाकर जोनले, आरती जोनले, ये दो साथी हैं हमारे नांदेड़ महाराष्ट्र से।

आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश भेजी है हमारे इन सभी साथियों ने। ये साथी हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य बक्सर से, और भाटापारा दत्तरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार वर्मा। आप सभी श्रोता साथी सुनना चाहते हैं आन मिलो सजना इस फिल्म का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। इसके बाद वे दौरा संपन्न कर दिल्ली रवाना हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस साल के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी

कृषि और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन कर रहे हैं। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्रावधान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। प्रदेश में कल से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के अंतर्गत आज और कल घर घर पोलियो की दवा पिलाने के लिए टीम पहुंच रही है। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। श्री अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और मौसम विभाग ने आज उज्जैन देवास छिंदवाड़ा पांडुना मंडला और बालाघाट में 4 इंच और उससे अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

शाम 5:33 पर और 6:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 6:00। प्रादेशिक समाचार दर्शन 6:45 पर आप सुनेंगे। और आजकल 6:40 पर

सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा आज रात 8 बजे, 8:15 पर सुनिए फिल्म संगीत, 9:30 पर सुनिए पब्लिक स्पीक जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे, रात 10 बजे आप सुन सकते हैं रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। और रात 10:30 पर सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सज्जन लाल ब्रह्म भट्ट से राग यमन कल्याण में ख्याल गायन।

आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत ग्राम सभा आप सुनेंगे 7:21 पर। तो ये थी जानकारी आज शाम की सभा के कार्यक्रमों की।

प्रसारण जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे अर्चना खरे से देवी गीत।

मीडिया वे 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 3:03 हुए हैं। हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम की सभा में 5 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, पर इस बीच डीटीएच पर हमारा

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे रत्नेश दुबे के स्वर में गजल।

इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम का अगला गीत। हम आपको सुनवाते हैं फिल्म आशिकी से, जिसके लिए आवाज़ है अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू की, गीतकार है रानी मलिक और संगीत है नदीम श्रवण का।

इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म यारा दिलदारा से, जिसके लिए आवाज़ है उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत है जतिन ललित का।

के लिए आवाज़ें हैं उदित नारायण सपना मुखर्जी की, गीतकार हैं सुदर्शन फाकिर और संगीत है चिन्नी सिंह का।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व की विविध संस्कृतियों के सम्मान पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषित साझा करते हुए कहा कि विश्व की विविध संस्कृतियों का सम्मान करने से लोगों के बीच विश्वास और सहयोग की भावना बढ़ती है। उन्होंने कहा कि इससे आपसी समझ और भाईचारे को बढ़ावा भी मिलता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महान संत समाज सुधारक कबीरदास की जयंती पर उन्हें नमन किया। डॉ. यादव ने कहा कि संत कबीरदास जी ने सामाजिक कुरीतियों, आम्बेडकर, आडंबर, अंधविश्वास के विरुद्ध जनजागृति की। उनकी अमर कृतियां अनंत काल तक समाज को लोक कल्याण की दिशा देती रहेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मौसम विभाग ने आज उज्जैन, भोपाल, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, मंडला और बालाघाट में 4 इंच या उससे अधिक बारिश होने की संभावना जताई है और दीप्ति शर्मा महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने अपना 356वां विकेट लेकर दिग्गज झूलन गोस्वामी के 355 विकेटों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: आकाशवाणी भोपाल की जानिब से हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम आईना को लेकर हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त जावेद। इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। सामईन, आज की हमारी बातचीत का मौजू है अदब और इंसानी हकूक़ के ताल्लुक से। अज़ीज़ दोस्तों, अदब और इंसानी हकूक़ के दरमियान गहरा और तारीख़ी ताल्लुक़ है। अदब न सिर्फ माशरे की अक्कासी करता है बल्कि बुनियादी इंसानी हकूक़, आज़ादी और मसावात का सबसे बड़ा अलमबरदार भी रहा है। आज़ादी इजहार और शऊर की बेदारी पैदा करने के लिए अदब इंसानों को अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होने की तहरीक देता है। मज़लूमीन की तर्जुमानी के लिए अदीब और शायर अपनी तहरीकों के ज़रिए मुआशरे के पसमानदा तबकों, अक़लियतों और मजबूर अफराद के मसाइल को दुनिया के सामने उजागर करने का बेहतरीन हुनर रखते हैं। इंसानी इकदार का तहफ़ुज़ और हकूक़ के लिए बेहतरीन अदब हमेशा इंसान दोस्ती, रवादारी और बाहमी एहतराम का दर्स देता आया है, जो किसी भी माशरे में अमन के क़याम के लिए नागुज़ेर है। अगर हम तारीख़ी जद्दोजहद का मुताला करें तो दुनिया भर की अदबी तहरीकों जैसे तहरीक आज़ादी या तहरीक निस्वा से इंसानी हकूक़ की वकालत में कलीदी किरदार अदा किया है। मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़लसफ़ों ने भी अदब और इंसानी हकूक़ की कदरों पर ख़ास ज़ोर दिया है, जहाँ एक दूसरे के हकूक़ की अदायगी और एहतराम को इंसानियत की मेराज करार दिया गया है। दोस्तों, उर्दू ज़बान व अदब में बहुत ज़्यादा वसअत है कि वो किसी भी दूसरी ज़बान के अल्फाज को न सिर्फ अपने अंदर समो लेती है बल्कि इसमें इस कदर लचक है कि हर हाल में इलाके में ख़ुद को ढाल लेती है। इसी ज़बान व अदब ने हिंदुस्तान को मुत्तहिद करने और अमन कायम रखने में भी बेहद अहम किरदार अदा किया है। उर्दू अदब का दायरा बहुत वसी और जामे है। इसमें ज़िंदगी के मसाइल के अलावा इंसानी हकूक़ का बेशबहा सरमाया मौजूद है। इसने हमेशा इंसानी आला कदरों को सराहा है और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया है। दोस्तों, इंसानी हकूक़ के तफसीली फ़लसफ़े और बुनियादी हकूक़ की नौईयत के बारे में मज़ीद जानने के लिए आइए हम सुनते हैं एक तकरीर, जिसमें मुकर्रर हैं मोहम्मद आरिफ जुनैद खान। समाअत फरमाइए।
1: अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, उसे अक्ल सलीम की दौलत से मालामाल किया है, उसे कुव्वत गोयाई, ज़राए अक्ल खिर्द यानी कुव्वत समात, कुव्वत बसारत, कुव्वत फिक्र तदब्बुर, हुर्रियत पसंद, फितरतन आज़ादी ख्याल का खूगर पैदा किया है। ख़ानदान, गिरोह और माशरे में रहना उसकी फितरी ज़रूरत है। माशरे में रहने के लिए उसे बेशुमार सहारों, मदद और खिदमात की हर आन ज़रूरत रहती है। अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात की फराहमी में दीगर अफराद की तवज्जो, तआवुन, ताल्लुकात और रवाबित लाजमी हैं। उसे अपनी फितरी सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए इज्तिमाई और समाजी ताल्लुकात को बरकरार लाकर अपनी ज़िंदगी के दायरों को वसी करके ज़िंदगी के तमाम शोबों को तरक्की देना और अपने हकूक़ व फ़राइज़ का तायुन करना ज़रूरी होता है।

0: दोस्तों, अभी आप गुलूकार शंकर दास गुप्ता की आवाज़ में गज़ल समात फरमा रहे थे, जिसमें कलाम था जिगर मुरादाबादी का। सामईन, शायरी अपने दौर के हालात, मसाइल और तहजीबी इकदार का मुशाहिदा करने के साथ साथ इंसान की दबी हुई ख्वाहिशात, उदासी, खुशी और मोहब्बत को अल्फाज का रूप देती है। शायरी बीमार रूह की दवा है, क्योंकि ये दिल का बोझ हल्का करती है। दोस्तों, इसी शायरी के ताल्लुक से हमने आपके लिए एक कलाम का एहतिमाम किया है, जिसमें शायर हैं जलाल मयकश। तो आइए सुनते हैं उनका कलाम उन्हीं की ज़ुबानी। समात फरमाइए।
1: दुश्मन

اور حضرات یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کس لیے محلے کی

خدا مقام।

दुश्मनों से कह दीजिए। हजरत एक दो तीन चार शेर और एक गजल के मुलाहिज़ा फरमाए। मतलब पढ़ता हूँ कि तरकश में जितने तीर थे सब आजमा लिए, तरकश में जितने तीर थे सब

लिए। और शेर पढ़ता हूँ के जब मांगने से अपना हमें हक नहीं मिला।

टुकड़े रात के बासी थे खा लिए, दुनिया की आखरत में दुनिया की

0: ये तारु कछु में जित ले तीर थे सब आजमा लिए।
1: सामेईन, अभी आप शायर जलाल मैकश से उनका कलाम सुन रहे थे। इसी के साथ हमारा आज का ये प्रोग्राम आईना यहीं इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपने खतूत के ज़रिए हमें ज़रूर मुत्तला करें। तो चलिए अब आप हमारा पता नोट कीजिए। उर्दू प्रोग्राम आईना, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। अब आपके रेडियो दोस्त जावेद को दीजिए इजाज़त। आदाब।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। सुनते हैं संग्रहालय से इस कार्यक्रम में धारावाहिक भुवन मोहिनी की 11वीं कड़ी।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। सुनते हैं संग्रहालय से इस कार्यक्रम में धारावाहिक भुवन मोहिनी की 11वीं कड़ी।

पिछली कड़ियों में आपने जाना कि इंद्रप्रस्थ नरेश आदित्य सेन अपनी पुत्री का विवाह विजय श्रवा से करना चाहते थे। विजय श्रवा चंद्रहासिनी के प्रति आकर्षित तो था, परंतु प्रेम भुवन मोहिनी से ही करता था। इसी बीच संपूर्ण खंड राज्यों के सेनापति के रूप में विजय श्रवा का चयन हुआ। धारा के दरबार में विजय श्रवा ने हूण सेनापति के अपमानजनक पत्र को पढ़ा और आमात्य ऋषभदेव ने युद्ध के स्थान पर अपमानजनक संधि करने की वकालत की। भुवन मोहिनी ये न सुन सकी और उसने आमात्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। हूणों के खिलाफ युद्ध में भुवन मोहिनी विजय श्रवा के साथ छाया की तरह रही और विजय श्रवा को जीत हासिल हुई। विजय श्रवा ने भुवन मोहिनी और राजमाता को दिए गए वचन के अनुसार चंद्रहासिनी से विवाह किया, सम्राट बना। भुवन मोहिनी उन दोनों के सुखमय जीवन के लिए समाज सेवा में जुट गई। जब वो वापस लौटी तो चंद्रहासिनी ने भुवन मोहिनी का अपमान किया। इससे दुखी होकर विजय श्रवा भुवन मोहिनी को अपने पास बुलाकर अलग रहने लगा। चंद्रहासिनी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सम्राट विजय श्रवा ने उसको निष्कासित करने का आदेश दे दिया। भुवन मोहिनी के मनाने पर सम्राट विजय श्रवा ने अपना आदेश वापस तो ले लिया, परंतु स्वयं मुख्य महल से अलग रहने लगा। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 11वीं कड़ी में।

0: अरे मैं पूछता हूं, इस तरह अंधेरे में कौन खड़ी है वहां?
1: अरे भुवन मोहिनी, आप कब आई देवी?
2: मेरे आगमन को गोपनीय रखिएगा अरण्यक।
1: तो क्या सम्राट को भी ना बताऊं?
2: नहीं अरण्यक, सम्राट कुशल तो है ना?
1: उनकी कुशलता के कहने ही क्या। राजप्रासाद से दूर निर्जन क्षेत्र में पर्णकुटी बनवाकर रह रहे हैं। राजकीय अधिकारी और मंत्रीगण शासन संबंधी आदेशों को प्राप्त करने वहीं पर्णकुटी पहुंचते हैं। और हां, राज परिवार के लोगों का प्रवेश निषिद्ध है।
2: क्या?
1: कभी कभी सम्राट राजमहल जाकर राजमाता से मिल लेते हैं, और वो भी बाह्य कक्ष में। राजकुमार को लेकर संरक्षक अवश्य पर्णकुटी में आ सकता है।
2: और साम्राज्ञी?
1: अरे उनका तो प्रवेश एकदम से निषिद्ध है। कई बार साम्राज्ञी ने पत्रों द्वारा उनसे मिलने की

0: प्रार्थना की, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। ऊपर से सम्राट ने पत्रवाहक को कड़े निर्देश दे दिए कि भविष्य में वो कभी भी उनके पत्र लेकर ना आए। और इतना ही नहीं देवी, द्वारपाल को निर्देश हैं कि साम्राज्ञी कभी बलपूर्वक प्रवेश करने का प्रयत्न करें तो उन्हें भी रोक दे।
1: ये कैसा दुर्दैव!
0: देवी, ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध होगा यदि मैंने आपके आगमन की सूचना सम्राट को अविलंब न दी तो।
1: परंतु अरण्यक,
0: ये सम्राट के हित में होगा।
2: अरण्यक,
0: हाँ,
2: राजप्रसाद की राजनीति में बड़ी शांति से दिखती है।
0: क्यों सारथी, तुम्हें शांति से कोई कष्ट है क्या?
2: भला मुझे क्यों कष्ट होगा, मुझे तो प्रसन्नता है।
0: नियति को देखो सारथी, जिस देवी भुवन मोहिनी को साम्राज्ञी चंद्रहासिनी क्षण भर को भी सहन नहीं कर पाती थी, वही भुवन मोहिनी अब आराम से सम्राट द्वारा प्रदत्त एक महल में निवास करने लगी है, सम्राट की आज्ञा से।
2: यही नहीं, सम्राट को जब इच्छा होती है भुवन मोहिनी को बुलवा लेते हैं और वो दिन दिन भर पर्णकुटी में रहती है, संगीत से सम्राट का मनोरंजन करती है, उनके साथ ही भोजन करती है। अरण्यक, क्या इसका पता साम्राज्ञी और राजमाता को नहीं होगा?
0: क्यों नहीं होगा सारथी, अवश्य होगा, पर वो कर ही क्या सकते हैं। हमें तो बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे मित्र प्रसन्न है। सच पूछो तो सारथी, देवी भुवन मोहिनी का सम्राट के प्रति प्रेम बहुत ही पवित्र है और बहुत ही उदात।
2: तुम ठीक कहते हो अरण्यक।
0: मुझे तो अनुभव हो रहा है कि उनके इस पवित्र प्रेम की सुगंध पूरे वातावरण को और भी सुगंधित बना रही है।
2: परंतु अरण्यक, बहुत दिनों से देवी भुवन मोहिनी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है।
0: मुझे ज्ञात है सारथी, कई वैद्य चिकित्सक भुवन मोहिनी को देख चुके हैं, परंतु वो समझ नहीं पाए कि उन्हें रोग कौन सा है। और वर्तमान में मित्र की एकमात्र चिंता का विषय भी यही है। चलता हूं सारथी, मित्र के पास पहुंचने का समय हो गया है।
2: अवश्य रण्यक।
0: कक्ष के अंदर आ सकता हूं मित्र?
3: अरण्यक, क्या तुम भुवन मोहिनी के आवास गए थे?
0: अब आपके आदेश को न मानूं ऐसा कभी हुआ है?
3: कैसी है वो?
0: मित्र, उनकी स्थिति बहुत ही बुरी है, वो लगातार औषधियों की अवहेलना कर रही है। वैद्य के बहुत बाध्य करने पर ही वो कोई औषधि लेती है, परंतु वास्तविक समस्या ये है कि।
3: क्या समस्या है?
0: भुवन मोहिनी किसी से कुछ बोलती ही नहीं, ना तो किसी से बातें करती हैं, ना यही बताती हैं कि उन्होंने औषधि ली या नहीं। मित्र, ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्युशैया में पड़ी भुवन मोहिनी मानो मृत्यु को स्वयं आमंत्रित कर रही।
3: नहीं अरण्यक, वो ऐसा नहीं कर सकती। क्या उसे ज्ञात नहीं कि मेरे जीवन में उसके ना रहने का क्या अर्थ होगा? माना कि भुवन मोहिनी के बिना मैंने दिन महीने और वर्ष बिताए हैं, परंतु इस आशा में कि एक दिन वो आएगी। परंतु यदि वो।
0: मित्र, देवी भुवन मोहिनी की अस्वस्थता सर्वसाधारण की चर्चा का विषय बन चुकी है। नर्तकी के गृह में जन्म लेने के बाद भी वो अपनी सेवाओं के लिए इतनी राष्ट्रव्यापी ख्याति अर्जित कर चुकी हैं कि अधिकांश जनता उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना कर रही है। जनता की शुभकामनाएं अपना प्रभाव अवश्य दिखलाएंगी। मित्र,
3: हम भी उसे मरने नहीं देंगे। अरण्यक, मैंने आदेश दिया था कि कोई ना कोई सुयोग्य चिकित्सक सदैव उसके पास रहे। आदेश का पालन हो रहा है ना?
0: अक्षरशः पालन हो रहा है मित्र, चिकित्सक सदैव उनके पास रहते हैं। मित्र, एक रहस्यमयी नारी भी उनके आसपास दिखाई देती है।
3: रहस्यमयी नारी? कौन है वो? क्या कोई चिकित्सक है या परिचारिका या वो दासी है?
0: इनमें से कोई नहीं है मित्र।
3: कोई नहीं है?

0: बात हमें आज तक बताई क्यों नहीं गई? ना ही किसी चिकित्सक ने और ना ही किसी गुप्तचर ने और ना ही दास दासी ने।
1: क्योंकि साम्राज्ञी का ऐसा ही आदेश था।
0: साम्राज्ञी का आदेश? क्या सरोकार था साम्राज्ञी को भुवन मोहिनी की अस्वस्थता से?
1: मित्र, गुप्तचरों से ज्ञात हुआ है कि साम्राज्ञी भुवन मोहिनी के प्रति कृतज्ञता को प्रकट कर आपको प्रसन्न करना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने इंद्रप्रस्थ से एक कुशल महिला चिकित्सक को बुलाया है।
0: तो राज्य कार्यालय से पता करो कि क्या इंद्रप्रस्थ से किसी महिला चिकित्सक को बुलाया गया है।
1: मैंने पता लगा लिया है, ऐसी किसी महिला चिकित्सक को इंद्रप्रस्थ से नहीं बुलाया गया है।
0: तो वो कौन है?
1: साम्राज्ञी के शैशव काल की सखी और संबंध में ममेरी बहन।
0: प्रमुख चिकित्सक को अविलंब उपस्थित कराओ।
1: जो आज्ञा मित्र।
0: भुवन मोहिनी की सेवा में लगे प्रमुख चिकित्सक आप हैं?
2: जी हाँ सम्राट।
0: प्रमुख चिकित्सक का क्या दायित्व होता है?
2: रोगी की चिकित्सा और पूरी देखरेख स्वामी।
0: क्या मैं जान सकता हूं कि भुवन मोहिनी ठीक क्यों नहीं हो रही?
2: यही तो समझ में नहीं आ रहा सम्राट। एक से बढ़कर एक औषधियां हम उन्हें दे रहे हैं, परंतु किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
0: आप अपने सामने उन्हें औषधियां खिलाते हैं?
2: जी नहीं।
0: क्यों?
2: इसलिए कि रोगिणी औषधियां लेने में अनिच्छुक दिखती हैं, तो इंद्रप्रस्थ से आई चिकित्सक को, जो सदैव उसके पास ही रहती है, आवश्यक निर्देश दे दिया करता हूं।
0: उसका क्या नाम है?
2: नाम तो उसका नहीं मालूम देव।
0: नाम नहीं मालूम? उसे आपने नियुक्त किया है?
2: नहीं देव।
0: तो फिर किसने नियुक्त किया है उसे? उत्तर दो मुझे।
2: साम्राज्ञी ने।
0: साम्राज्ञी ने? उसके चिकित्सक होने का प्रमाण पत्र देखा आपने?
2: नहीं देव।
0: तो फिर वो चिकित्सक नहीं है?
2: नहीं है।
0: उसकी चिकित्सा नहीं, उसे विष दिया जा रहा है।
2: विष?
0: हाँ विष। एक बात ध्यान रखो चिकित्सक, यदि भुवन मोहिनी के जीवन के साथ कोई अप्रिय घटना हो गई तो तुम भी जीवित नहीं बचोगे। अब तुम्हें क्या करना होगा तुम निर्णय करो। जाओ यहां से।
3: अरण्यक।
1: बोलिए मित्र।
3: ध्यान से सुनो, अपरिचित महिला चिकित्सक का भुवन मोहिनी के पास रहना भय से रिक्त नहीं। तुम स्त्री वेश में भुवन मोहिनी के समीप रहो, प्रत्येक क्षण देखते रहो कि वो रहस्यमय स्त्री क्या क्या करती है। यदि वो अपनी ओर से कुछ।
1: मैं सब समझ गया मित्र, आगे और बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे आज्ञा दें।

0: मैं स्त्री वेश धारण करके देवी भुवन मोहिनी के आवास में आ गया हूं। कहां है भुवन मोहिनी? ओ, वो वहां एक पलंग पर लेटी हूं। उनके पास लगता है वही अपरिचित महिला चिकित्सक है। क्या करूं, चलता हूं वहीं, देखता हूं क्या होता है।
1: नमस्ते।
2: नमस्ते, तुम कौन हो?
1: कमला।
2: कमला, तुम नई आई हो क्या?
1: लो और सुनो, स्वयं नई हो तुम, हमें नई कहती हो। हम तो जब इतने छोटे थे तब से हैं इस महल में। तुम अपना नाम बताओ।
2: मेरा नाम? मेरा नाम कुमारी विमला है।
1: तुम भी कुमारी? मैं भी कुमारा। मतलब ये कि मैं भी कुमारी। मेरा नाम कमला, तुम्हारा नाम विमला। अच्छा है ना, लगता है जैसे जुड़वा बहने हो।
2: अच्छा अच्छा ठीक है, देखो कमला।

0: मैं कई दिनों से साम्राज्ञी से नहीं मिल पाई हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। तुम यहीं रहना और कोई भी वैद्य चिकित्सक आए
1: जो दवाएं कहेंगे मैं दे दूंगी।
0: वो नहीं देनी है।
1: वो नहीं देनी है?
0: अरे तुम कहाँ से आ गई? देखो, यहाँ के सभी दासियों को अच्छी तरह ज्ञात है कि जो दवा मैं चाहूंगी वही भुवन मोहिनी को दी जाएगी, यहाँ के वैद्य चिकित्सकों की नहीं।
1: अच्छा, तो क्या तुम भी चिकित्सक हो?
0: हाँ, इसीलिए तो।
1: तो फिर ठीक है, जो तुम कहोगी वही दवा देंगे। लेकिन ये
2: ठीक क्यों नहीं हो रही है तुम्हारी दवा से?
0: हाँ,
1: लेकिन ये ठीक क्यों नहीं हो रही है तुम्हारी दवा से?
0: असाध्य रोग है, फिर भी ठीक हो जाएगी, समय लगेगा। अच्छा सुनो, संध्या को आऊंगी और रात में भी रहूंगी, तब तुम चली जाना।
1: ठीक है।
0: तो समझ गई ना?
2: हाँ।
0: ये यहाँ मेरी दवाई रखी है, हर घंटे तुम्हें खिलाना है, पर ध्यान रहे किसी वैद्य के सामने मत खिलाना और उसे ये बताना भी नहीं, वरना समझती हो ना क्या होगा?
1: क्या होगा?
0: तेरी खाल उतर जाएगी।
1: उतर जाएगी? कौन उतारेगा?
0: साम्राज्ञी।
1: क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे खाल नहीं उतरवानी, मैं मात्र तुम्हारी ही औषधियां उनको दूंगी, वैद्य चिकित्सकों की नहीं, तुम निश्चिंत रहो।
0: मैं जाती हूँ।
2: जाओ कहीं।

0: अब मैं भुवन मोहिनी को बता दूं कि वास्तव में मैं हूं कौन।
1: ओह, कितनी सूख गई देवी। देवी आंखें खोलिए। देवी भुवन मोहिनी, भुवन मोहिनी देवी।
2: कौन?
0: मैं अरण्यक हूं। मैं
2: अरण्यक?
0: हाँ, अरण्यक ही हूं मैं। आपको षड्यंत्र से बचाने के लिए आया हूं। सम्राट ने भेजा है, आप निश्चिंत रहिएगा। और सुनिए, इस वेश में मेरा नाम कमला है, कमला। जब आप पुकारें कमला कहकर ही पुकारें।
2: ठीक है अरण्यक। सम्राट कैसे हैं?
0: बहुत चिंतित हैं देवी, परंतु अब उनकी भी चिंता समाप्त हो जाएगी। मैं आ गया हूं ना, लीजिए वैद्यों की दी गई दवा खा लीजिए।
2: हाँ, दो।
0: वास्तविक औषधियों के सेवन से आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। और हाँ, वो चुड़ैल कोई भी दवा दे तो बिल्कुल मत खाइएगा।
2: उसका नाम विमला है अरण्यक।
0: आप जानती हैं उसको?
2: हाँ, राजकुमारी की ममेरी बहन है। परंतु यहाँ क्यों बुलाया गया उसे नहीं जानती।
0: आपको मारने के लिए, इससे अधिक मत पूछिएगा, ठीक है ना?
2: हाँ ठीक है। अरण्यक, देव से कहिएगा हमारी चिंता ना करें।
0: अरे अब किस बात की चिंता, अब सब ठीक हो जाएगा। तनिक ठहरिएगा देवी, मैं बाहर बैठी मोटी मोटी दासियों को रवाना तो कराऊं।
2: अरण्यक, किस षड्यंत्र की बात कर रहे थे? कौन मारना चाहता है मुझे? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? हे प्रभु, यदि अनजाने ही किसी का कुछ बुरा हुआ हो मेरे हाथों तो क्षमा करना प्रभु।
0: सब कहने लगी कि तुम कौन हो, कहां से आई। मैंने कहा कि साम्राज्ञी की ननिहाल से, साहब की सब भाग गई।
2: अरण्यक, इस विमला के हाथों मैंने मात्र एक बार औषधि ग्रहण की थी।
0: अच्छा?
2: और परिणाम ये हुआ कि 3 दिनों तक अचेत रही। इसीलिए मैं कोई भी औषधि ले ही नहीं रही थी अरण्यक। इन दासियों को बड़े बड़े उपहार देकर उसने सबको अपने वश में कर लिया था। अरण्यक, आप ना आते तो

0: जीवन का अंत ही दिख रहा था मुझे। अरण्यक, एक काम करेंगे?
1: बोलिए देवी।
0: वो दवाएं जो विमला मुझे देती थी उस संदूक में रखी हैं। आप उन दवाओं को आज ही सम्राट के पास भिजवाकर उनकी जांच करवाइए।
1: ये आदेश तो पहले ही सम्राट मुझे दे चुके हैं, मैं अभी लेके जाता हूं।
2: सम्राट की जय हो।
3: आइए चिकित्सक महोदय, आपने उस रहस्यमयी महिला द्वारा दी गई औषधियों की जांच पूरी की?
2: हाँ सम्राट, और ये प्रमाणित हो चुका है कि वो औषधियां नहीं वरन
3: वरन
2: बहुत ही तीक्ष्ण विष थे सम्राट।

0: वो चिकित्सिका इस समय कहाँ होगी?
1: साम्राज्ञी से भेंट करने उनके महल गई हैं।
0: हमें तुरंत महल जाना है, रथ तैयार करो।

0: अरण्य के इस महल में हमारे प्रवेश को गुप्त रखा जाए।
1: जो आज्ञा मित्र।
2: प्रणाम सम्राट।
1: चुप रहो, कोई अभिवादन नहीं।
0: ये कौन थी?
1: ये संरक्षिका थी इस महल की।
0: अरे सुनो, तुम सभी दासियां यहाँ क्या कर रही हो?
2: साम्राज्ञी की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं सम्राट।
0: और साम्राज्ञी कहाँ है?
2: विश्राम निकेतन में।
0: उनके साथ और कौन है?
2: उनकी ममेरी बहन कुमारी विमला।
0: ओह, वो दोनों वहाँ क्या कर रही होंगी?
2: हम लोगों को ज्ञात नहीं है देव। हाँ, सुनने में आया है कि सुयोग्य चिकित्सिका होने के कारण साम्राज्ञी ने उन्हें इंद्रप्रस्थ से बुलाया है भुवन मोहिनी की चिकित्सा के लिए।
0: आवर्ण्यक।
1: जी।
2: आज साम्राज्ञी के अब शकुनों की भयानक घड़ी उपस्थित है।
0: ठहरो आवर्ण्यक, कुछ ध्वनियां सुनाई दे रही हैं।
1: हाँ हाँ।
3: मैं केवल एक बार ही अपनी दवा दे सकी, इसके पश्चात उसने कोई दवा ग्रहण ही नहीं की। इन दिनों में वो केवल एक ही बार मुझसे बोली भी।
4: अच्छा, क्या कहा उसने?
3: और क्या कहती, दवा देते समय बोली, मैं कोई दवा ग्रहण नहीं करूंगी, मैं अब जीना नहीं चाहती।
4: वो अब जीना नहीं चाहती? तो ये लो।
3: ये क्या है?
4: जिस पात्र में वो दवाओं का सेवन करती हो, उसमें इस औषधि को मात्र स्पर्श करा देना।
3: अच्छा,
4: ध्यान रहे, मात्र स्पर्श हो, इतना ही पर्याप्त होगा उसके मरने के लिए।
3: इतना शक्तिशाली विष। लाओ, इसे मैं अपने वक्षस्थल में छिपा लेती हूँ।
4: विमला बहन, जब भुवन मोहिनी हमारे पितृग्रह में रहती थी, तब वो मुझसे अधिक तुमको चाहती थी और तुम पर पूर्ण विश्वास करती थी। यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया था।
3: यहाँ भी उसी विश्वास के साथ मिली थी, किंतु पहली दवाई के बाद संभवतः या तो वो मुझ पर संदेह करने लगी या सचमुच दवा सेवन नहीं करना चाहती, या हो सकता है सचमुच ही उसमें जीने की लालसा न बची हो। हाँ, ये जो कमला नाम की नई सेविका आई है, इसे भुवन मोहिनी की दास दासियां तक नहीं जानती, परंतु भुवन मोहिनी का उस पर विश्वास कुछ अधिक ही है।
4: अच्छा, लो ये मूल्यवान हार उसे पहना देना, वो भी तुम्हारे वश में हो जाएगी।
3: ये तो बड़ा मूल्यवान लगता है, पहनकर दर्पण में देखूं तो।

0: मैं ही क्यों ना धारण करूं बहन।
1: छी लोभिनी, अरे तुझे मैं ऐसे न जाने कितने हार दूंगी। पहले काम करके तो दिखा, ये हार उसी कमला को देना। संभवतः सम्राट ने उसे विशेष रूप से बुलवाया हो भुवन मोहिनी की देखरेख के लिए।
0: अच्छा ठीक है,
1: ये दूसरा ले, इसे तू अपने लिए रख।
0: ओ मेरी प्यारी बहन,
1: ये उससे अधिक हीरे माणिक वाला है।
0: अच्छा अब मैं जाती हूँ, मेरे पास अधिक समय नहीं है, न जाने पल में क्या हो जाए।
1: ठहर तनिक, मैं किसी दासी के साथ तुझे भिजवाती हूँ। कोई है यहाँ? कहाँ गई सबकी सब?
2: सबकी सब एक स्थान पर इकट्ठी कर दी गई हैं सम्राज्ञी।
1: सम्राट,

0: साम्राज्ञी को अधिक कष्ट न उठाना पड़ेगा। मैं स्वयं कुमारी विमला को पहुंचाने के लिए उपस्थित हूँ। नीच स्त्री, कहाँ गई वो चिकित्सिका?
1: वो उधर छुप रही है स्वामी।

0: ठहर चांडालनी, निकाल वो विष के शीशे, कहाँ छुपा रखी है, निकाल कुलटा।
1: निकालती हूँ, ये रही सम्राट।
0: अरे नक, इससे दोनों हार भी छीन लो,
2: चल निकाल। दोनों हार कहाँ है?
1: ये है सम्राट।
0: अब इन दोनों की गत मैं बनाता हूँ, चलो दोनों।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक भुवन मोहिनी का 11वां भाग। यह आकाशवाणी भोपाल है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।

नमस्कार, मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम की 5 बजने को है मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व की विविध संस्कृतियों के सम्मान पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषित साझा करते हुए कहा कि विश्व की विविध संस्कृतियों का सम्मान करने से लोगों के बीच विश्वास और सहयोग की भावना बढ़ती है। उन्होंने कहा कि इससे आपसी समझ और भाईचारे को बढ़ावा भी मिलता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महान संत समाज सुधारक कबीरदास की जयंती पर उन्हें नमन किया। डॉ. यादव ने कहा कि संत कबीरदास जी ने सामाजिक कुरीतियों, आडंबर, अंधविश्वास के विरुद्ध जन जागृति की। उनकी अमर कृतियां अनंत काल तक समाज को लोक कल्याण की दिशा देती रहेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितता की अदालत की निगरानी में जांच और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग करने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। और मौसम विभाग ने आज उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुना, मंडला और बालाघाट में 4 इंच तथा उससे अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा वाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

हेलो नमस्कार और गुड इवनिंग दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी को और मैं हूं आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त दिपेश बर्डे और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाओं के दिलों की वाणी यानी युववाणी। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे विशेष दिवस की जो पृथ्वी के उस हिस्से को समर्पित है जहां प्रकृति की सबसे अद्भुत विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि और विकास की अपार संभावनाएं मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स की, जिसे हर वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। दोस्तों सबसे पहले यह जान लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिक्स आखिर होते क्या है। तो दोस्तों पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है और यहाँ पूरे वर्ष अपेक्षाकृत अधिक तापमान तथा अच्छी मात्रा में सूर्य प्रकाश मिलता है और भारत का अधिकांश भाग भी इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। दोस्तों जानेंगे इस दिवस के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां, मगर उससे पहले आपको सुनवाते हैं आज की शाम का पहला गीत फिल्म जन्नत 2 से।

दोस्तों अभी आपने सुना जावेद अली की आवाज में यह गीत। दोस्तों इस दिवस को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2016 में की गई थी। इसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महत्व, उनकी चुनौतियों और संभावनाओं के प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना है। दोस्तों यदि हम प्राकृतिक संपदा की बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी की जैव विविधता का खजाना है। दुनिया के लगभग 80% से अधिक पौधे और पशुओं की प्रजातियां सीधे रूप से इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। विश्व के ज्यादातर वर्षा वन, मैंग्रोव वन, प्रवाल भित्तियां और अनेक दुर्लभ जीव जंतु यही पाए जाते हैं। दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन न केवल वन्य जीवों का घर है बल्कि वे पृथ्वी के ग्रीन लंग्स भी कहे जाते हैं। यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड

ऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का महत्व केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है। विश्व की लगभग 40% से अधिक आबादी इन्हीं क्षेत्रों में निवास करती है। यहाँ अनेक भाषाएं, संस्कृतियाँ, परंपराएं और जीवन शैलियाँ देखने को मिलती है। भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और कई अन्य देश इस क्षेत्र का हिस्सा है। दोस्तों, इन क्षेत्रों में कृषि भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाय, कॉफी, गन्ना, केला, नारियल, मसाले और चावल जैसी अनेक फसलें उष्णकटिबंधीय जलवायु में ही बेहतर ढंग से विकसित होती है। भारत के किसानों की आजीविका भी काफ़ी हद तक इसी जलवायु पर निर्भर करती है। दोस्तों, लेकिन जहाँ संभावनाएँ हैं वहीं चुनौतियाँ भी कम नहीं है। जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर ही देखने को मिल रहा है। बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, चक्रवातों की बढ़ती तीव्रता, बाढ़ और सूखे जैसी घटनाएं लोगों के जीवन और आजीविका को प्रभावित कर रही है। वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी चिंता का विषय है। यदि हम समय रहते उन चुनौतियों का समाधान न करें तो जैव विविधता और पर्यावरण दोनों को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। दोस्तों, भारत जैसे देश के लिए यह दिवस विशेष महत्व रखता है। हमारे यहाँ पश्चिमी घाट, सुंदरबन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर भारत जैसे क्षेत्र जैव विविधता के दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध है। इन क्षेत्रों का संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं, तो उत्तर बहुत ही सरल है। दोस्तों, पेड़ लगाएं और उनका संरक्षण करें, जल और ऊर्जा की बचत करें, प्लास्टिक के उपयोग को कम करें, स्थानीय और पर्यावरणीय अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा दें, प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएं। दोस्तों, ये छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और मानव जीवन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। यदि हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की रक्षा करेंगे तो हम पृथ्वी के भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों, प्रकृति के साथ संतुलित जीवन शैली ही हमारे सुरक्षित और बेहतर भविष्य का आधार है। चलिए दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं आज की शाम का अगला गीत फिल्म लूडो से।

दोस्तों अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में यह गीत। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो आज हम सभी के जीवन का जरूरी हिस्सा बन चुका है, डिजिटल पेमेंट और साइबर सुरक्षा। दोस्तों कुछ वर्ष पहले तक अधिकांश लेन देन नगद राशि के माध्यम से किया जाता था, लेकिन आज तकनीक के विकास और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच ने हमारे भुगतान करने के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। दोस्तों अब किराने की दुकान से सामान खरीदना हो, बिजली का बिल जमा करना हो, मोबाइल रिचार्ज कराना हो, रेल टिकट बुक करना हो या किसी मित्र अथवा परिजन को पैसे भेजने हो, यह सब कुछ सेकंड में हो जाता है। दोस्तों इसी बदलाव को हम डिजिटल पेमेंट के नाम से जानते हैं। डिजिटल पेमेंट का अर्थ है बिना नगद राशि के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान करना। आज मोबाइल फोन के जरिए QR कोड स्कैन करके भुगतान करना आम बात हो गई है। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और विभिन्न डिजिटल भुगतान मंचों का उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों भारत आज दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां डिजिटल लेन देन सबसे तेजी से बढ़ रहा है। गांवों से लेकर महानगरों तक, छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों तक, हर कोई डिजिटल भुगतान को अपना रहा है। दोस्तों डिजिटल पेमेंट के अनेक लाभ है। सबसे पहला है सुविधा, अब हमें बड़ी मात्रा में नकदी साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा लाभ है समय की बचत, बैंक की लंबी कतारों में खड़े रहने के बजाय हम घर बैठे ही भुगतान कर सकते हैं। तीसरा लाभ है पारदर्शिता, प्रत्येक लेन देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों का हिसाब रखना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त डिजिटल भुगतान से नकदी के प्रबंधन की लागत भी कम हो जाती है और अर्थव्यवस्था को अधिक संगठित बनाने में सहायता मिलती है। चलिए दोस्तों वक्त हो चला है आपको आज की शाम का अगला गीत सुनवाने का, फिल्म एजेंट विनोद से।

लेकिन दोस्तों हर तकनीक के साथ कुछ चुनौतियां भी आती है। डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधों में भी वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में साइबर सुरक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों साइबर सुरक्षा का अर्थ है इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों पर हमारी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन को सुरक्षित बनाए रखना। आज साइबर ठग लोगों को धोखा देने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। कभी वह बैंक अधिकारी बनकर फोन करते हैं, कभी लॉटरी या पुरस्कार जीतने का लालच देते हैं, तो कभी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने के लिए कहते हैं। दोस्तों कई बार लोगों को ऐसा संदेश भेजा जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपका बैंक खाता बंद होने वाला है या आपका KYC अपडेट नहीं है। घबराकर लोग दिए गए लिंक पर क्लिक कर देते हैं और अपनी गोपनीय जानकारी साझा कर बैठते हैं। और दोस्तों कुछ मामलों में ठग OTP, ATM पिन, CVV नंबर या UPI पिन पूछकर लोगों के खातों से पैसे निकाल लेते हैं। दोस्तों यह याद रखना बहुत आवश्यक है कि कोई भी बैंक, सरकारी संस्था या अधिकृत एजेंसी कभी भी फोन, संदेश या ईमेल के माध्यम से आपका OTP, पासवर्ड, ATM पिन या UPI पिन नहीं मांगती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी मांगता है तो यह धोखाधड़ी का संकेत हो सकता है, या मीम की भाषा में कहे तो यह एक रॉन्ग नंबर है। दोस्तों साइबर अपराधों से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां अपनाना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले अपने OTP, पासवर्ड, UPI पिन को पूरी तरह गोपनीय रखें। दूसरा, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक ना करें। तीसरा, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और समय समय पर उसे बदलते रहें। चौथा, सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर वित्तीय लेनदेन करने से बचें। और दोस्तों यदि कभी किसी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी हो जाए तो तुरंत अपने बैंक को सूचित करें और साइबर अपराध हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें। दोस्तों आज भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पेमेंट ने न केवल हमारे जीवन को आसान बना दिया है बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति प्रदान की है। लेकिन इस सुविधा का लाभ तभी सुरक्षित रूप से उठाया जा सकता है जब हम साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहे। दोस्तों तकनीक हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम इसका उपयोग समझदारी और सतर्कता के साथ करें। चलिए दोस्तों अब आपको सुनाते हैं आज की शाम का ये अगला गीत।

दोस्तों अब वक्त हो चला है आज की रोजगार सूचना का। दोस्तों दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB द्वारा जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 जून से प्रारंभ हो चुकी है जो 15 जुलाई तक किए जा सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी DSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आपको सुनाते हैं आज की शाम का ये आखिरी गीत।

चलिए दोस्तों, वक्त हो चला है आपको अलविदा कहने का। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
0: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
0: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं सुल्तान फिल्म का गीत, राहत फतेह अली खान की आवाज़ में, इरशाद कामिल के बोल हैं और विशाल शेखर का संगीत।

सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाज़ में आइए सुनते हैं दबंग फिल्म का गीत। इरफान कामिल की बोल है और संगीत से सजाया है साजिद वाजिद ने।

आपके रेडियो सेट पर आप सुन रहे हैं फिल्म पीके का ये खूबसूरत गीत शान और श्रेय घोषाल की आवाज़ में। स्वानंद किरकिरे ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है शांतनु मोइत्रा ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भारत की संस्कृति

0: प्रकृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

İş yer dikha, pokran dikha. Miss World dikhi, World Cup dikha. Chandrayaan dikha, insect dikha. Nayi kahaniyon ne naya Bharat likha. कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल

0: कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को पुरस्कार प्रदान किए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो फर्जी और एआई से निर्मित है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में नीमच में आयोजित कार्यक्रम में 2080 करोड़ रुपए लागत के 500 मेगावाट नीमच और 450 मेगावाट शाजापुर सोलर पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 1553 करोड़ 98 लाख रुपए लागत के उद्योगों और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को सौगात दी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पहले, दूसरे और तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करके देश की स्वास्थ्य प्रणाली को काफी मजबूत किया है। श्री नड्डा ने कहा कि नागरिकों और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संपर्क के पहले बिंदु के रूप में 186,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं और भोपाल के मानस भवन में कल शाम 5 बजे काव्य पाठ और महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें भोपाल के कवि हरिवल्लभ, धूमकेतु मदन मोहन समर और उज्जैन के अशोक भाटी प्रस्तुति देंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
3: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
2: जी।
3: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
2: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
2: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
3: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
2: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
3: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाज

0: साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा।
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी। इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ। अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े बखत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फल कंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ। हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो।
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं
0: है?
1: कोई बहाना बना देंगे। ठीक,
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
0: नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़।
2: अब
1: तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
2: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा।
1: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है, मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: उसने कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
1: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
2: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
1: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
0: चुप्पा चुप्पा।
2: सोचा सोचा बेटे सोचा, डर मत, अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ। सोचा बेटे सोचा सोचा, शाबाश राजा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
0: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
2: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, पुतवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल, चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ के हाथों से काटोगे।
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: अरे मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस। साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी। अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी

0: नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
1: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है? इसका भी नीम वाला हाल है। बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
2: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो
1: चलो
0: चलो, हाँ आगे चलकर देखते हैं। अब
1: ये
0: चलो
1: देखो ये पेड़।
0: देख लो।
2: अम्मा अम्मा वो देखो, ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है।
0: हाँ।
2: चलो अम्मा काटे।
0: चलो
2: चलो
0: इधर से निकल कर आओ। हाँ।
2: अच्छा
1: ध्यान से बेटा।
2: आई
0: हाँ,
2: क्या हुआ चुप्पा?
1: क्या हुआ क्या हुआ?
2: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया। आई
0: अरे दिखा दो।
2: अम्मा लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
1: ठीक है नहीं काटेंगे।
2: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे, है ना।
1: हाँ बेटा, ये देखो ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और ताड़, ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा।
0: नुकसान भी क्या है।
1: बहुत नुकसान है। हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
3: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो।
0: ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल।
1: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
2: क्यों, देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
0: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है। उसे तो काटो कम से कम।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
1: हाँ।
2: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा।
1: हाँ बिल्कुल।
0: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बुधवा रहने दे इसको भी।
1: अच्छा।
0: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है। तू रहने दे इस पेड़ को तो।
1: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
2: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
0: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
1: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया है? अब किसे काटे।
0: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
1: और क्या।
0: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
1: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
2: ओ जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
0: अरे चुप।
1: क्या हुआ?
0: अरे चुप्पा। हाँ पेड़ अब नहीं कटेगा, तो यही बात थी ना। तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है
1: तू समझ
2: लेकिन
1: गई
2: अम्मा, तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है। अब तू ही बता किसे काटे।
1: बता?
0: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी।
1: होंगी होंगी जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
0: फिर कैसे।
1: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
0: चल। बता।
1: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुले आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली फल सब्जी।

0: महुआ कटहल बेचेंगे, हाँ पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
1: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
0: बोलना।
2: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का, चल।
0: सच्ची?

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की

0: परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
1: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
0: किसी ने कहा,
2: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
0: किसी ने कहा,
3: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
0: किसी ने कहा,
4: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
0: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
5: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
0: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
1: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
6: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आप

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, शैलेंद्र की बोल है और संगीत शंकर जयकिशन का।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म कश्मीर की कली से। मोहम्मद रफ़ी की खूबसूरत आवाज़, एस एच बिहारी की बोल और तर्ज बनाई है ओपी नैयर ने।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आजकल।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है डिजिटल इंडिया। आलेख अमित कुमार सेन, वाचन स्वर राणा शाहिद।

भारत दुनिया का वो देश है जो तेजी से प्रगति कर रहा है और इस प्रगति में उसकी पहचान बन रहा है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। इस योजना ने अपने उद्देश्यों को काफी हद तक पूरा किया है। डिजिटल इंडिया जब शुरू हुई तो उसके 3 मुख्य स्तंभ रखे गए। पहला है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा डिजिटल साक्षरता और तीसरा है डिजिटल सेवा वितरण। साल 2025 तक के डेटा की बात करें तो डिजिटल इंडिया के जरिए

0: इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की पहुंच में भारी इजाफा हुआ है। साल 2014 में इंटरनेट कनेक्शन जहां 25.15 करोड़ थे, तो वहीं साल 2024 में 96.96 करोड़ यानी लगभग 85% की वृद्धि दर्ज की गई। साल 2015 में ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शंस जहां 9.9 करोड़ थे, जो कि बढ़कर 2025 में 94.4 करोड़ हो गए, इसमें लगभग 10 गुना वृद्धि देखी गई। इस तरह साल 2025 में कुल इंटरनेट यूजर्स 1.03 अरब थे, जो कि भारत की जनसंख्या का 70% है। भारत 5G विस्तार करने में विश्व में सबसे तेज देशों में शामिल है। अब हम डिजिटल भुगतान यानी UPI की बात करें, तो अप्रैल 2025 तक 1,867.7 करोड़ लेन देन किया गया, जिसका मूल्य 24.77 लाख करोड़ था। भारत विश्व में रियल टाइम ट्रांजैक्शन का 49% हिस्सा रखता है। भारत में डिजिटल पहचान और सेवाएं भी मौजूद हैं। इनमें मुख्य तौर पर आधार, डिजी लॉकर, उमंग और भारत नेट हैं। डिजिटल इंडिया ने फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस गवर्नेंस को बढ़ावा दिया। डेटा कीमतें बहुत कम हुई, जिसमें ग्रामीण भारत भी डिजिटल इंडिया से जुड़ा। साल 2026 में डिजिटल इंडिया के जरिए AI और सेमीकंडक्टर क्रांति आई है। भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 की शुरुआत की और नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट जैसे वैश्विक आयोजनों की मेजबानी की। स्वदेशी क्लाउड इकोसिस्टम मेघराज 2.0 का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है, जिसके तहत 2300 से अधिक सरकारी विभाग क्लाउड सेवाओं के माध्यम से जुड़े हैं। डिजी लॉकर से 67 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं को 967 करोड़ से ज्यादा डिजिटल दस्तावेज जारी किए जा चुके हैं। वहीं उमंग ऐप पर 2400 से अधिक सरकारी सेवाएं नागरिकों को घर बैठे मिल रही हैं। नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को सख्ती से लागू किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6.39 करोड़ से अधिक ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जा चुका है। UPI का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI की सफलता का एक प्रमुख उदाहरण है। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और उसकी अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के जरिए UPI को वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रयास तेजी से चल रहा है। साल 2023 से सिंगापुर पे नाउ UPI लिंकेज रियल टाइम P2P ट्रांसफर शुरू हुआ है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2029 तक डिजिटल इंडिया का विस्तार 20 से ज्यादा देशों तक किया जाए। दुनिया के कई देश भारत का UPI जैसा सिस्टम अपनाने के लिए भारत से सहयोग ले रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह आधुनिक भारत के निर्माण का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। इस तकनीक ने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। इस तरह डिजिटल इंडिया आज भारत सरकार की मुख्य और सफल योजना में शामिल है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल, विषय था डिजिटल इंडिया। आलेख श्री अमित कुमार सेन का और वाचन स्वर राणा शाहिद का। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है प्रादेशिक समाचार दर्शन का।

नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर एक रिपोर्ट, और इस बार का प्रादेशिक समाचार दर्शन केंद्रित है नशा मुक्त भारत अभियान पर, जो कि पूरे प्रदेश में 17 से 26 जून तक चलाया गया। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन, जिसकी पहली रिपोर्ट है रतलाम जिले से, जहां पर नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत पुलिस और प्रशासन दो तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। पहली कार्रवाई नशे के अवैध कारोबार पर कड़े प्रहार के रूप में है, तो दूसरी कार्रवाई

0: जन जागरूकता की है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी रतलाम संवाददाता अदिति मिश्रा।
1: नशे से दूरी है जरूरी। रतलाम जिले में नशा मुक्ति अभियान व्यापक स्तर पर संचालित हो रहा है। अभियान के तहत पुलिस और प्रशासन द्वारा दो तरफा कार्रवाई की जा रही है। रतलाम SP अमित कुमार के निर्देशन में रतलाम जिले में लगातार नशे का व्यापार करने वालों के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाइयां की जा रही हैं। हाल ही में रतलाम पुलिस ने MD स्मैक और अन्य ड्रग्स को पकड़कर भी बड़ी खेप हासिल की है। इसके साथ ही नशे का कारोबार करने वालों के अन्य ठिकानों पर भी लगातार पुलिस कार्रवाई हो रही है। दूसरी ओर कलेक्टर मीशा सिंह के नेतृत्व में पूरे जिले में नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान भी चल रहा है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ ही अन्य विभागों द्वारा स्कूल और कॉलेजों में जाकर भी युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। तीसरे स्तर पर रतलाम के मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति केंद्र का संचालन भी प्रारंभ किया जा चुका है। यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों के मार्गदर्शन में अलग अलग थेरेपी, जिसमें कि मेडिकल के साथ ही योगा और काउंसलिंग के जरिए युवाओं को नशे की लत से बाहर आने के लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है। रतलाम में चल रहे नशा मुक्ति अभियान में हर स्तर पर युवाओं को नशे से दूर रखने, इसके दुष्प्रभावों के बारे में बताने और किसी भी कारण गलत लत में पड़ चुके युवाओं को वापस सकुशल अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी पर्याप्त मदद दी जा रही है। समाचार दर्शन के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में हम रुख कर रहे हैं सीहोर जिले का, जहां जिला सामाजिक न्याय विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान को उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान।
2: सीहोर जिले में जिला सामाजिक न्याय विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा विरोधी सप्ताह मनाया गया। इस दौरान जिले भर में 17 जून से 26 जून तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता रैली एवं जन जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। इस बार जिले में इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान पर आधारित रही। जिले के विभिन्न स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों में नशा मुक्ति के विरुद्ध जन जागरण के लिए कई प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें चित्रकला, वाद विवाद, निबंध, प्रश्न पंच और अन्य प्रकार की प्रतियोगिताएं शामिल रही हैं। ग्राम पंचायतों में भी सामूहिक शपथ दिलवाई गई और नशे के विरुद्ध अलग जगाने के लिए कार्यक्रम आयोजित हुए। अंतिम दिन अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आवासीय स्कूल से जिला स्तरीय जन जागरूकता रैली प्रारंभ हुई और PM कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में इस रैली का समापन हुआ। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर युवाओं को नशे की लत से दूर कर स्वस्थ, सुरक्षित एवं सशक्त समाज का निर्माण करना है। नशे के विरुद्ध जन भागीदारी ही इस अभियान की सबसे बड़ी शक्ति है। इस अवसर पर अतिथियों ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर सभी को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया और सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित सप्ताह में विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं गतिविधियों, जिनमें मिनी मैराथन, नुक्कड़ नाटक, रंगोली, स्लोगन लेखन, निबंध लेखन, चित्रकला, हस्ताक्षर अभियान, सेल्फी पॉइंट सहित अनेक जन जागरूकता गतिविधियों के विजेताओं को इस समारोह में सम्मानित किया गया। रैली में ऑक्सफोर्ड स्कूल के बैंड द्वारा आकर्षक एवं प्रेरणादायी प्रस्तुति दी गई। इस बारे में जिला सामाजिक न्याय विभाग के सहायक संचालक महेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि
3: सीहोर जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 17 जून से 26 जून तक पूरे सप्ताह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नशा मुक्ति के विरुद्ध प्रभावी जन जागृति के लिए विभिन्न आयोजन उत्साह के वातावरण में किए गए हैं। इस बार जिले में इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान पर आधारित रही है। जिले के विभिन्न स्कूलों और शैक्षणिक संस्थाओं में नशा मुक्ति के विरुद्ध जन जागरण के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें चित्रकला, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध, प्रश्न मंच, नुक्कड़ नाटक और इस प्रकार के अनेक प्रतियोगिताएं शामिल रही हैं। ग्राम पंचायतों में भी सामूहिक शपथ दिलाई गई और नशा के विरुद्ध अलग जगाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। इस अवसर पर आवासीय स्कूल से नशे के विरुद्ध जन जागरण के लिए एक विशाल रैली निकाली गई है और इस रैली का समापन PG कॉलेज में किया गया है और जो एक सप्ताह में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं उसका पुरस्कार वितरण भी संपन्न हुआ है।
2: सीहोर जिले से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं प्रदीप सिंह चौहान।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में रायसेन में चलाए गए नशा मुक्त भारत अभियान पर जानकारी

0: हमारे रायसेन संवाददाता विनीत माहेश्वरी।
1: अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर रायसेन जिले में नशा मुक्त भारत अभियान का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय विभाग के सहयोग से अजंता ललित कला समाज कल्याण समिति द्वारा 17 जून 2026 से 26 जून 2026 तक ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत नशा मुक्ति प्रचार रथ ने गांवों का भ्रमण किया, जहां कलाकारों ने स्थानीय लोकगीतों के माध्यम से ग्रामीणों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। सलामतपुर के राजीव नगर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भारत सरकार के ASO सेलेन पायल ने मादक पदार्थों के वैश्विक खतरों के प्रति संचेत किया। वहीं सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक मनोज बाथम ने युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए समाज के हर वर्ग के आगे आने की अपील की। संस्था की अध्यक्ष इंदिरा शर्मा ने कफ सिरप की बिना पर्ची बिक्री पर रोक लगाने के सरकार के निर्णय की सराहना की। इस दौरान राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर वेद प्रकाश शर्मा ने उत्कर्ष नशा मुक्ति केंद्र में मिलने वाले निःशुल्क उपचार की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उपस्थित ग्रामीणों को नशा मुक्ति की सामूहिक शपथ भी दिलवाई। सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक मनोज बाथम ने बताया कि
2: नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत रायसेन जिले में सभी महाविद्यालयों में तथा विद्यालयों में युवाओं को जन जागृति कार्यक्रम के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया, साथ ही निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली इत्यादि नशा से आधारित श्रृंखला में प्रथम आने वाले सभी युवाओं को दिनांक 1 जुलाई को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं विनीत माहेश्वरी।
0: नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सतना जिले में जिला प्रशासन और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में कई जगह पर नुक्कड़ नाटक सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सतना संवाददाता लाल बहादुर तिवारी।
3: सतना जिले में जिला प्रशासन एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में जगह जगह नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक सहित अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयंसेवकों ने अपने सशक्त अभिनय एवं संवादों के माध्यम से समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का सराहनीय प्रयास किया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि उनके परिवार और पूरे समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। नशे के कारण पारिवारिक कलह, सामाजिक विघटन और सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसमें असमय मृत्यु तक हो सकती है। कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों को नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने तथा समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रेरित किया गया। उपस्थित नागरिकों ने नशा मुक्ति समाज के निर्माण में अपना सहयोग देने का भी संकल्प लिया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम रुख करते हैं हीरो के लिए विश्व प्रसिद्ध पन्ना जिले का, जहां पर युवाओं और आम नागरिकों को नशे की लत से बचाने तथा एक स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के निर्माण के उद्देश्य से नशा मुक्त सप्ताह चलाया गया। इस बारे में और जानकारी हमारे पन्ना संवाददाता दिलीप कुमार शर्मा से।
4: हीरो के लिए विश्व प्रसिद्ध पन्ना जिले में युवाओं और आम नागरिकों को नशे की लत से बचाने तथा एक स्वस्थ और समृद्ध समाज के निर्माण के उद्देश्य से 17 से 26 जून तक विशेष नशा मुक्ति सप्ताह अभियान चलाया गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते मादक पदार्थों के सेवन पर अंकुश लगाने और प्रभावी व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में वापस लाना इस अभियान का मुख्य एजेंडा रहा। इसमें प्रशासन, शासन और सामाजिक संस्थाओं के साझा प्रयासों से नशा मुक्त पन्ना, समृद्ध पन्ना का यह संकल्प अब पूरी दृढ़ता के साथ धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है। पन्ना कलेक्टर उषा परमार एवं पुलिस कप्तान निवेदिता नायडू के कुशल नेतृत्व में इस अभियान को गति मिली है। जिले की लक्षित ग्राम पंचायतों में जागरूकता बैठकों का दौर जारी है। स्कूल, कॉलेज और ग्रामीण चौपालों के माध्यम से युवा पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया जा रहा है। इस अभियान के तहत पन्ना जिले की आदर्श ग्राम पंचायत शाहनगर में छात्रों और आम नागरिकों को नशा मुक्त की सामूहिक शपथ दिलाई गई। बुंदेलखंड के पन्ना जिले में अवैध शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री पर कड़ा प्रहार करने के लिए प्रशासन द्वारा एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर नागरिक गुप्त सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं। उधर जिले की सामाजिक संस्था ब्रह्म कुमारी द्वारा 17 से 26 जून तक विशेष नशा मुक्ति सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसके तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अभियान का समापन पवई के प्रसिद्ध जगन्नाथ

0: नाथ स्वामी मंदिर प्रांगण में हुआ। इस वर्ष समापन कार्यक्रम की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान रखी गई थी। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी बहन बी के सीता ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए नशा छोड़ो जीवन से नाता जोड़ो का आत्मिक संदेश दिया।
1: नशा मुक्त सप्ताह के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा पन्ना जिले के अनेक गांवों में नशा मुक्त होने की प्रतिज्ञा कराई गई। जिला जेल में कैदियों को भी नशा मुक्त होने की प्रतिज्ञा दिलाई गई एवं मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया। पबई में 26 तारीख को नशा मुक्त सप्ताह का समापन किया गया एवं सभी से समाज को नशा मुक्त होने के लिए शपथ ली गई।
0: पन्ना जिले में यह नशा मुक्त अभियान अब केवल एक सरकारी औपचारिक कार्यक्रम न रहकर एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। समाज के हर वर्ग विशेषकर महिलाओं और युवाओं की सक्रियता एवं ऊर्जावान भागीदारी से जिले में सकारात्मक बदलाव की एक नई बयार बहने लगी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए पन्ना से मैं दिलीप कुमार शर्मा।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अंतिम रिपोर्ट है निवाड़ी जिले से, जहां कलेक्टर जमुना भिड़े के निर्देशन में नशा मुक्ति अभियान बीते 17 से 26 जून तक चलाया गया। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे निवाड़ी संवाददाता विवेक दांगी।
3: निवाड़ी जिले में नशा मुक्ति अभियान निवाड़ी कलेक्टर जमुना भिड़े के निर्देशन में किया गया। निवाड़ी कलेक्टर जमुना भिड़े ने सामाजिक न्याय विभाग के साथ ही स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य अधिकारियों को ये निर्देशित किया था कि आपको प्रत्येक कॉलेज स्कूल के छात्रों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जागरूक करना है, ताकि बच्चे नशे की बुरी लत से दूर हों। साथ ही निवाड़ी जिला जेल में भी सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से वहां नशा मुक्ति अभियान को लेकर के बंदियों को शपथ दिलाई गई। साथ ही नशे से शारीरिक क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में भी बताया गया। जिले के प्रत्येक स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं साथ ही गांव की जो टोलियां हों उनमें डॉक्टरों की टीम पहुँचे और उससे होने वाले शारीरिक नुकसान की जानकारी दे। ऐसी तमाम व्यवस्थाएँ बना करके निवाड़ी जिले में नशा मुक्ति अभियान निवाड़ी कलेक्टर जमुना भिड़े के निर्देशन में किया गया। समाचार दर्शन के लिए निवाड़ी से विवेक डांगी।
2: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन, जो इस बार केंद्रित था 17 से 26 जून तक चलाए गए नशा मुक्त भारत अभियान पर। प्रादेशिक समाचार दर्शन में फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे अन्य जिलों की समसामयिक गतिविधियों की रिपोर्ट को लेकर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षण, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों को भी मान्यता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशेल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशेल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनी कुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में उनके समावेशन को सुगम बनाएगा। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स CCI के प्रतिनिधि मंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठन को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी भी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन में 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन में 4.9% की वृद्धि हुई है थी। किदाम्बी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उप विजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सुलिंग ली यांग से हार का सामना करना पड़ा। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के शेष कार्यक्रम हम आपको बता दें। अब से कुछ ही पलों में यानी 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा, जिसे हम आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत करेंगे। रात्रि 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में 8:15 पर आनंदी जी का फिल्म संगीत का। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10:00 सुनेगा रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। और अब बारी है हमारे कल की सभा में।

में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल से सुबह 7:20 पर प्रस्तुत करेंगे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमय सवेरा आप सुन सकते हैं सुबह 8:30 पर। 9:15 पर पेश करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम जिसमें आप सुनेगा रश्मि ससोड़े के गाए गीत और भजन। 9:30 पर आप सुनेगा शब्द सागर कार्यक्रम में महेश अग्रवाल का काव्य पाठ, साथ ही होगी व्यंग वार्ता, विषय रहेगा नींद, वार्ताकार होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सक्सेना। 10:00 हर रोज की तरह आप सुनेंगे सुबह 10:00। फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर आप सुन पाएंगे 10:05 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुबह 10:30 पर आप सुनेगा साक्षी पंडोले का ख्याल गायन, राग होगा नट भैरव। 11:00 के प्रसारण में 11:00 हम प्रसारित करेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। दिन में 12:00 और 2:30 पर पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक भुवन मोहिनी का 12वां भाग हम प्रसारित करेंगे। 1:00 होगा महिला कार्यक्रम, 1:30 पर सुनेगा लोक संगीत का कार्यक्रम और 1:45 पर पेश करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र की प्रस्तुति होंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं दिन में 2:00 और शाम 5:33 पर। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। छह बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:30 पर ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच लंदन में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच के पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल हम आपको सुनवाएंगे जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, मध्य प्रदेश हरित ऊर्जा का पावर हाउस बन रहा है। नीमच और शाजापुर सोलर पार्क का किया उद्घाटन। राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव। यूसीसी समेत विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की दी जानकारी। और प्रदेश के 6 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, 40 जिलों में अभी मानसून का इंतजार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह बंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत सुरेंद्र पेंढारकर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों को मान्यता देने के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों को भी मान्यता देते हैं। केंद्रीय नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत दुनिया का दूसरा देश है जहां रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि रेलवे को यहां से बिजली मिल रही है। श्री जोशी नीमच में आयोजित ऊर्जा पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में सिंगल क्लिक के माध्यम से 2,080 करोड़ रुपए लागत के 500 मेगावाट नीमच और 450 मेगावाट शाजापुर सोलर पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 1,553 करोड़ 98 लाख रुपए लागत के उद्योगों और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। केंद्रीय मंत्री ने यहां कहा कि मध्यप्रदेश हरित ऊर्जा का पावर हाउस बन रहा है।
2: पावर सेक्टर में मध्य प्रदेश ग्रीन पावर का, हरित ऊर्जा का पावर हाउस बन रहा है। इसके लिए मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और मुख्यमंत्री जी को और मैं शुक्ला जी को भी बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं, क्योंकि ये हर महीने आके मुझे मिलते हैं। जो भी हमारा स्कीम है, मुख्यमंत्री नाम से मुझे बोलते हैं, ज्यादा दे दो, ज्यादा दे दो, ज्यादा दे दो। लेकिन प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश के ऊपर ज्यादा है, इसलिए हम कैबिनेट में अप्रूवल करके देते ही रहते हैं।
0: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सोलर पावर यूनिट स्थापित करने वाली कंपनियों के पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने यहां विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे सस्ती बिजली अब नीमच में मिलेगी।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही। इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। अगले 50 वर्ष में ये संबंध नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि से परिभाषित होंगे। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमाइनी सरकार और सेशल्स के लोगों को धन्यवाद दिया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल से लोकभवन पहुंचकर सौजन्य

ने भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्यपाल को मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने को लेकर 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त होने, यूसीसी को लेकर मिल रहे व्यापक जन समर्थन और इस संदर्भ में राज्य सरकार की आगामी कार्ययोजना से भी अवगत कराया। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान के सफल क्रियान्वयन, गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा में प्रस्तावित शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों, 4 कृषि उपजों को हाल ही में मिले GI टैग से संबंधित किसानों को मिलने वाले लाभ, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार, MSME और स्टार्टअप को प्रोत्साहन, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन से जुड़े विभिन्न प्रयासों और सरकार को मिली उपलब्धियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। छतरपुर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक आज जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार ने की। बैठक में प्रमुख रूप से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग, वेयर हाउसिंग और नागरिक आपूर्ति निगम से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। पन्ना जिले में एक बार फिर एक आदिवासी किसान परिवार की किस्मत बदली है। यहां अहिर गवां क्षेत्र के एक निजी भूमि पर संचालित खदान से इस परिवार को 11.19 कैरेट का बेशकीमती जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस परिवार को करीब 2 साल पहले भी 19.22 कैरेट का विशाल हीरा मिला था, जो नीलामी में 93 लाख रुपए में बिका था। हीरा कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि मजदूर राकेश गौड़ ने इसी साल अप्रैल में पट्टा बनवाकर अपने 3 भाइयों रिश्तेदारों के साथ मिलकर खदान लगाई थी। करीब 2 महीने पहले की कड़ी मेहनत के बाद सोमवार को उन्हें यह चमचमाता हीरा हाथ लगा, जिसे उन्होंने तुरंत सरकारी हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। अभी तक केवल 15 जिलों तक मानसून पहुंच पाया है, जबकि 40 जिलों में अब भी इसकी आमद नहीं हुई है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और कई अन्य जिलों में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुना, मंडला और बालाघाट में अगले 24 घंटों के दौरान 4 इंच या उससे अधिक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। सतना से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में शाम में तेज बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। खंडवा जिले में वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि गुड़ी रेंज के ग्राम आमा खुजरी में 105 हेक्टेयर वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई का जायजा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ग्राम गुर्जर बर्डिया में लगभग 333 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गुर्जर बर्डिया महादेव मंदिर मार्ग, आरोग्यम उप स्वास्थ्य केंद्र और राधा कृष्ण गौशाला का लोकार्पण किया। जनजातीय कार्य विभाग ने छात्रावास और आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। खंडवा जिले की 7 शासकीय ITI संस्थाओं में 1480 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। पर्यावरण और वनों के संरक्षण तथा हरित क्षेत्र के विस्तार हेतु धार वन मंडल के अंतर्गत वन मंडल स्तरीय रूट शूट वृक्षारोपण तकनीक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आगरमालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने आज आयोजित TL बैठक में वर्षा काल में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। मैहर में बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ऑपरेशन सेफ क्लिक अभियान के तहत जागरूकता रथ रवाना किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से लीजिए सुनिए कार्यक्रम ग्राम सभा।

भैया बहनों, खूब स्वागत है ग्राम सभा के आपके अपने फरमाइशी लोक गीतन के कार्यक्रम लोक रंग में। हमें तो जानते ही हो, जो नहीं भी जानत बता देवे, हमारा नाव है राधा चौरी। हम दो ही हाथ जोड़ के अपने सब भैया भौजियों को, काकी चाची हरों को, ककाजू हरों और बाकी के सभी श्रोताओं को प्यारी सी मुस्कान के संगे राम राम करते हैं। सो सब जने स्वीकार करवे। और आज आकाशवाणी भोपाल के आज के कार्यक्रम में चर्चा हुई है दो महत्वपूर्ण विषयन पे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जी के अंतर्गत पात्र किसानन हे 60 साल के बाद मानसिक पेंशन को लाभ दौ जात है। संग ही बात करें किसान सारथी प्लेटफॉर्म की, जिते किसान भैया बहने खेती किसानी से जुड़ी जानकारियां और विशेषज्ञों की सलाह आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा सुने बुंदेली समाचार भी, जिते कम समय में देश प्रदेश से लेके आपके पूरे बुंदेलखंड की जरूरी खबरें मिल हैं। और संगे ही जान है मौसम को हाल और खेती किसानी से जुड़ी लाभदायक सलाह भी। और आज है सोमवार, मनो आपके स्नेह भरे चिट्ठी पत्रन संदेशन और फरमाइशन से सजो दिना। जी में होत है आपके मन पसंद लोकगीत। सो बिना देर का भय बढ़त है आज के पहले पत्र की ओर, जो हमारे पास आओ है नेपाल पैलेस सागर से। पत्र लिखवे बारे हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। सो इनकी फरमाइश अपन पूरी कर रहे हैं मंजू श्रीवास्तव के गाय भई एक गणेश वंदना के।

0: और अब आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार।
0: बुंदेली समाचारन के संगे हम हैं राधा चौरे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में इस साल के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करे। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करे। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी को

प्रदर्शन करने बारे सैनिकों को दिए जाते हैं, जो सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रन में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। संगे विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में नीमच में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से 2280 करोड़ लागत के 500 मेगावाट नीमच एवं 450 मेगावाट शाजापुर सोलर पार्क को उद्घाटन करो। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 1553 करोड़ 98 लाख रुपया की लागत के उद्योगों एवं अन्य विकास कार्यों को लोकार्पण और भूमि पूजन करके क्षेत्रवासियों को सौगातें दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सोलर पावर यूनिट स्थापित करने वाली कंपनियों के पदाधिकारी को प्रशस्ति पत्र देके सम्मानित करो। मुख्यमंत्री ने इत विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ भी प्रदान करे। इससे पहले डॉक्टर यादव ने विभागों द्वारा लगाई गई विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनियों को अवलोकन करो। संगे जिला में चलाए गए पिंक अभियान के अंतर्गत छात्राओं को निशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट भी दें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल से लोक भवन पहुँच के सौजन्य भेंट करी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राज्यपाल श्री पटेल को मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करबे को लेके 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त होबे, यूसीसी को लेके मिल रहे व्यापक जन समर्थन एवं इस संदर्भ में राज्य सरकार की आगामी कार्य योजना से भी अवगत कराओ। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के सफल क्रियान्वयन में गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा में प्रस्तावित शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों, 4 कृषि उपजों को हाल ही में मिले जीआई टैक्स से संबंधित किसानों को मिलने वाले लाभ, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार, एमएसएमई एवं स्टार्टअप को प्रोत्साहन, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन से जुड़े विभिन्न प्रयासों एवं सरकार को मिली उपलब्धियों पर भी विस्तार से चर्चा करी। छतरपुर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आज जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित भई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री तथा टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार ने करी। बैठक में प्रमुख रूप से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल निगम एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग, वेयरहाउसिंग तथा नागरिक आपूर्ति निगम से संबंधित विषयों की समीक्षा करी गई। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 70 साल से अधिक आयु के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड विशेष अभियान चला के बनाए जावे, जैसे कि कोनो भी पात्र हितग्राही इस सुविधा से वंचित न रह जावे। पन्ना जिला में एक बार फिर एक आदिवासी किसान परिवार की किस्मत बदली है। इते अहिरगवा क्षेत्र के एक निजी भूमि पर संचालित खदान से ई परिवार को 11.19 कैरेट को बेश कीमती जेम्स क्वालिटी को हीरा मिलो है, जिकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपया बताई जा रही है। मजा की बात जा है कि यही परिवार को करीब 2 साल पहले भी 19.22 कैरेट को एक विशाल हीरा मिलो हतो, जो नीलामी में 93 लाख रुपया में बिको हतो। हीरा कार्यालय के अधिकारियों ने बताई कि मजदूर राकेश गौड़ ने इस साल अप्रैल में पट्टा बनवा के अपने 3 भैयन और रिश्तेदारन के संग मिलकर खदान लगाई हती। करीब 2 महीना की कड़ी मेहनत के बाद सोमवार को उन्हें जो चमचमात भाव हीरा हाथ लगो, जी उन्हें तुरंत सरकारी हीरा कार्यालय में जमा करा दो है। और अब बात करने लेते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल थमी भई है। अब तक केवल 15 जिलन तक मानसून पहुंच पाओ है, जबकि 40 जिलन में अब भी ई की आमद नहीं भई है। ई बीच मौसम विभाग ने आज 6 जिलन में भारी बारिश और कई अन्य जिलन में तेज बारिश को अलर्ट जारी करो है। मौसम विभाग ने उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, मंडला, बालाघाट में अगले 24 घंटन के दौरान 4 इंच या उससे अधिक बारिश होबे की संभावना जताई है।
इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश खुन लेके येलो अलर्ट जारी करो है। इससे पहले रविवार को मंदसौर और रतलाम में तेज बारिश भई, जबकि रतलाम में आधा इंच से अधिक वर्षा दर्ज करी गई। इसके अलावा गुना, श्योपुर, बड़वानी, शाजापुर, सीहोर, उज्जैन

0: और छतरपुर सहित कई जिले में भी भारी बारिश को रिकॉर्ड करी गई। तो जी हते आज के बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार।
0: भैया बहनों, किसान की जिंदगी खेत खलियान से शुरू होके ओई के इर्द गिर्द घूमत रहा थे। जब तक हाथ पांव चलत हैं तब तक मेहनत भी चलत रहा थे। लेकिन एक बात मन में अक्सर आते है कि जब उम्र ढल जे है तब सहारो का हुई है। सो यही सोच को ध्यान में रखत भय सरकार ने शुरू करी है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इमें सरकार 60 साल की उम्र के बाद हर महीना 3,000 रुपया तक की पेंशन देते हैं। ई स्कीम को फायदा उठावे के लाने मुश्किल से आप और अन्हें रोज को 2 रुपया या महीना के करीब 55 रुपया इमें निवेश करने पर है। योजना के तहत जितनों कंट्रीब्यूशन आप कर हो उतने ही सरकार भी इमें मिला थे और उके हिसाब से आपको पेंशन राशि मिलत है। ई योजना के लाने आप और 18 से 40 साल होबे जरूरी है। अच्छा, अगर

तक की पेंशन देते हैं। ई स्कीम को फायदा उठावे के लाने मुश्किल से आप और अन्हे रोज को 2 रुपया या महीना के करीब 55 रुपया ई में निवेश करने पर है। योजना के तहत जितनों कंट्रीब्यूशन आप कर हो उतनी सरकार भी ई में मिलाते हैं और उके हिसाब से आपको पेंशन राशि मिलत है। ई योजना के लाने आप और 18 से 40 साल होबो जरूरी है। अच्छा, अगर पेंशन होल्डर के संगे कोनो अनहोनी हो जाते तो उकी पत्नी या पति को पेंशन की राशि मिलबो रहबो भी सुनिश्चित करोगो है। अब बात के ई योजना को लाभ कैसे ले सकते हैं, तो ई के लाने आवेदन करता को बचत खाता, आधार कार्ड, जमीन से जुड़े आवश्यक दस्तावेज और मोबाइल नंबर को होबो जरूरी रहते हैं। बस इनको लेके अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जावे, उते इनके आधार पे पात्रता की जांच हुई है और आपको पंजीयन हो जाए। याद रखवे जा योजना सिर्फ आज के लाने नहीं है बल्कि आपके आबे बारे कल खो आपके बुढ़ापे को भी सुरक्षित करबे को उपाय है। सोचो भैया, अगर बुढ़ापे में जब नियमित रूप से आमदनी मिलत रहे तो मन भी निश्चिंत रहे और कौनों के सामने हाथ फैलावे की नौबत न पर है। तो इसे अगर आप और पात्र हो तो इसकी पूरी जानकारी जरूर ले लियो और अपने आसपास के किसान भैया बहनों तक भी जा बात जरूर के पहुंचाइयो। हो सकत है आपकी एक छोटी सी जानकारी कौनों और किसान भैया के आबे बारे कल को सहारा बन जाए और फिर जो ही तो होते असली साथ। हम सब एक दूसरे के संगे अच्छी और काम की बातें पहुंचाते रहे में तो जिंदगी अपने आप अच्छी लगन लगत है, आसान लगन लगत है। और जब साथ की बात चली है सो अब अपने उन श्रोताओं को भी साथ निभाए लेते हैं जिनने बड़े प्यार से अपनी फरमाइशें हमें भेजी हैं। सो उनकी पसंद को लोकगीत सुना के आज के इस सुहाने पल को थोड़ो और खुशनुमा बनाए देते हैं। तो भैया अगली फरमाइश आई है ग्राम अमलेश्वर से। फरमाइश करी है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर और भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक कुमार वर्मा ने और हमारे अन्य श्रोताओं ने भी ई लोकगीत की फरमाइश भेजी है। तो इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को मान रखत भाई सुनत है उनकी पसंद को एक सुंदर रावला नेपाल सिंह चौहान।

भैया बहनों, अब बात कर लेते हैं एक ऐसे डिजिटल साथी की जो आज के टाइम पे किसानन के लाने बहुत ही काम को साबित हो रहा है। हम बात कर रहे हैं किसान सारथी प्लेटफॉर्म की। जैसो के नाव से ही समझ में आते हैं, सारथी मनो सही राह दिखावे बारो। कई बार खेती किसानी में अपने मन में सवाल आते हैं कि कौन सी फसल लगावें, की बीमारी को का उपचार करवें, खाद कितनी डालवें, मौसम को का असर रहे, सरकार की कौन कौन सी योजनाओं को लाभ अपन है मिल सकते हैं। ऐसे कई सवालन के जवाब किसान सारथी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपन है आसानी से मिल सकते हैं। ई प्लेटफॉर्म पे किसान खेती, बागवानी, पशुपालन और दूसरी कृषि गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां भी ले सकते हैं। अगर मोबाइल चलावो आत है तो घर ही बैठे ही को उपयोग कर सकत हो, खुद उपयोग करवे में दिक्कत हो तो घर के ही कोनो सदस्य से मदद ले सकत हो, और तब भी समझ ना आवे सो नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर से भी मदद लई जा सकत है। वैसे किसान सारथी की और भी कई काम की बातें जो बताएं तनक देर से, कैसे अब समय होगा है अगली फरमाइश जानवे को। सो बढ़त हैं अगले पत्र की तरफ। अगलो पत्र को लिखवे बारे हैं दरगाही सैलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता कुलकर्णी और परभरणी से सीआर कुलकर्णी, और इन और इनकी फरमाइश है कि हम अपनी पसंद को कोनो लोकगीत इन्हें सुनवावे। सो इनको और बाकी के श्रोताओं के लाने सुनत हैं बलराम रैकवार को गाव भाव एक टकरार गीत।

तो अबे अपन बात कर रहे थे किसान सारथी प्लेटफॉर्म की, तो ई के उपयोग के लाने एक मोबाइल फोन और बैंक खाते या भूमि संबंधी जानकारी हो वो जरूरी रहा थे। सबसे अच्छी बात जा है कि किसान अपनी जरूरत के अनुसार जानकारी ले सकत है, इतने से समय पे सही सलाह लेके खेती खो फैसला खो ज्यादा समझदारी से कर सकत है। तो भैया आप और भी किसान सारथी प्लेटफॉर्म को लाभ उठाओ और अपने आसपास के दूसरे किसान भैया बहनों को भी ई के बारे में जागरूक करियो। और अब बारी अगले पत्र की जो हमारे पास आओ है मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवकिशन, भावना, कनिका, आदित्य और मानस पटेल को। सो इनके लाने सुनवा भी जा रहे हैं बासिक खान एंड पार्टी के सुरों में एक

और अब अपने भैया बहनों के लाने खेती किसानी से जुड़ी सलाह सुई दे देवे। सबसे पहले बात कर रहे हैं धान नर्सरी क्यारी की तैयारी की। सो उचित जल निकासी की व्यवस्था के संगे ऊंची एवं समतल नर्सरी क्यारियाँ तैयार करने हैं और अच्छी तरह सड़ी भई गोबर की खाद को इमें प्रयोग करने हैं। बुआई से पहले बीजों को उपचार कार्बन डाइजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करने हैं। हल्की सिंचाई द्वारा उचित नमी बनाए रखने हैं और संगी जो ध्यान रखने हैं कि कीट एवं रोगों की भी अपन नियमित रूप से निगरानी करत रहें। और अब बात करने लेते हैं अपने पशुधन की। सो पशुअन को दिन में 3 से 4 बार स्वच्छ पानी पियात रहें, उन्हें छायादार एवं हवादार पशुशालान में रखें, हरो चारो सूखो चारो और खनिज मिश्रण सोई खिलावे उन्हें, और खुरपका मुँहपका एवं गल घोटू रोगों के टीकाकरण कार्यक्रम को भी आप है पालन करने हैं। समय समय पर पेयजल में गुड़ एवं नमक मिलाओ जा सकते हैं तथा प्राकृतिक कीट प्रतिरोधक के रूप में नीम की पत्तियों को उपयोग करो जा सकते हैं। तो जातो हती आप और इनके लाने खेती किसानी और पशुधन से जुड़ी जरूरी सलाह। अब आगे बढ़त है और अगलो पत्र है बनियापारा धमतरी से। पत्र लिखवे बारे हैं रामचंद्र माखीजा काफिर, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति माखीजा, अंजलि पायल, गौतम बाधवानी, शंकर लाल, राहुल कुमार एवं पूरो माखीजा परिवार। सो जे सबजनों को ध्यान में रखत भय, इनकी पसंद को ध्यान में रखत भय, सुनत है एक श्रृंगार गीत जिए गाव है अरविंद सोनी ने।

भाई यारो, आप और लगातार अपने पत्र भेज के ई कार्यक्रम को अपनो प्यार दे थो ई किला ने आप सभी जनों को बहुत ही बहुत धन्यवाद। और फरमाइशों को रंग भी को ना परबे ऐसी चलत रहे। सो अब जो लोकगीत जो हम सुनवावे जा रहे हैं वो उन श्रोताओं के लाने हैं जिनके पत्र हम समय के अभाव की वजह से आज ही कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए। सो आनंद उठावे सोहनलाल कुशवाहा एंड पार्टी के गायब है ई शिव भजन को।

तो भैया हरो जो तो हतो आज को फरमाइशी लोक गीतन को कार्यक्रम लोक रंग आपको जो कार्यक्रम कैसो लगो हमें ज़रूर के बताइयो। बताने कैसे हैं अपनी चिट्ठी पत्रन के माध्यम से पतो। वैसे तो आप और जानते ही हो लोक रंग कार्यक्रम ग्राम सभा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल और पिन कोड है 462002। और अब जाबे से पहले काल के कार्यक्रम भी आपको बता दें, मैं काल सवेरे 6:45 पे डॉक्टर आशुतोष मिश्रा से सुने कृषि चर्चा, विषय रहे प्राकृतिक खेती। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कचलवे की बिरिया हो गई है। सो ग्राम सभा सुनने वाले सभी किसान भैया और बहनों को राधा बहन की एक बार फिर दो ही हाथ जोड़ के प्यारी सी मुस्कान के संगे राम राम।

0: आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जा रहा था। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा, समुद्री सुरक्षा और सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिन की यात्रा आज समाप्त हुई और प्रधानमंत्री आज दोपहर स्वदेश लौटे। और ये यात्रा महत्वपूर्ण इस तरह से थी कि सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आमंत्रित किया गया था। और इसके अलावा भारत और सेशल्स के राजनयिक संबंधों का ये 50वां वर्ष भी रहा। आज हम इस विषय पर विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं विदेश मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। प्रोफेसर मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो सबसे पहले हम इसी सवाल से इस चर्चा को शुरू करते हैं कि जिस तरह से भारत ग्लोबल साउथ की एक आवाज बनकर उभरा है और विकास के सहयोगी के तौर पर भारत एक बहुत बड़ा देश बनकर उभरा है, सेशल्स की यात्रा में आपको इस संबंध में क्या नजर आया?
3: देखिए, भारत और सेशल्स के बीच में संबंध पिछले 50 सालों में हमने देखा है कि वो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर नहीं है, उनमें एक बड़ा महत्वपूर्ण आयाम ये है कि भारत सेशल्स के लिए चाहता है कि वो हिंद महासागर में और हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, चाहे वो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हो या आर्थिक सुरक्षा संपन्नता को लेकर हो, सामुद्रिक सुरक्षा हो, इन तमाम आयामों पर सेशल्स ऐसी

0: स्थिति में रहे कि वो न सिर्फ अपने ऊपर आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके, बल्कि क्षेत्र में भी, हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी वो इन चुनौतियों का सामना करने में एक सकारात्मक भूमिका निभा सके। तो मल्टीलैटरल एस्पेक्ट में भारत की कोशिश रही है कि सेशल्स एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर की भूमिका निभाए, तो ये दूसरा उसमें आयाम है। तीसरी एक चीज है कि भारत ने हमेशा ये कोशिश की है, जैसा कि हम जानते हैं कि महासागर नीति जो पहले सागर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसका आगाज पहले किया था, अब वो महासागर नीति में, उसमें भी हम देखते हैं कि महासागर नीति के तहत उद्देश्य ये है कि जो छोटे आइलैंड स्टेट्स हैं, छोटे जो हिंद महासागर के और बड़े पैमाने पे अगर हम कहें कि ग्लोबल साउथ के जो छोटे द्वीपीय देश हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनकी जरूरतें जो है, जनता की जो आवश्यकताएं हैं, इन देशों की जो आकांक्षाएं और उनकी जो चिंताएं हैं, उनको दूर करना और उनको एक हाशिए से उठा करके उनको मेन स्ट्रीम में लाना, ये भारत की नीति रही है। तो भारत और सेशल्स के संबंधों में ये साफ तौर पर दिखता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वक्तव्य दिया कि हम साथ चलते हुए हम अपने संबंधों में भरोसे और भरोसे के साथ सहयोग और सहयोग से आज हम जन कल्याण की ओर बढ़ रहे हैं, ये हमें प्रधानमंत्री की विजिट में भी दिखता है और भारत सेशल्स के संबंधों में भी दिखता है। क्योंकि बड़े पैमाने पर भारत के जो भी, अगर हम लिस्ट ऑफ एमओयूज को देख लें या पिछले तमाम वर्षों में भारत ने जो सहयोग सेशल्स के लिए किया है, वो सेशल्स की जरूरतों पर केंद्रित रहा है। और ऐसा वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक ने भी कहा कि भारत सेशल्स के संबंध सेशल्स की जरूरतों को ध्यान में रखे गए हैं, और यही मुझे लगता है इस द्विपक्षीय संबंध की बड़ी खास बात है।
1: तो कैसे आप देखते हैं किस तरह से भारत सेशल्स के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, और जिस तरह से सहयोग भारत ने रखा है वो कैसे मदद करेगा दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ करने में?
0: एमओयूज की जहां तक बात है, उसमें क्षमता को बढ़ाना, कैपेसिटी बिल्डिंग सारे एमओयूज में कहीं ना कहीं वो दिख रहा है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सेशल्स के सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हो भारत के सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन अफेयर्स में, या फिर वो ICAR और सेशल्स की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके बीच में सहयोग हो, तो कैपेसिटी बिल्डिंग एक बहुत बड़ा आयाम है इन संबंधों का। साथ ही साथ जैसा कि हमने पहले भी देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेशल्स के लिए एक बड़ी जरूरत है, तो वहां पर तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भारत ने काम किया है और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार, मुझे लगता है, किसी देश के साथ संबंधों में जन कल्याण की बात कही,
1: बिल्कुल
0: और वो इसलिए है कि सेशल्स के लिए ना सिर्फ एक नया सेशल्स नेशनल हॉस्पिटल बनेगा इस एमओयू के तहत, बल्कि वो तमाम जेनरिक दवाएं और मेडिसिनल सप्लाईज जो है वो जन औषधि स्कीम के तहत सेशल्स को दी जाएंगी। तो एक तरह से हमें दिख रहा है इन एमओयू के तहत कि बड़ा ही समेकित एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग और एग्रीमेंट्स का इन दोनों देशों के बीच में साइन हुआ है। जहां तक लाइन ऑफ क्रेडिट का सवाल है, उसमें भी एक बहुत, जो 175 मिलियन की बात तमाम बार दोनों देशों के नीति निर्धारकों के बीच में बातचीत में भी आई और मीडिया में भी तमाम ये खबरें आई, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट है जिसमें 125 मिलियन तो लाइन ऑफ क्रेडिट है, 50 मिलियन ग्रांट के तौर पर दिया जा रहा है। तो सेशल्स की जो आर्थिक क्षमता है उसको भी ध्यान में रखते हुए इन एग्रीमेंट को ये रूप दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा है। साथ ही साथ देखिए, सेशल्स एक ऐसा देश है, छोटा सा देश है, जिसकी तटरेखा बहुत बड़ी है, 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की उनकी तटरेखा है, तो उसके लिए स्पेस सैटेलाइट एप्लीकेशंस और कैपेसिटी बिल्डिंग उस क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में, सैटेलाइट इमेजरी के क्षेत्र में, ये मुझे लगता है कि सेशल्स की क्षमताओं को एक बड़े नए स्तर पर पहुंचाएगा, जिससे सेशल्स हिंद महासागर में भी जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की जो चिंताएं हैं, चाहे वो पायरेसी को लेकर हो या ड्रग ट्रैफिकिंग नार्कोटिक्स को लेकर हो या गन रनिंग को लेकर हो, उनमें भी सेशल्स की क्षमता बढ़ेगी तो हिंद महासागर में मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ेगी, जो दोनों ही देशों के लिए और क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा है।
1: आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और सेशल्स के संबंधों और समुद्री सुरक्षा के बारे में क्या कहा।
2: अवर कोऑपरेशन इन मैरिटाइम सिक्योरिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, हाइड्रोग्राफी एंड मैरिटाइम डोमेन awareness reflects our shared commitment to a safer and more secure region. I met President Armeni Topat this morning. Our vision is captured in the idea of Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions Mahasagar. This vision recognizes that our futures are interconnected and interdependent. And we will continue to work together for a safer and more secure

0: सिक्योर इंडियन ओशन रीजन।
1: तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संबंधों को दूसरे देशों के साथ मजबूत करना भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और सेशल्स जैसे देश इसमें कितनी बड़ी एक साझेदारी की भूमिका निभा सकते हैं?
2: देखिए, भारत की हिंद प्रशांत क्षेत्र में, खासतौर से हिंद महासागर के क्षेत्र में, भारत की रणनीति सबसे पहले तो ये है कि दुनिया की तमाम महाशक्तियों के इतर भारत ये चाहता है कि इस क्षेत्र में सभी देश, सभी मित्र देश एक अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं, उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जाए और सभी मिलकर कॉमन सिक्योरिटी पर काम करें, कोऑपरेटिव पीस के उद्देश्य पर काम करें, जिससे कि ये क्षेत्र न सिर्फ स्थिर रहे बल्कि शांति भी इस क्षेत्र में बनी रहे। इसलिए मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस इस लिहाज से बहुत जरूरी है और महासागर के कॉन्सेप्ट में सेशल्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उतनी ही महत्वपूर्ण मुझे लगता है जितनी की मॉरिशस या मालदीव्स या श्रीलंका की है। तो इस लिहाज से महासागर नीति के तहत भारत का जो उद्देश्य है, भारत का जो लॉन्ग टर्म विजन है कि सभी का विकास हो, जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, तो ये सारी चीजें इस नीति में हमें दिखती हैं। महासागर के लॉन्च होने के बाद 2025 में, सागर नीति को 2015 में लाया गया था, 2025 में उसे अपग्रेड करके महासागर नीति का रूप दिया गया। तो पिछले एक साल में हमने देखा कि तमाम जो हिंद महासागर के छोटे द्वीपीय देश हैं उनके साथ सहयोग में इस बात को बड़ी मुखर तौर पर कहा जा रहा है कि सभी देशों की क्षमताओं को एक साथ जोड़कर हिंद महासागर के क्षेत्र में हमें ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी दोनों ही एस्पेक्ट्स में काम करना है। तो मुझे लगता है कि भारत की नीति बहुत स्पष्ट है कि एक इंक्लूसिव, रूल्स बेस्ड, पीसफुल और स्टेबल ऑर्डर हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बने।
1: जी, सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों को अपने संबोधन में रेखांकित भी किया था, तो उस संबोधन से भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और बातों को आप हमारे श्रोताओं के समक्ष रखना चाहेंगे?
2: देखिए, एक खास पहलू भारत और सेशल्स के संबंधों में वहां पर मौजूद भारतीयों और भारतवर्षियों का योगदान है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारतीय जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, NRIs हैं और जो हमारा डायस्पोरा है वहां पर, वो 8-10% की संख्या वहां पर टोटल पॉपुलेशन में देता है और उनका योगदान बहुत प्रमुख है। पहले तो वो 1770 में जब पहली बार भारतीय सेशल्स पहुंचे तो वो ब्लू कॉलर वर्कर्स थे, वो खेतों में और इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए गए थे। लेकिन आज भारतीयों का कॉन्ट्रीब्यूशन, और मैं डायस्पोरा के साथ साथ NRIs को भी जोड़ूंगा, वहां सेशल्स में एडवांस जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग के सेक्टर्स हो, सिविल इंजीनियर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे हुए हैं, या वहाँ के सिविल सर्वेंट्स, इन तमाम क्षेत्रों में भारतीयों का योगदान बहुत प्रमुख है। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेखांकित किया। साथ ही साथ जो भरोसे की नींव पर आधारित जो ये संबंध है, इसमें ये जो तमाम एस्पेक्ट्स आते हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है खाद्य सुरक्षा का, जो सेशल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमेशा से भारत से चावल सेशल्स को जो है वो भेजा जाता है, कभी कभी वो एक्सपोर्ट के तौर पर, बहुत ऐसे भी ओकेजन आए हैं जब भारत ने चावल सिर्फ जो है वो सहायता के लिए भेजा। सेशल्स जैसे देश आज जलवायु परिवर्तन और बहुत तेजी से बदलती हुई ये जो क्लाइमेट डिबेट है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उससे जूझ रहे, उनकी इन तमाम जो जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट रिलेटेड कैलामिटीज हैं, उनसे लड़ने में भारत क्या योगदान दे सकता है, दोनों देश मिलकर क्या काम कर सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी कहा कि 50 साल का सफर हमने तय कर लिया है, अब आगे आने वाले 50 सालों में हमें क्या करना है। तो मुझे लगता है कि सेशल्स को लेकर एक बहुत दूरगामी नीति बनाने की बात उन्होंने कही और इसमें सेशल्स के नीति निर्धारकों का, सेशल्स की जनता का और सेशल्स में रह रहे भारतवर्षियों का भी योगदान उन्होंने मांगा। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव, एक बड़ा ही व्यापक और इंक्लूसिव एजेंडा उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसे सेशल्स की जनता और वहां के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और राष्ट्रपति ने बड़े ही खुले मन से स्वीकार किया।
1: जी, जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, सेशल्स की अब हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो इन देशों में जो अपने रणनीतिक संबंधों में भारत विकास का जो एक क्षेत्र लाया है और सहयोग और जनकल्याणकारी जो साझेदारी है इस क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहा है, वो कैसे भारत अपने एक सकारात्मक प्रभाव को इन देशों के साथ प्रस्तुत कर रहा है और कैसे विश्व में ये एक संदेश भी जा रहा है कि भारत अपने सहयोगियों के साथ एक विकास का प्रबल सहयोगी बनकर उभर रहा है?
2: जी, जैसे मैंने पहले कहा कि भारत की महासागर नीति 2025 की, उसमें बहुत स्पष्ट है कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, खासतौर से ये हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश हैं, उनके साथ सहयोग में एक बड़ा स्तंभ ये होना चाहिए कि इन देशों की, जिनकी बात दुनिया के किसी भी स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या

0: दुनिया के और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर उनकी कॉप की जो मीटिंग्स हैं उन पर इन छोटे देशों की बात सुनी नहीं जा रही। तो इसलिए ग्लोबल साउथ की आज सबसे मुखर और सबसे सशक्त आवाज बनकर भारत उभर रहा है, जो इन देशों की जनता की जो सर्वाइवल से जुड़े इश्यूज है, कृषि है, खाद्य सुरक्षा है, फिशरीज का सेक्टर है, मछली पालन का, क्योंकि इलीगल और अनरिपोर्टेड अंडर रिपोर्टेड फिशिंग को लेकर के IEUU जिसे कहते हैं उसको लेकर के चिंताएं बहुत सारी हैं। तमाम जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आती हैं, उनमें भारत हमेशा से हिंद महासागर क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है और फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। तो इस बात को भी ग्लोबल साउथ के संदर्भ में भारत ने रखा है। भारत को जैसा कि हम जानते हैं दुनिया की फार्मेसी समझा जाता है, लेकिन आज सिर्फ अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसका इस्तेमाल हो रहा है कि जनता जो जन औषधि योजना जो भारत में लागू हुई, ये दुनिया के तमाम जो विकासशील देश हैं ग्लोबल साउथ के सदस्य हैं जिन्हें दुनिया के अग्रणी जो विकसित देश हैं उनसे कोई चिकित्सा से संबंधित या हॉस्पिटल से संबंधित, दवाओं से संबंधित, नई टेक्नोलॉजी से संबंधित जो समर्थन जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं
1: जी
0: मिल रहा है, आज भारत उसको मुहैया कराने की स्थिति में है। तो इसलिए ग्लोबल साउथ को लेकर के भारत की नीति बहुत स्पष्ट है कि इन तमाम देशों को साथ में लेकर आगे बढ़ना है, तभी ग्लोबल साउथ एक ऐसे स्तर पर ऐसे मुकाम पे पहुंचेगा जहां वो अपनी बात
1: जी
0: को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कह सके, ना कि सिर्फ जो अभी तक हमने ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ की डिबेट सुनी है उसमें हमेशा ये होता है कि ग्लोबल साउथ के देश कहते हैं कि हमें और फंडिंग दी जाए, हमें ग्रांट्स दी जाए, हमें एड दी जाए। आज भारत अपने इन तमाम ग्लोबल साउथ के देशों की मदद के साथ ये कहना चाहता है, ये करना चाहता है कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ एक ऐसे इस तरह से एक दूसरे को एंगेज करें कि ये वन वे डोनर और रेसिपियंट रिलेशनशिप से बदले और ग्लोबल साउथ अपनी बात को, अपने मुद्दों को कॉन्फिडेंस के साथ ज्यादा असर्टिवली कह सके, और इसके
1: बिल्कुल
0: लिए इनकी कैपेसिटीज को बढ़ाना जरूरी है। यही अफ्रीका के देशों में दिख रहा है, यही पैसिफिक आइलैंड के जो
1: जी जी
0: तमाम जो छोटे देश हैं और हिंद महासागर में भी यही बात दिख रही है।
1: बिल्कुल प्रोफेसर राहुल मिश्रा, बहुत धन्यवाद। भारत और सेशल्स के संबंधों पर आपने विस्तार से विश्लेषण रखा और निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को बहुत कुछ इन संबंधों को लेकर जानकारी प्राप्त हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा, समुद्री सुरक्षा और सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए एक बार फिर हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत लेकर। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं हीरा पन्ना फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म लव स्टोरी से। लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ है, बोल हैं आनंद बख्शी के और तर्ज बनाई है राहुल देव वर्मन ने।

आइए अब सुनते हैं शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, बोल है हसरत जयपुरी के, और फिल्म का नाम लव इन टोक्यो।

आपकी रेडियो सेट पर आ रहा है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म का गीत, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में, जावेद अख्तर की बोल हैं और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

आप सुन रहे थे एसपी बालसुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ में लव फिल्म का गीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और संगीत से सजाया था आनंद मिलन ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे समर्पण
2: का। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
4: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को

0: देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफ़ी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
3: Applications launch is going to play a very important role.
4: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें

0: 66 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है,
1: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
2: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है, जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से 0 उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
3: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
4: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
3: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2 पहिया, तिपहिया, 4 पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
2: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewZone AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था।

0: देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदाम्बी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mushtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of northeast, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. And now the news in detail. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and senior officials of Armed Forces, were also present on the occasion. A report.
3: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna,

0: Poland and Hungary have also reached record temperatures above 40 degrees Celsius. According to WHO, more than 1,300 deaths across Europe have been linked to extreme heat since June 21st. India's industrial output growth, as measured by the Index of Industrial Production, IIP, expanded by 5.1% in May this year on an annual basis. As per the data released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, growth in the electricity and gas supply sector expanded by 9.9% during the last month. Manufacturing, as well as water supply, sewerage and waste management sectors posted a 5.5% growth. Benchmark domestic equity indices ended almost 0.5% down today. Sensex fell 372 points to close at 76,728. Nifty also dropped 110 points to settle at 23,946. On to sports now. The Indian women's cricket team has become one of the first sides to qualify for the Los Angeles 2028 Olympic Games. However, the men's team will have to finish as Asia's highest ranked side in the ICC men's T20 rankings by the end of this year to secure direct qualification. The International Cricket Council today confirmed that India, alongside Australia, Great Britain and South Africa, have booked their places in the women's T20 competition at Los Angeles 2028 Olympics. India's under-19 boys team defeated Hong Kong 3-1 in the quarterfinals of the Asian Youth Championships in Bangkok today. This win has assured team of at least a bronze medal and a direct berth in the next year's World Youth Table Tennis Championships. The Indian boys will now take on top seeds China in the semi-final. In US Open badminton, Indian shuttler Kidambi Srikanth secured the silver in the men's singles after facing defeat in the final against Su Li Yang of Chinese Taipei. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at defense investiture ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of Northeast, Sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा दिफाई एजाजात की तकरीब में बहादुरी के एजाजात अदा किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स के साथ 50 साल पुरानी शराकत दारी अब जिद्दत तराजी पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के जरिए मजीद मुस्तहकम होगी। वजीर आजम सेशल्स का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। मरकजी काबीना ने मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की में तेजी लाने की खातिर सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF में 30,000 करोड़ रुपए की इजाफी सरमायाकारी की मंजूरी दी है। मगरबी बंगाल असेंबली ने समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए अवामी तहफ्फुज़ और समाज मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक बिल को मंजूरी दी है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों ज़ैल हिमालयी मगरबी बंगाल बिहार गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक और केरला में कहीं कहीं शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज शाम मुनाकिदा दिफाई एजाजात की तकरीब के दूसरे मरहले में दिफाई अफवाज और भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते के अहलकारों को बहादुरी एजाजात अता किए। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन वजीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा दीगर मरकजी वजरा और मुसलह अफवाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सदर जमहूरिया ने इस तकरीब में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल्स 30 परम वशिष्ठ सेवा मेडल्स 12 उत्तम युद्ध सेवा मेडल्स और 56 अति वशिष्ठ सेवा मेडल्स अदा किए। अति वशिष्ठ सेवा मेडल पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी लेफ्टिनेंट जनरल नीरज

0: नीरज वाशने और वाइस एडमिरल आनंद वाई सारदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल्स पाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। इसी तरह वाइस एडमिरल संजय वसायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को परम विशिष्ट सेवा मेडल अदा किए गए। उत्तम युद्ध सेवा मेडल पाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोबती शामिल हैं। ये एजाजात मस्कूरा एहलकारों को उनकी गैरमामूली और नुमाया खिदमात के एतराफ में दिए गए। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहन अम्मार।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनका 3 रोजा सेशल्स का दौरा निहायत कामयाब रहा और इससे दोनों मुल्कों के रिश्तों में इजाफा होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 50 बरसों से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मुश्तरका तरक्की पर उस्तवार रहे हैं, जबकि आइंदा 50 साल जिद्दत, पायदार तरक्की और इज्तिमाई खुशहाली से इबारत है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: अपने दौरे के आखिरी दिन जनाब मोदी ने विक्टोरिया के नवाशक्ति विनायागार मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा की। वहां उन्होंने भारतीय बिरादरी के अरकान से भी मुलाकात की। वजीर आजम ने पीस पार्क में नस्ब महात्मा गांधी के मुजस्मे पर फूलों का नजराना भी पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने सेशल्स के 50वें योम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी, हुकूमत और आवाम का शुक्रिया भी अदा किया। सेशल्स की नेशनल असेंबली को खिताब करने वाले वो भारत के पहले वजीर आजम बन गए हैं। दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के माबैन UPI, ज़राअत, जहाज़रानी, खलाई तआवुन, मुलज़मान की हवालगी और लाइन ऑफ क्रेडिट समेत मुतअद्दिद शोबों में मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। न्यूज़ डेस्क से उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF में हुकूमत हिंद की मजमूई सरमायाकारी अब 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ये इकदाम मुल्क में बुनियादी ढांचे और कौमी अहमियत के हामिल दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी करता है। पिछले हफ्ते मरकजी काबीना ने मजकूरा फंड में 30,000 करोड़ रुपए की इजाफी सरमायाकारी की मंजूरी दी थी ताकि बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में सरमायाकारी में तेजी लाई जा सके और मुल्क में घरेलू और बैन अलाक़वामी इदारा जाती सरमायाकारों को रागिब किया जा सके। वजारत खजाना के मुताबिक ये इजाफी रकम सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF के बुनियादी ढांचे पर मरकूज दूसरे फंड के क्याम के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जो साबिका अहम फंड की जगह लेगा। सनअती पैदावार के इशारिये IIP के मुताबिक मई 2026 के दौरान भारत की सनअती पैदावार में सालाना बुनियाद पर 5.1% का इजाफा हुआ। इससे कबल अप्रैल में सनअती पैदावार की शरह नमू 4.9% थी। मई के आदादोशुमार अप्रैल के आदादोशुमार के बाद जारी किए गए हैं, जो कि नए बुनियादी साल 2022-23 के तहत 8.9 तश्कीलशुदा IIP सीरीज के पहले आदादोशुमार थे, जिसमें जदीद तरीन मसनूआत की फहरिस्त, वजन और मुख्तलिफ शोबों की ज्यादा जाम शमूलियत शामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली ने आज मगरबी बंगाल अवामी तहफ़ और समाजी मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक बिल 2026 और मगरबी बंगाल में अमन अमान कायम करने के से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दी। मजकूरा बिल की हिमायत में 176 वोट हासिल हुए, जबकि मुखालफत में 41 वोट पड़े, वहीं 20 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस बिल के तहत ऐसे अफराद को जिनकी समाज मुखालिफ सरगर्मियों से आवाम की सलामती, अमन अमान और नज्म व नस्क को खतरा लाहक हो सकता हो, उन्हें एहतियाती तौर पर ज्यादा से ज्यादा 12 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है। हुकूमत के मुताबिक इस कानून का मकसद समाज दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों पर काबू पाना, उन्हें सख्त सजा देना और उनकी साजिशी मंसूबाबंदी को नाकाम बनाना है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा और राजस्थान की हुकूमत ने आज नई दिल्ली में जमुना आबी प्रोजेक्ट की तामीर और उस पर अमल दरामद के लिए एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए। इस मौके पर बात करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस मुफाहमत नामे से हरियाणा और राजस्थान के लोगों

0: को तकरीबन 3 दहाइयों से दरपेश पानी के मसले का हल हो गया है। उन्होंने कहा कि ये मुआहिदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के उसूल मुज़ाकरात के जरिए हल की एक बेहतरीन मिसाल है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस मुआहिदे के तहत अगले माह से अक्टूबर तक 3 ज़ेर-ए-ज़मीन पाइपलाइंस के जरिए यमुना कनाल से राजस्थान को तकरीबन 580 मिलियन क्यूबिक पानी मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पाइपलाइन से दोनों रियासतों के आवाम को पीने का पानी मुहैया हो सकेगा। इस दौरान जल शक्ति के वजीर सीआर पाटिल ने कहा कि इस मुआहिदे के तहत मानसून के मौसम में राजस्थान के हिस्से का पानी हथनी कुंड बैराज से वेस्टर्न यमुना कनाल के निज़ाम के रास्ते बिछाई गई ज़ेर-ए-ज़मीन पाइपलाइन के जरिए फराहम किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनी कुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू सीकर झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: दिल्ली काबीना ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अगले महीने की 1 तारीख से शुरू होने वाले 4 साला मरहलेवार रोल आउट के लिए मुकर्रर कसीर जहती फ्रेमवर्क 31 मार्च 2030 तक कौमी दारुल हुकूमत को मुकम्मल तौर पर कार्बन के सिफर इखराज की तरफ मुंतकिल करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के बड़े मालियाती अखराजात का अहद करता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में स्ट्रेटेजिक तहकीक और तरक्याती प्रोजेक्टों की कारकर्दगी, जवाबदेही और बरवक्त अमलावरी के लिए DRDO DFP 2026 को मालियाती इख्तियारात का एक वफ जारी किया। इस मौके पर जनाब सिंह ने कहा कि DFP 2026 दिफाई अफवाज में तहकीक और तरक्की के एक निज़ाम से निकलने वाले निज़ाम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी की तेज तर पैदावार और शमूलियत में सहूलत फराहम करेगा। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि हुकूमत ने बुनियादी, सानवी और तीसरे दर्जे के तिब्बी सहूलती मराकज में तौसी करके मुल्क के सेहत निज़ाम को नुमाया तौर पर मजबूत किया है। नई दिल्ली में सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी कौंसिल की 16वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि शहरियों और सेहत निज़ाम के दरमियान राबते के पहले मरकज के तौर पर मुल्क भर में 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कायम किए जा चुके हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल बरतानिया का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद यूनान के एथेंस में एक आला सतही भारतीय कारोबारी वफ की क्यादत कर रहे हैं। जनाब गोयल ने आज यूनान के तरक्यात के वजीर टाकिस थियोडोरी काकोस से मुलाकात की। जनाब गोयल ने कहा कि उन्होंने वसी तर तिजारत, सरमायाकारी, सनती तावुन और लचकदार सप्लाई चेन्स के जरिए भारत यूनान इक्तिसादी शराकतदारी को मजबूत करने पर तबादले ख्याल किया। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर फौजी हमले को आर्जी तौर पर रोकने और आबनाए हुरमुस से तिजारती बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का एक नया दौर कल कतर की राजधानी दोहा में होगा। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि ईरान ने मीटिंग की दरख्वास्त की थी और ये मीटिंग दोहा में होगी, ताहम उन्होंने मुज़ाकरात के एजेंडे या दोनों ममालिक की नुमाइंदगी की सतह के बारे में मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की। ऑपरेशन एमिस्टेड के तहत जलजले के मुतासिर वेनेजुएला में तैनात भारतीय फौज का फील्ड अस्पताल मुकम्मल तौर पर फाल हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम कर रहा है। वेनेजुएला में भारतीय सिफारतखाने ने कहा कि तजुर्बेकार डॉक्टरों पर मुश्तमिल भारतीय तिब्बी टीम ने कराकस में इंटरनेशनल ला रिंकोनाडा रेस्ट्रिक पर एक कैंप कायम किया है। उसने कहा कि मेडिकल कैंप अब मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है और खिदमात 24 घंटे खुली रहती हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने मुल्क के शिमाल मशरिकी इलाकों, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और माहे में कल शदीद

बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक अगले दो रोज के दौरान उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी शदीद बारिश होने का इम्कान है। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली टीमों में शामिल हो गई है। ताहम मर्दों की टीम को बराह रास्त क्वालिफाई करने के लिए रवा साल के अख्ताम तक आईसीसी की मर्दों की टी20 की रैंकिंग में एशिया की सबसे आला दर्जे की टीम बनना होगा। बैन अलावा क्रिकेट काउंसिल ने इस बात की तस्दीक की है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और जनूबी अफ्रीका ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों में खवातीन टी20 मुकाबलों में अपनी जगह यकीनी बना ली है। यूएस ओपन बैडमिंटन में भारतीय सरकर्दा खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में चीनी ताइपे के सूली यांग से हार गए और उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। इस हार में बीडब्ल्यूएफ के खिताब के लिए श्रीकांत के इंतजार को और बढ़ा दिया है, क्योंकि उन्होंने 2017 में बीडब्ल्यूएफ सुपर सीरीज के दौरान फ्रेंच ओपन में अपना आखिरी बैन अलावा खिताब जीता था। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा दिफाई एजाजात की तकरीब में बहादुरी के एजाजात अदा किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स के साथ 50 साल पुरानी शराकतदारी अब जिद्दत तराजी, पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के जरिए मजीद मुस्तहकम होगी। वजीर आजम सेशल्स का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। मरकजी काबीना ने मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की में तेजी लाने की खातिर सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF में 30,000 करोड़ रुपए की इजाफी सरमायाकारी की मंजूरी दी है। मगरबी बंगाल असेंबली ने समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए अवामी तहफ्फुज और समाज मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक बिल को मंजूरी दी है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल मुल्क के शुमाल मशरकी इलाकों जैली हिमालयी बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज जब हम भारत विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो उसके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की दिशा में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पब्लिक स्पीक में हमने यही विषय चुना है, लघु व्यवसायों का विकास और उद्यमियों के लिए अवसर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश। आपका स्वागत है डॉक्टर रजनीश कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 2331-0481 या 2371-7117, 2371-7106 या 2331-4444। याद रखें, इससे पहले 011 जो दिल्ली का कोड है वो लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और इसके अलावा आप जानते हैं ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पे भी #AskAIR के जरिए आप अपने

0: सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। डॉक्टर रजनीश, भारत जैसे विशाल देश में हम देखते हैं कि शहरों की गलियों से लेकर गांवों तक बड़ी संख्या में छोटे छोटे उद्यम चल रहे हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में इनका कितना महत्व है और एमएसएमई क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है?
1: प्रियंका जी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो हैं, ये हमारी आर्थिकी में 31% से ऊपर योगदान रखते हैं, और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 35% से ऊपर इनका योगदान है। एक्सपोर्ट्स में 48% से ऊपर योगदान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का है। सबसे बड़ी बात जो एमएसएमई की है, वो जैसा आपने बताया कि एग्रीकल्चर के बाद लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एमएसएमईज हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ एमएसएमईज के माध्यम से 38 करोड़ से ऊपर लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और हम ये मानते हैं मिनिस्ट्री में कि जो हमारे विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है, उसमें एमएसएमई का एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए

0: एग्रीकल्चर के बाद लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एमएसएमईज हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ एमएसएमईज के माध्यम से 38 करोड़ से ऊपर लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए
1: जी
0: हैं। और हम ये मानते हैं मिनिस्ट्री में कि जो हमारे विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है उसमें एमएसएमई का एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इनका एक बहुत बड़ी भागीदारी है।
1: जी सही बात है। 38 करोड़ से जितने ज्यादा लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हों तो लाजमी है उस क्षेत्र पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और सरकार दे भी रही है। आगे चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं।
2: जी नमस्कार मैडम, धन्यवाद।
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न क्या है?
2: मैं धर्मवीर गांधी नगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। तो एक्सपर्ट को नमस्कार। जैसे हमारे एक्सपर्ट भी जानते हैं कि गांधीनगर दिल्ली की सबसे एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है। यहाँ जो भी आपके लघु उद्योग और छोटे उद्योग सारे चलते हैं, और इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि यहाँ जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई 50 भी स्टाफ काम करता है, कहीं 30 करता है, कहीं 90 स्टाफ काम करता है। इन लोगों को जानकारी नहीं है इसका कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए।
1: जी
0: देखिए, एमएसएमई के अंदर हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है बैंकों से सुगम और कम दर ब्याज के ऊपर ऋण प्राप्त करना। इनफैक्ट हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एलिजिबल हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट जो पहले
1: जी
0: इनको मिलता था, अब वो बढ़कर 36 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो पिछले 10 साल में 3 गुना से ऊपर की वृद्धि हम देखते हैं। जो एक्सेस टू क्रेडिट है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए वो प्रदान की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने ये देखा है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम जो हैं, वहाँ उद्यमियों को जब वो बैंक में अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं या उनको कोई अपने व्यवसाय विस्तार के लिए धनराशि चाहिए होती है, तो उस समय नॉर्मली बैंक्स जो हैं वो कोलेटरल मांगते हैं,
1: जी
0: और कोलेटरल देना एक समस्या रहती है। तो मंत्रालय की तरफ से एक हमारी स्कीम चलती है जिसको हम CGTMSE बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जितने भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इनको बिना कोलेटरल के ऋण देने की एक व्यवस्था इस योजना के माध्यम से की गई है। बेसिकली क्या होता है कि कोई बैंक अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लोन दे रहा है तो उसका डिफॉल्ट रिस्क हम CGTMSE से कवर करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2000 से ये योजना चल रही है,
1: जी
0: 2000 से लेकर 2020 तक 20 सालों में 3,20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटीज हमने दी,
1: दी है
0: और 2023 में एडिशनल 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटीज हमें
1: जी
0: देनी थी। और 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटीज का जो टारगेट था, हमने 3.5 साल में ही 10 लाख करोड़ के ऊपर क्रेडिट गारंटीज और दी हैं।
1: दी
0: तो हमारा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा पुश ये रहता है कि जितने माइक्रो और स्मॉल
1: जी
0: एंटरप्राइजेज हैं उनको अपने व्यवसाय विस्तार के लिए आसानी से बैंकों से ऋण प्राप्त
1: उपलब्ध
0: हो।
1: हो जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो अक्सर चिंता का सबब रहता है कि गिरवी रखना पड़ेगा
0: जी
1: कुछ, तो इस केस में जो आप योजना है जो CGTMSE उसके लिए आपको कोई गिरवी नहीं रखना कुछ, आप निश्चिंत होकर बैंक के पास जा सकते हैं और अगर सही है सारा प्रोजेक्ट तो आपको उस पर लोन मिल सकता
0: इसमें
1: है।
0: दो बातें मैं और बताना चाहूंगा। पहले कोलेटरल फ्री लेंडिंग की जो RBI की लिमिट थी वो 10 लाख रुपए थी, तो हमने RBI से मैटर टेकअप किया कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए, और इस वर्ष 1 अप्रैल से ये लिमिट दुगनी कर दी गई है। तो
1: जी
0: 20 लाख 20 लाख तक का लोन अगर कोई लेना चाहता है तो उसमें वैसे भी कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। और क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटीज हम लोग देते हैं। इसमें 75% से लेकर 85% तक का गारंटी कवर रहता है।
1: जी
0: तो एक ये योजना है जिसके माध्यम से हमने देखा है कि एमएसएमईज अपने व्यवसाय विस्तार को आगे
1: जी
0: बढ़ावा दे रहे
1: जी
0: हैं।
1: बूस्ट अप मिलता है उनको। हरियाणा से एक और श्रोता जुड़े हैं, राजेंद्र जी।
3: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी, नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में लघु उद्योग तो काफी हैं लेकिन कैसे माल बेचने की उनको बड़ी समस्या है। देश में या राज्य में ऐसी कोई कोई मार्केट हो जो अपना माल बेच सके और वो अपना

0: हुनर दिखा सके। दूसरा, जो अभी बैंक लोन आता है तो उसकी बैंक गारंट होती है तो वो आम आदमी की होती है, तो पता नहीं लगता अभी किस टाइम लोन आएगा, तो पता करने जाए तो ग्रांट कहते हैं खत्म हो चुकी है। तो ये लोगों में कैसे जानकारी फैले कि जो ग्रांट आए लोन का टाइम को तो पता लगे लोगों को। नमस्कार
1: जी।
2: तो आपने जो प्रश्न पूछा इसके दो भाग हैं। पहला ये जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग में किस तरह से इनकी सहायता की जा सकती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, इसके लिए हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑर्डर है, और ये हमारे एक्ट के तहत, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के तहत है, जिसके अंदर जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको 25% अपनी खरीद जो है वो मैंडेटरली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से करनी है।
1: करनी हो।
2: और दूसरी बात ये है कि जब कभी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो 15% की प्राइस प्रेफरेंस भी उन्हें मिलती है।
1: अच्छा।
2: मतलब ये कि मान लीजिए अगर किसी ने टेंडर में जो लोएस्ट कोट किया है वो 100 रुपये है, और माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज ने 115 तक का भी अगर कोट किया है, तो वो अगर हम उसे एक मौका देते हैं कि आप 100 रुपीज़ जो कि मिनिमम प्राइस कोट आया है, अगर आप उसको मैच करते हैं तो 25% वो ऑर्डर आपको मिलेगा। तो एक ये हमारी प्राइस प्रेफरेंस है जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। इसके अलावा हम एक हमारी योजना है पीएमएस, जिसके अंदर हम हमारे जो व्यवसायी हैं उनको ट्रेड फेयर्स में और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पार्टिसिपेट करने में हम मदद करते हैं, तो उस योजना का ये लाभ ले सकते हैं। जो बैंक की इन्होंने बात की कि बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ गारंटीज के बारे में पता
1: पता नहीं
2: नहीं
1: चल।
2: होता, तो ये एक्चुअली क्रेडिट गारंटी जो है इसके लिए आवेदन करने की माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को आवश्यकता नहीं है। ये क्रेडिट गारंटी हम बैंक को ही देते हैं, तो जब लोन इनको दिया जाता है तो उस समय बैंक जो है ये क्रेडिट गारंटी कवर हमारे सीजीटीएमएससी से लेते हैं, और हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर और अधिक अवेयरनेस क्रिएट करने पे भी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो हमारी एमएसएमई एसोसिएशंस हैं उसके माध्यम से इस बात का प्रसार कर रहे हैं कि आप जब लोन लेने बैंक में जाएं तो कृपया सीजीटीएमएससी का जरूर हवाला दें,
1: जी
2: ताकि आपको कोलेटरल जो है वो ना देना पड़े और
1: आपको,
2: कोलेटरल फ्री लेंडिंग
1: जी
2: जो
1: आपको,
2: है आप उसकी सुविधा
1: जी
2: प्राप्त
1: हाँ,
2: कर
1: बिना
2: सकें।
1: गिरवी के ये ऋण प्राप्त कर सके। तो इसलिए जो सीजीटीएमएससी जो योजना का नाम है उसका जिक्र जरूर करें जब भी आप इस योजना का लाभ लेने जाते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं विपिन सागर जी। विपिन जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। जहाँ तक अभी हमने बात की कि मार्केटिंग की, तो जैसे एक जेम पोर्टल भी है उसके थ्रू भी जो छोटे व्यवसायियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है वो भी सरकार की ओर से तैयार की गई। क्योंकि ब्रांडिंग की जब बात करती है, जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं या अन्य हम जो कॉरपोरेट कंपनीज की बात करते हैं, तो वो पैसा खर्च करके अपने दम पर अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन जो छोटे व्यवसाय हैं उनको कैसे पहचान मिले?
2: देखिए, जेम पोर्टल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है प्रोक्योरमेंट्स में। पहली बात तो ये, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट ये करते हैं इनको जेम से करना है, ये हमारे जीएफआर के अंदर ये चीज निहित है। दूसरी बात ये कि जेम पे जो प्रोक्योरमेंट होता है, क्योंकि ये एक फेसलेस प्रोक्योरमेंट है, पोर्टल के ऊपर टेंडर फ्लोट होता है और उसके अंदर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई भी इसके अंदर बिड कर सकता है, तो एक बहुत ही पारदर्शी रूप में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो जेम का फायदा उठा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें पिछले 5 साल में संख्या एमएसएमईज की जो जेम पे प्रोक्योरमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है, और इसके अंदर जो अमाउंट है प्रोक्योरमेंट का और जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को, उसके अंदर भी बहुत विस्तार हुआ है।
1: जी, हम चर्चा जारी रखते हैं। पहले अपने श्रोता को ले लेते हैं। शिमला से जुड़े हैं राकेश जी।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
3: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला, हिमाचल प्रदेश।
1: जी
3: जी मेरा ये प्रश्न है कि हम बागवानी क्षेत्र के लिए जो है एमएसएमई के लिए लोन लेना चाहते, तो कितने परसेंट उसमें ब्याज हमें मिलता है बागवानी क्षेत्र के लिए?
1: जी
2: देखिए जो

0: एग्रीकल्चरल लोन्स हैं, आप जानते हैं कि बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके वो खुद स्वयं निर्धारित करते हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस हैं। बैंक्स को ये इख्तियार है कि वो ये लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है, वो बैंक इसको डिटरमिन करता है। पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं, और अगर आप हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होते हैं, तो फिर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की के लाभ मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो ब्याज की दर है वो काफ़ी कम रहती है। ये एक्चुअल क्या एग्जैक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो तो डिपेंड करता है कि लोन अमाउंट आप कितना चाहते हैं, पर नॉर्मली 8 से लेकर 10% के बीच में अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप ये लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और कोटखाई क्योंकि सेब और बागवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध इलाका है, तो ये आप हमारे CGTMSE का कवर भी इसके अंदर ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपने जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप प्रोसेसिंग में हैं, तो फिर आपको इसके हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होगा।
1: जी, मध्य प्रदेश से एक और श्रोता जुड़े हैं, छतरपुर से राशिद अहमद खान जी।
2: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्कार
2: मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान।
1: जी
2: मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न है कि लघु उद्योग की परिभाषा क्या है इन टर्म ऑफ लागत, कितनी लागत होना चाहिए तब वो लघु उद्योग में आता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, तो उसकी सभी लोगों को पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये पूछना चाहता हूं कि क्या नर्सरी प्लांट की कोई नर्सरी लगाई जाए या फूलों की खेती के लिए कोई प्लांट डाला जाए, तो उसके लिए हमको लोन वगैरह मिल सकता है क्या, प्लीज बता दीजिए। थैंक यू।
0: राशिद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम ये तीन श्रेणियां हैं एमएसएमई में, और इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा टर्नओवर पे। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस बेसिकली जिनकी 10 करोड़ तक की टर्नओवर है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं, जिनकी 100 करोड़ तक की टर्नओवर है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, और जिनकी 500 करोड़ तक की टर्नओवर है वो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। और इसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी माइक्रो के लिए है, 25 करोड़ स्मॉल के लिए है, और 125 करोड़ मीडियम के लिए है। मैं यहाँ पर अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि ये डेफिनेशन एमएसएमई की हमने पिछले साल रिवाइज की थी, और ये लिमिट्स हमने टर्नओवर की लिमिट को हमने दुगना किया है, और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इसको 2.5 गुना बढ़ाया गया है। और इसका पर्पज़ ये है कि बहुत से हमारे एमएसएमई इस बात से चिंतित रहते थे कि अगर हम ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, हमारी टर्नओवर बढ़ेगी, या हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम एमएसएमई का स्टेटस खो देंगे, और ये जो बेनिफिट एमएसएमईज के मिलते हैं वो हम उनसे वंचित हो जाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए इस डेफिनेशन को हमने बढ़ाया है। और दूसरा सवाल जो आपने बैंक से के रिलेशन में कहा है, तो प्रोसेसिंग यूनिट का अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बैंक को संपर्क करें, आपको लोन मिलेगा।
1: जी हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, विपिन जी।
3: जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार
3: मैम, मेरा सवाल ये था कि जो लघु उद्योग हैं जिनमें पहले से मतलब डाउनफॉल चल रहा है, किसी भी प्रकार का लघु उद्योग हो सकता है, तो पहले से ही अगर उनका क्रेडिट सही नहीं है बैंक का, तो क्या ऐसे में फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है जो योजना आप बता रहे हैं, क्योंकि अगर पहले ही वो लोन को ले चुके हैं और सक्सेस नहीं हो पाए हैं, और क्या इसमें सभी प्रकार के लघु उद्योग ही शामिल होते हैं या फिर कुछ छोड़ भी दिए गए हैं?
0: देखिए, आपने जो ये बात की कि लघु उद्योगों में या सूक्ष्म उद्योगों में डाउनफॉल है, तो इसमें मैं इस बात से थोड़ा मेरा मैं आपको अपना व्यू देना चाहूँगा। शायद जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं है
1: शायद
0: उससे।
1: उन्होंने एक जनरल सवाल भी पूछा है, जैसे कोई उद्योग है अगर वो अच्छा नहीं चल रहा, क्रेडिट ले चुके हैं, नहीं चुका पाए होंगे, तो क्या उनको और दोबारा से फाइनेंस मिल सकता है इस लिहाज से?
0: जी, मैं इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से देना चाहूंगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अगर हम सिर्फ बात करें, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की, और मीडियम को भी अगर इसमें जोड़ लें, तो हमारा 2023 तक, 1 अप्रैल 2023 तक 1 करोड़ 65 लाख एमएसएमई हमारे साथ पंजीकृत थे। और ऐसे बहुत से एमएसएमई थे जो कि काम कर रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था का

0: पार्ट थे पर हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर नहीं थे, औपचारिक रूप से नहीं थे। तो एक ड्राइव हमने चलाई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ। आज ये संख्या 1,65,00,000 जो 2023 तक थी, 3 साल के अंदर ये संख्या बढ़कर 1,65,00,000 से 8,70,00,000 हो गई है। तो बहुत बड़ा एक व्यापक विस्तार फॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में पिछले 3 सालों में हुआ है। दूसरी बात ये हम मानते हैं कि एमएसएमई जो है वो हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस का पार्ट है, और काफी जो हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस है, अगर हम 31% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सो डेफिनेटली इट इज थ्रू दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न उठाया कि अगर मान लीजिए किसी एंटरप्राइज में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और किसी कारण से वो अगर अपना लोन पे नहीं कर पाए हैं तो क्या उनको कोई आगे सुविधा प्राप्त होती है, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई पेमेंट डिफॉल्ट है, वो पेमेंट डिफॉल्ट 30 दिन तक अगर आपने उस पेमेंट डिफॉल्ट को कवर नहीं किया है तो आपका अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाता है, इमीडिएटली उसको एनपीए नहीं घोषित किया जाता। फिर अगर एसएमए जीरो स्टेज पे 30 दिन तक नहीं हुआ, 60 दिन तक भी अगर आपने अपने अकाउंट को सेटल नहीं किया है तो वो एसएमए वन स्टेज पे जाता है। 60 दिन में भी अगर नहीं हुआ, आपने 60 से 90 दिन तक उस अकाउंट को सेटल नहीं किया तो वो एसएमए टू स्टेज पे जाता है। इसमें बैंक्स प्रयास करते हैं कि आपको सहायता प्रदान करके जो है उस वित्तीय संकट से में आपका मदद किया जाए। 90 दिन तक अगर आप अपना लोन में कोई अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे तो उसके बाद ही वो एनपीए करार दिया जाता है।
1: और अगर कुछ थोड़ी सी उसमें इंस्टॉलमेंट में से कुछ अगर रकम चुका दे तो फिर भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है।
0: देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार में वी बिलीव इन प्रूडेंशियल फाइनेंशियल नॉर्म्स। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग जो है वो काफी मजबूत रही है, और उसका एक रीजन ये है कि हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बैंक्स के ऊपर है वो भी काफी सख्त है। तो इनफैक्ट बैंक्स को भी इंश्योर करना होता है कि उनके अकाउंट्स जो है वो क्लीन चले। तो ये 90 दिन का एक रिलीफ पीरियड है जिसके बीच में आप अपने अकाउंट्स को अगर मेंटेन कर पाते हैं तो उसमें आपको सहायता दी जाती है।
1: हरियाणा के करनाल से जुड़े हैं संजीव कुमार जी।
2: जी मैडम जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: और जो एक्सपर्ट साहब हैं इनका भी नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एमएसएमई होती है नहीं, और इनमें जो लोग काम करते हैं तो एक तो के ओवर टाइम काम ना करवाए, 8 घंटे से ज्यादा काम ना करवाए, इसके लिए क्या किया गया अभी तक, और मिनिमम वेज इनमें एमएसएमई में कितनी निर्धारित करी गई है जी, और वेलफेयर स्कीम के बारे में बताइए कुछ के जो मजदूर काम करते हैं उनको और वेलफेयर स्कीम कैसे होती है।
0: देखिए जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ तक मिनिमम वेजेस का प्रश्न है तो मिनिमम वेजेस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स मिनिमम वेजेस को डिक्लेयर करती हैं वो उसमें एरियाज डिफाइंड रहते हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, किस नेचर का वो काम है, स्किल्ड वर्क है, अनस्किल्ड वर्क है, तो उस हिसाब से मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं, और हर साल ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी होती है। तो किसी भी एंटरप्राइज में कोई अगर व्यक्ति काम कर रहा है तो आपके स्टेट में जो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर्ड है आपकी कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए, जिस श्रेणी में आपका स्किल लेवल आता है, तो उससे नीचे कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको उससे कम वेजेस नहीं दे सकता, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बहुत वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनको जिनके अनुपालना करनी होती है, और इसके अंदर ECIS का कवर जो है वो डिपेंडिंग कि एक एंटरप्राइज में 10 लोग हैं 20 लोग हैं तो उस हिसाब से वो सारे कवर्स जो हैं वो भी प्राप्त रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिमम वेज नोटिफाइड है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी वेज जो है वो मिनिमम वेज पे।
1: और उन्होंने ओवर टाइम का पूछा, अगर ऐसा किया जा रहा है तो कहीं शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, कोई हेल्पलाइन नंबर है जहाँ?
0: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उनके लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जो हर स्टेट के अंदर रहते हैं, वहाँ पर अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है या दिक्कत है तो आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार हमने ये देखा, मंत्रालय के पास हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि बहुत सी

0: जो हैं वो विमेन को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती हैं। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे रूप में आपसे साझा करना चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए कि बहुत कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती थी, और एक रिक्वेस्ट थी विमेन एसोसिएशंस की तरफ से हमारे पास कि नाइट शिफ्ट अलाउ की जाए, तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप किया और उसके बाद काफी स्टेट्स ने अब नाइट शिफ्ट जो है उसको भी अलाउ किया है।
1: हाँ, अब एक और श्रोता लेते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
2: जी
1: नमस्कार, सवाल पूछे।
2: जो लघु उद्योग ये बड़े धंधों के साथ अटैच होते थे पहले, अब निरंतर बड़े उद्योग धंधे जो है मरणासन्न हो चुके हैं, अब इसके लिए छोटे उद्योगों को क्या जो है सरकार का नजरिया?
0: जो आपने प्रश्न पूछा है मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो काफी संख्या इसकी बढ़ी है, 1,65,00,000 से अब 8,70,00,000 से ऊपर हुए हैं, और हमारे एमएसएमईज जो हैं वो लार्जर कॉरपोरेट्स का सप्लाई चेन का पार्ट है। हम ये मानते हैं कि जो सूक्ष्म उद्यम है वो आगे प्रोग्रेस करके लघु उद्योग या उद्यमी वो बने, और लघु जो है वो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस बने, और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो ग्रेजुएट करें फॉर द लार्ज एंटरप्राइज। तो ये एक कड़ी है, ये एक चेन है, और मंत्रालय की तरफ से हमारा ये प्रयास रहता है कि एमएसएमईज की ग्रोथ और उनके विकास के लिए हमारी 18 से ऊपर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। अभी जो हमने मेंशन किया अभी सिर्फ क्रेडिट और मार्केटिंग की बात हुई है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर्स में हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, और इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। हमारा डिलेड पेमेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है ट्रेड्स, जो कि आरबीआई रेगुलेटेड है, तो वो ट्रेड्स के अंदर भी पिछले 4 सालों में 40,000 करोड़ से बढ़कर 3,00,000 करोड़ से ऊपर के बिल डिस्काउंटिंग जो है वो हुए हैं, जिससे लोगों को डिलेड पेमेंट के अंदर जो एक समस्या आ रही थी उसका समाधान अब हो रहा है, और इस तरह की बहुत सी हमारी योजनाएं हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय की जो वेबसाइट है या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई चीज है जिसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं, तो 1800-1806-7-63 के ऊपर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और इसकी आपकी समस्या की जानकारी जो है उसमें हमारी कौन सी योजना आपके काम आ सकती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।
1: दिल्ली से जुड़े हमारे साथ कोको मस्ताना जी। कोको जी
3: हेलो
1: जी, हाँ अपना सवाल पूछे।
3: हाँ नमस्ते मैडम
1: जी।
3: हेलो
1: जी, हम सुन पा रहे हैं जल्दी से सवाल।
3: एक्चुअली हमारा ना बुटीक है
1: जी
3: सिलाई का, तो उसमें हमारे पास 2 कारीगर है, क्या हमारे को उसमें लोन मिल सकता है? फ्लैट्स घर का है मतलब।
0: बिल्कुल आपको लोन मिल सकता है, और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि एक PMEGP हमारी, वैसे तो आपका एक एस्टेब्लिश्ड यूनिट है जो ऑलरेडी चल रहा है, अगर कोई साथी हमारे नया कोई यूनिट लगाना चाहते हैं और नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक हमारी स्कीम है, इसके अंदर हम कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं, तो इसमें आपको बैंकों के माध्यम से लोन मिल सकता है, आप इस योजना का लाभ जरूर लें।
1: हमारे पास व्हाट्सएप पे भी एक सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि MSME को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है क्या?
0: जी बिल्कुल, MSME को डेफिनेटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 48% कंट्रीब्यूशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की है, तो डेफिनेटली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारे MSMEs को मिलता है, और इसके अंदर मंत्रालय की तरफ से हमारी चेष्टा ये रहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर सके, किस तरह से और बेटर एक्सपोर्ट्स हम कर पाए बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी, तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये 2 पहलू हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं।
1: आपने उद्यम पोर्टल का जिक्र किया डॉक्टर रजनी, उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसके क्या फायदे हैं, रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी है?
0: देखिए उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है, जब आप उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो आप MSME में औपचारिक रूप से शामिल हो जाते हैं, आपको एक पहचान मिलती है, आपकी एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। मैंने जैसे बताया कि 20 से ऊपर योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इन योजनाओं का आप लाभ तभी ले पा

0: बात है अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2020 में शुरू किया गया था। ये पोर्टल फुल्ली वॉलेंट्री है, ऑनलाइन है, और ये पोर्टल हमारा, इसमें हमारी API बैकिंग है, जिसके अंदर हम GST, इनकम टैक्स और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पोर्टल्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सरल है। इसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर, उसके बेसिस पे बेसिक जानकारी आप फिल करेंगे, बाकी डेटा हम ऑटो फेच करते हैं और उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर आपकी यूनिट पे आएगा, वहां पर जाके पहले आपकी यूनिट को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद कोई आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अप्रूवल होगी। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर है, आप अपने आप जो है स्वतः ही इसके अंदर रजिस्टर हो सकते हैं।
1: जाते जाते बहुत जल्दी से विश्वकर्मा योजना, PM विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी, उससे क्या लाभ हुआ है जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि 30 लाख लोगों को 5 साल में हमें जोड़ना था। 2023 में ये योजना सितंबर में शुरू की थी, 2028 तक हमारे को 30 लाख लोगों को जोड़ना था। ढाई साल में ही 30 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 30 लाख में से 24 लाख लोगों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं, 17 लाख लोगों को 15,000 रुपए का टूल किट प्राप्त हो चुका है, 6 लाख लोगों को 5,000 करोड़ से ऊपर के ऋण मिल चुके हैं। तो एक ब्रॉड मैंने आपको जानकारी
1: दी, तो बहुत बड़े स्तर पर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं MSME। डॉक्टर रजनीश, आप आए हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
0: धन्यवाद प्रियंका जी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा।
1: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में प्रस्तुत है पंडित सुधीर पांडे का एकल तबला वादन। पंडित सुधीर पांडे का नाम देश के अग्रिम पंक्ति के सर्वश्रेष्ठ तबला वादकों में लिया जाता है। आपने तबले की शिक्षा अपने पिता सहगुरु स्वर्गीय पंडित अर्जुन पांडे और दादा गुरु पंडित भागवत सिंह जी से बनारस दिल्ली और अजराड़ा घरानों में प्राप्त की। तीनों घरानों का खूबसूरत गुलदस्ता सजाकर एक नई शैली गुरु द्वारा प्रदान की गई, जिसे लडंत का बाज नाम दिया गया। आप इस शैली के प्रमुख प्रतिनिधि वादक हैं। दाएं बाएं की सघन भूमिका, बोलों की शुद्धता, रचनाओं में लय का सुंदर विन्यास, प्रयोग धर्मिता और विरासत में मिले पुराने दुर्लभ बोलों की पांडित्यपूर्ण प्रस्तुति आपके वादन में सहज रूप से मिलती है।
2: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू अ तबला रिसाइटल बाय पंडित सुधीर पांडे। Pandit Sudhir Pandey is recognized as one of India's foremost tabla virtuoso. He received his rigorous training from his revered father and guru, late Pandit Arjun Pandey, and his dada guru, Pandit Bhagwat Singh, inheriting the rich traditions of the Banaras, Delhi, and Ajrada gharanas. Drawing upon the finest elements of these three illustrious traditions, his gurus evolved a unique style of tabla playing known as Ladant Ka Baj, of which Panditji is among the leading exponents today. His artistry is characterized by the balanced and powerful use of both hands, crystal clear articulation of bowls, intricate rhythmic architecture, innovative presentation, and the scholarly rendering of rare traditional compositions preserved through the sacred Guru Shishya Parampara. Through his performances at prestigious festivals and concerts, he has earned immense admiration from musicians, connoisseurs, and music lovers alike.
1: आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं घनश्याम सिसोदिया, पंडित सुधीर पांडे अपने कार्यक्रम का आरंभ तीन ताल से कर रहे हैं।
2: In tonight's program, he is accompanied on sarangi by Ghanshyam Sisodia. He is presenting tabla recital in taal, teen taal.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सुधीर पांडे का तबला वादन। अभी आप सुन रहे थे ताल तीन ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे घनश्याम सिसोदिया। और इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: यू जस्ट हर्ड ताल तीन ताल प्लेड ऑन तबला बाय सुधीर पांडे। ही वॉज अकम्पनीड ऑन सारंगी बाय घनश्याम सिसोदिया। With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी है। आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री एन एस कल्याण रामन द्वारा मृदंगम पर लय विन्यासम।
3: This is Akashwani. In tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha, we present Laya Vinyasam on Mrudangam by Sri N.S. Kalyanaraman.
2: Paramparik Sangeet Parivar mein janme, Sri N.S. Kalyanaraman, Andhra Pradesh ke suprasiddh mrudangavadak hai. Unhone balyavastha se hi mrudangavadan par gahri ruchi dikhai aur apna prarambhik prasikshan Sri M.K.R. Prasad se prapt kiya. Baad mein, unhone vikhyat mrudangavidwan श्री दंडमूड़ी राममोहन राव और श्री के वीरभद्र राव से उच्च प्रशिक्षण पाया।
3: श्री एन एस कल्याण रामन इज अ रेनाउंड मृदंगम आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश बिलोंगिंग टू अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल फैमिली। ही शोड कीन इंटरेस्ट इन मृदंगम फ्रॉम अ वेरी यंग एज एंड रिसीव्ड हिज इनिशियल ट्रेनिंग अंडर श्री एम के आर प्रसाद। ही लेटर अंडरवेंट एडवांस्ड ट्रेनिंग अंडर द रेनाउंड गुरुज श्री दंडमूड़ी राममोहन राव एंड श्री के वीरभद्र राव।
2: श्री एन एस कल्याण रामन ने डॉक्टर एम बालमुरली कृष्ण, श्री टी वी शंकर नारायण, श्री टी एन शेषगोपालन, हैदराबाद ब्रदर्स और हैदराबाद सिस्टर्स जैसे अनेक प्रख्यात संगीतज्ञों के साथ संगत किया। उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित मंच जैसे मद्रास म्यूजिक एकेडमी में कई प्रदर्शन दिया।
3: श्री एन एस कल्याण रामन हैज अकम्पनीड सेवरल एमिनेंट म्यूजिशियंस इंक्लूडिंग डॉक्टर एम बालमुरली कृष्ण, श्री टी वी शंकर नारायण, Sri T. N. Seshagopalan, Hyderabad Sisters and Hyderabad Brothers. He has performed in prestigious sabhas across the country including Madras Music Academy.
2: Sri N. S. Kalyanaraman Akashwani ke top grade kalakar raha. Aapne Chennai aur Vijayawada Akashwani kendra mein 36 varsh ki visisht seva pradan kiya. Aapne Akashwani aur Doordarshan ke kai rashtriya sangeet karyakram mein bhag liya. आप कंची कामकोटि पीठम का आस्थान विद्वान रहा और आपको आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार भी प्राप्त हुई।
3: He is a top grade artist of Akashwani and has also participated in national programs of music and Doordarshan programs. He rendered 36 years of distinguished service to Akashwani at Chennai and Vijayawada. He was honored as Astana Vidwan of Kanchi Kamakoti Peetam and also received the prestigious Ugadi Puraskar from the government of Andhra Pradesh.
4: आज के कार्यक्रम में श्री एन एस कल्याणरामन मृदंगम पर अपने लय विन्यास का प्रारंभ मिश्र जाति झंपे ताल के साथ

0: आप रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा प्रस्तुत मृदंगम पर लाइव विन्यासम सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी विजयवाड़ा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है। अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुन

0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
2: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की